कभी कभी प्रकृति का बदलता मौसम हमें जिंदगी का सबसे सुंदर पाठ पढ़ाता है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बादलों के बाद धूप आती है, पतझड़ के बाद बहार आती है और रात के बाद सुबह जरूर होती है। इसलिए अगर आज का समय थोड़ा कठिन है तो उम्मीद मत छोड़िए, आपका मौसम भी बदलेगा।

सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती, यह हमारे भीतर नई ऊर्जा भी जगाती है। आज किसी से प्रेम से बात कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और मन में विश्वास जरूर रखिए।

और इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 27 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब जानते हैं आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कौन से प्रोग्राम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस गान। 7:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:25 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर का। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। 2:30 का समय रहेगा प्रोग्राम संगीत.com का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें

भक्ति और श्रद्धा के इस मधुर सफर में आगे बढ़ते हुए होठों पर राम का नाम हो और दिल में माखनचोर कृष्ण कन्हैया की छवि बसी हो तो जीवन की राह अपने आप सरल और सुंदर लगने लगती है। मन को श्री चरणों में समर्पित कर हर सांस के साथ राम का नाम मन को शांत करे और कृष्ण का नाम अलौकिक आनंद से भर दे, ऐसा भाव मन में लेकर आइए करते हैं अपनी आराधना का अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

साथियों, कान्हा की मोहिनी मुस्कान, सिर पर मोर पंख और अधरों पर बांसुरी की तान। कृष्ण से प्रेम की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ पाने की चाह कम और समर्पण का आनंद ज्यादा है। कान्हा, कभी यशोदा के लाल, कभी गोपियों के सखा, तो कभी भक्तों के जीवन का सहारा है। इसीलिए तो कहते हैं कि सांवलिया मन भाया रे। 6:24 पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कि हर फूल में तू, हर सांस में तू, मेरे दिल के हर एक एहसास में तू, तुझसे ही शुरू तुझ पर ही खत्म, मेरा सब कुछ अब तेरे पास है प्रभु। 6:32 पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ आनंद लेते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ का।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर

श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलेखित से हो चले हैं।

सत्यमानस की एक चौपाई है जिसका अर्थ है कि रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। इसी रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का श्रवण किया भी हमने और आपने, और आज जो प्रसंग आपने सुना इसे अयोध्या कांड से लिया गया था। और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। इसके बाद आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि देश और दुनिया का हाल समाचारों के जरिए जानने के बाद हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod.

जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हमारे मन मुताबिक हो, ऐसा तो शायद सपने में ही संभव है। लेकिन उस सपने को सच करने की कोशिश के सफर पर जब हम निकलते हैं तो वहां भी हमारा नजरिया ही काम आता है जनाब। शिकायत करें या फिर शुक्रिया कहें कि छोटी छोटी परेशानियों के बावजूद हवा की ताजगी, फूल की खुशबू, रोशनी की किरण, धूप की गर्माहट और प्रकृति की खूबसूरती को देखने और महसूस करने का एक और मौका दिया है जिंदगी ने हमें आज के इस दिन के साथ, जिस पर सफलता की एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं हम। तो चलिए फिर करते हैं स्वागत आज का, क्योंकि इस आज को भरपूर जीना है हमें। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, और 7:12 हो गए हैं और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

दोस्त, हमारा दिल तो आप ही के साथ लगता है, लेकिन रफी साहब की मखमली आवाज में ये गाना आपने सुना 1966 में आई फिल्म तीसरी कसम से, और संगीत के हिसाब से देखें तो 60s का ये दशक गोल्डन म्यूजिक के सबसे सुनहरे दशक के रूप में देखा जाता है। लेकिन सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि प्लेबैक सिंगिंग और लिरिक्स को भी एक अलग ही लीग में देखा जाता है इस दौर में। और लिरिक्स की यानी शब्दों की बात चली है तो शब्द हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। शब्दों की खूबसूरती और मिठास जहाँ हमें आनंदित और प्रेरित करती है, वहीं शब्दों की तलखी कई बार हमें झकझोरती भी है। इसलिए सयाने कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा ना हो कि मरहम लगाने की जगह हमारे शब्द बाण किसी को घायल कर दें। तो कहा गया है कि शब्द वही चुनिए जो दिल तक जाए। फिलहाल हमने कोशिश की है गोल्डन म्यूजिक से सजे उन गानों को चुनने की जो हमारे आपके दिल तक पहुंचते हैं। अब कितने सफल हो पाए हैं हम, ये आप हमें बता सकते हैं अपने फीडबैक के जरिए हमारे मेल आईडी पर, जो आप जानते ही हैं fmgoldairdelhi@gmail.com, जिस पर आपको भेजनी है अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव। फिलहाल 7:18:35 पर आगे बढ़ते हुए गोल्ड सुप्रभात में एक और खूबसूरत गाना लता जी और रफी साहब की आवाज में खास आपके लिए।

उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। चलते चलते 7:25 और 25 सेकंड पर हम आ पहुंचे हैं गोल सुप्रभात में, उस पल में जहां आपके साथ हमें शेयर करनी है आज की प्रोग्राम समरी। तो आपको ये बता दूं कि आप 8:45 पर सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट मेरे साथ और 9:10 पर रेखा के साथ म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इस्मत चुगताई के बारे में और इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के बारे में, जो कि आज के दिन में अपनी एक खास पहचान रखते हैं। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद, 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको उत्तराखंड में एबट माउंट लेकर चलेंगे और 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर, 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेता पेंटल के बारे में बात होगी, 2:30 में आप सुनेंगे संगीत.com और 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी में आज की कहानी रहेगी राग पहाड़ी, 6:30 मार्केट मंत्रा, 8:10 पर मधुरिमा, 10:30 हर सिंगार और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत। और आज के मौसम का हाल भी हम जान लेते हैं। मौसम आमतौर पर साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास और हवा की गति रहेगी करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और एक खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज़ में आपकी नज़र करते हुए फिलहाल गोल सुप्रभात से मैं यानी आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा लेती हूँ इजाजत। फिर मिलती हूँ 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में और इस गाने के बाद आप सुनेंगे न्यूज सर्विसेज डिवीजन की प्रस्तुति कार्यक्रम आज सवेरे।

0: इस सुरीली तान के साथ आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो आज सवेरे। स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ जया भारती। श्रोताओं, अभी अभी जो सर आपकी रूह को छूकर गुजरे हैं, वे गवाह है आज के दिन की महानता के, जिसका जिक्र हम कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में करेंगे। सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की ताजा तरीन हलचल से, फिर जानेंगे आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज, मौसम का ताजा मिजाज और आज के इतिहास के सुनहरे पन्ने। तो हमारे साथ बने रहिएगा अगले 30 मिनट तक। आज मेरी को होस्ट हैं रीनू कटारिया।
1: हेलो जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड जया, यू हैव ट्रूली मेंशन्ड दैट देयर इज सो मच दैट वी हैव फॉर आवर लिसनर्स टुडे, स्पेशली इन द लास्ट सेगमेंट। एंड हम भी बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपने जो धुन बजाई थी वो किससे रिलेटेड है और क्यों आप हमें ये धुन सुना रहे हैं। एंड सो मच मोर डियर लिसनर्स, सो स्टे विद अस for the next half an hour, but let's start with the news first, Jaya.
0: बिल्कुल, इस वक्त के मुख्य समाचारों की तरफ रुख करते हैं। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण, यानी कोशिश है कि तकनीक के जरिए सहयोग बढ़े और आने वाले डिजिटल चुनौतियों के लिए दुनिया को और मजबूत बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी हमें भविष्य की ओर ले जाती है, लेकिन हमारी कला और संस्कृति हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। और अब अगली खबर देश की इसी रचनात्मक और कलात्मक विरासत से जुड़ी है।
1: वेरी ट्रू जया, द ललित कला अकादमी विल इनॉग्रेट द 65th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट टूडे एट द ललित कला आर्ट गैलरीज रविन्द्र भवन, New Delhi, this evening. The exhibition will showcase diverse and inspiring expressions across various forms of visual art, highlighting the creativity and artistic spirit of India. Secretary, Ministry of Culture, Vivek Agarwal, Government of India, will attend the inaugural ceremony as the chief guest, while K.K. Mishra, Joint Secretary, Ministry of Culture, will be the guest of honor. Eminent artist P.R. Darose will also grace the occasion with his presence. The exhibition is expected to bring together a wide range of artistic expressions and provide art enthusiasts with an opportunity to engage with contemporary and diverse practices in Indian visual art.
0: और अब चलते हैं जहां पे भारतीय रेलवे ने एक यात्री के शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का उदाहरण दिया है। दरअसल बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री ने इस महीने की 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद आईआरसीटीसी ने संबंधित कैटरिंग लाइसेंस धारी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लापरवाही के लिए बेस किचन में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने और जिम्मेदारी तय करने के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो यात्री सेवा से अब बात उस चीज की जो हमारी पहचान से जोड़ती है, हमारी भाषा। और आज की अगली खबर इसी भाषाई गौरव की कहानी है।
1: यस, मणिपुर ऑब्जर्व द 35th मणिपुरी लैंग्वेज डे यस्टरडे, कमेमोरेटिंग द इंक्लूजन ऑफ मणिपुरी इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन August 20, 1992। द मेन स्टेट लेवल प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन इम्फाल। स्टेट होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथुजाम सेड लैंग्वेज इज नॉट merely a means of communication but an important expression of a people's identity, culture and history. He also said the government would make efforts to seek classical language status for Manipuri before next year's language day. The message from the celebration was clear: protecting a language means protecting a community's cultural heritage.
0: जी हाँ, और भाषा की यही विविधता भारत की खूबसूरती है। इसी डाइवर्सिटी की एक और झलक पश्चिम बंगाल से सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कल नेपाली लैंग्वेज 35th कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन डे उत्साह के साथ मनाया गया है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है और अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां देश को एकता के सूत्र में बांधती है। उन्होंने लोगों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की, यानी अलग अलग भाषाएं लेकिन भावना एक और लक्ष्य केवल एक, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा उसे धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष तक भी ले जाती है। अब एक ऐसी ही रोमांचक खोज खबर।
1: जी, दिस इज रिगार्डिंग अ न्यू एक्सोप्लैनेट जया। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड एन अनयूजुअली डेंस जायंट एक्सोप्लैनेट कॉल्ड J523b, located far beyond our solar system. The planet is about 2.5 times wider than Earth, but its mass is nearly 23 times that of Earth. Scientists believe it is predominantly rocky, making it an extremely rare and unusual world. J523b completes an orbit around its star in just 17.75 days. What makes the discovery especially interesting is that its existence challenges traditional theories of planet formation. Scientists believe it may have lost a thick gas envelope over time, or it may have been formed after a massive collision between rocky planets. In other words, this distant world is giving scientists a very close look at the mystery of how planets are born, and especially for those who are interested in astronomy and planets and the cosmos, उनके लिए तो ये खबर बहुत ही interesting है।
0: तो रेनु, अब अंतरिक्ष की इस पहेली से वापस धरती पर लौटते हैं और उस सवाल पर जो लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है, शिक्षा के अवसर सब तक कैसे पहुंचे? सरकार ने बताया है कि शेड्यूल्ड कास्ट छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, यानी कि 2023-24 में इस योजना के तहत करीब 5,475 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और ये राशि 2025-26 में बढ़कर 6,208 करोड़ रुपए हो गई है। 2021-22 से स्कॉलरशिप की केंद्रीय राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT के जरिए सीधे आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में भेजी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों तक स्कॉलरशिप की राशि पहुंचाने की प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक पारदर्शी हुई है, क्योंकि शिक्षा का रास्ता तभी मजबूत होगा जब आर्थिक स्थिति किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के सपने के बीच दीवार न बने। सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अवसर ही नहीं, सुरक्षित माहौल भी जरूरी है, और प्राकृतिक आपदाओं के समय तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। इसी तैयारी से जुड़ी खबर अब छत्तीसगढ़ से।
1: Yes, this is regarding mock drill in Chhattisgarh. A large-scale mock drill was conducted across all three districts of Chhattisgarh to strengthen preparedness for flood-like natural disasters. The exercise tested coordination among the NDRF, SDRF, Army, Police, Home Guards and other departments. Officials also rehearsed the evacuation of affected people, operation of relief camps and deployment of medical teams. The purpose was simple but important: to make sure that when a real emergency occurs, every department knows what to do, how to respond, and how to work together. Because in a disaster, Jaya, preparation is not just planning, it can save lives.
0: बिल्कुल रेनू, और खबरों के इस सफर में थोड़ा और जोश और एक्साइटमेंट जोड़ते हैं। आपने बात की अभी तैयारी की, टीम वर्क की, और यही दो चीजें ना खेलों में भी जीत की बुनियाद बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो अब रुख करते हैं दिल्ली के बैडमिंटन कोच का। दिल्ली में चल रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी डबल्स क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। मेंस डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी लियांग वे किंग और वांग चांग से होगा। वहीं विमेंस डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भिड़ंत चाइना की ही चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फान और जांग शू शियान से होगा। दोनों भारतीय जोड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था, और अब उनकी नजरें

0: Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya has called for an accelerated and comprehensive talent identification program to build India's athlete pool for the 2036 Olympics. At the 63rd governing body meeting of the Sports Authority of India, he stressed that talent identification must cover the entire sporting pyramid. That means looking for promising athletes not only in major cities but also across schools, districts and colleges. The initiative follows Prime Minister Narendra Modi's call for a nationwide sports talent hunt. The vision is simple: identify talent early, nurture it properly, and give young athletes the opportunity to compete at the highest level.
1: और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का. तो सबसे पहले शुरुआत करें चेन्नई से.
0: थैंक यू जया. द सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज अ फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी अवेयरनेस ड्राइव टुडे ऑन द टॉपिक माय फैमिली माय मनी अंडरस्टैंडिंग लोन्स एंड स्लोन शॉक्स. द प्रोग्राम विल बी हेल्ड एट अ प्राइवेट स्कूल इन चेन्नई. द अवेयरनेस प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय अ क्विज विच विल बी अटेंडेड बाय 3,000 स्टूडेंट्स. द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ ICAI efforts to promote financial and tax literacy among young people and equip students with basic knowledge to make informed decisions.
1: और अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की. दरअसल कल केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया है और यह प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है. अनावरण के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे और इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांगों को पूरा करना है. तो रेनू, जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, चाहे वो काम के सिलसिले को लेकर हो, पढ़ाई के सिलसिले को लेकर हो, तो ऐसे में ये खबर सही में मायने रखती है.
0: बिल्कुल मायने रखती है. एंड मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, कर्नाटका टूरिज्म मिनिस्टर के जे जॉर्ज इनॉग्यूरेटेड द वन मदर मेनी मदर टंग्स एग्जिबिशन एट बेंगलुरुज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. ओपन अंटिल सितंबर 20, फीचर्स 24 आर्ट वर्क्स एक्सप्लोरिंग मदरहुड एंड विमेन्स आइडेंटिटी अक्रॉस इंडियन एंड यूरोपियन कल्चर्स. अ की अट्रैक्शन इज सैंड्रो बोटिचेलीज मेडोना एंड चाइल्ड पेंटेड अराउंड 1990 and being shown in India for the first time after its Delhi display. The exhibition is organized by the Italian Consulate, NGMA and the Union Ministry of Culture.
1: और अब बात करते हैं मुंबई की. रेनू, महाराष्ट्र में पता ही होगा कि जो गणेश
0: उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली
1: हैं. बिल्कुल, और कितने धूमधाम से मनाई जाती है. तो इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का सांस्कृतिक विभाग रविवार को मुंबई में पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का आयोजन करेगा और जो आधिकारिक बयान आए हैं उसके अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है और 300 रुपए का भागीदारी शुल्क देना होगा. सभी प्रतिभागियों को प्रतिमा बनाने के लिए शाडो मिट्टी और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ साथ भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा. ये कार्यशाला पीएल पांडे कला अकादमी द्वारा प्रभा देवी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को मिट्टी के स्पर्श का अनुभव कराना और अपने स्वयं के बप्पा की प्रतिमा बनाने का आनंद प्रदान करना. जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, वो पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए 8779584224 पर संपर्क कर सकते हैं.
0: और जरूरी नहीं है कि हम सबको मुंबई ही जाना पड़े, हम सब अपने घर में बैठकर भी बप्पा की प्रतिमा बना सकते हैं. So the last news I have is from Hyderabad Metro. The Greater Hyderabad Municipal Corporation or GHMC has stepped up preparations for Ganesh Utsav 2026. GHMC Commissioner R.V. Karnan, IAS, reviewed the arrangements with senior officials. Ganesh Chaturthi will be celebrated on September 14 with idol immersion scheduled for September 25th. Special arrangements are being made in newly added and merged areas where large crowds clouds are expected. Officials will coordinate with the police, fire, irrigation, power, roads, water board, HMDA, health and other departments to manage procession routes, traffic, sanitation, lightning, medical aid and emergencies. Special arrangements will be made for the Balapur Ganesh procession and immersion.

0: Road repairs along procession routes must be completed by September 13th. So we are all eagerly waiting for our Ganpati Bappa this year.
1: जी. और अब चलते हैं जॉय सिटी कोलकाता की ओर. दरअसल पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरे राज्य में समान रूप से लागू किए जाने से पश्चिम बंगाल की महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा. कोलकाता में कल अपने मंत्रालय की योजनाओं के कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करते हुए उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया है और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है. और उन्होंने यह भी घोषणा की कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके दौरान ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. और अब बात करते हैं मेट्रोज के मौसम का कि आज हमारे महानगरों में कैसा हाल रहने वाला है मौसम का. तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. तो राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश भी हो सकती है. शहर का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मुंबई में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है. शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. कोलकाता में आज तूफान और बारिश के आसार हैं. न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
0: एंड ऑल आवर लिसनर्स हु आर इंटेंसली लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम, प्लीज बी अवेयर, अपने अम्ब्रेला साथ लेके निकलें जब भी अपनी अपनी सिटीज में जाएं. सो टॉकिंग अबाउट चेन्नई, इट इज लाइकली टू सी पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म. द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 27 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल. द मिनिमम टेम्परेचर इज expected to be 21 degrees while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 31 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 21 अगस्त है और देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है, तो आइए नजर डालते हैं.
0: यस, ऑन दिस डे दैट इज 21st ऑफ अगस्त इन द ईयर 1888 अमेरिकन इन्वेंटर विलियम सीवर्ड बुरोज वाज ऑफिशियली ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कैलकुलेटिंग मशीन, द फर्स्ट प्रैक्टिकल एडिंग एंड लिस्टिंग मशीन.
1: और 1959 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक आधिकारिक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत हवाई को संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था.
0: इन द ईयर 1965 ऑन दिस डे नासा सक्सेसफुली लॉन्च द जेमिनाई 5 स्पेसक्राफ्ट विद एस्ट्रोनॉट्स गॉर्डन कूपर एंड पीट कॉनराड टेस्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन अर्थ ऑर्बिट.
1: और आज ही के दिन 1972 में भारत की संसद द्वारा देश के वन्य जीवों, वनस्पतियों और उनके प्राकृतिक आवासों के व्यापक संरक्षण के लिए ऐतिहासिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया गया था.
0: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2017 ऑन दिस डे अ टोटल सोलर एक्लिप्स वाइडली नोन एज द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स स्वेप्ट अक्रॉस द कंटिजियस United States from coast to coast and was observed by millions of people over there.
1: और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका वादा मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही किया था.
0: जी,
1: आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा खालीपन लेकर आया था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता. साल 2006 में आज ही के दिन शहनाई को महफिलों से निकालकर पूरी दुनिया के दिलों में बसाने वाले संगीत के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां इस दुनिया को अलविदा कह गए.

0: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, लेकिन उनका दिल, उनकी रूह और उनका संगीत हमेशा बनारस के घाटों में बसा रहा।
1: तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस को ख्याल करता हूँ तो यही जगह हमारे सामने रहती है हमारी निगाह में, और यही खींच के लाती है हमें, और हमको सच पूछिए तो आनंद भी मिलता है भाई। ये जगह ऐसी है, देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। हिंदुस्तान क्या, तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता।
0: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वो सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो भारत की साझी संस्कृति यानी गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल थे। एक तरफ वो पक्के नमाजी थे तो दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में

और श्रोताओं, इतिहास का वो पल भला कौन भूल सकता है, 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था। तब लाल किले से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई ने ही आजादी का स्वागत किया था। आज भी आजादी की वो सुबह उनकी राग काफी की तान के बिना अधूरी लगती है।

0: वाकई इन स्वरों को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खान साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, लेकिन वो इतने सादे थे कि बनारस की तंग गलियों में हमेशा साइकिल रिक्शा से ही घूमा करते थे। उनका मानना था कि संगीत कमाने का जरिया नहीं, खुदा की इबादत है। आज भले ही खान साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज अमर है। जब भी देश में शहनाई गूंजेगी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
1: जी, एंड टुडे वी आर आल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हु वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु स्पेंट हिज प्रोफेशनल लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ही वाज अवार्डेड द 1983 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स विद विलियम एफ फाउलर फॉर theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of the stars. The Chandrasekhar limit is named after him. Jaya, ye bahut hi important hai bachchon ke liye, especially jo padhai karte hain physics aur maths mein. Chandrasekhar worked on a wide variety of physical problems in his lifetime, contributing to the contemporary understanding of stellar structure, white dwarf, stellar dynamics, radioactive transfer, the quantum theory of the hydrogen एनियन, हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोमैग्नेटिक स्टेबिलिटी। तो ये सब के लिए हम आज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू बर्थडेज, टुडे इज द बर्थडे ऑफ केनेथ रे रॉजर्स और केनी रॉजर्स, हु इज एन अमेरिकन रिटायर्ड सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर। हिज सिग्नेचर सॉन्ग इज 1978 द गैम्बलर, a crossover hit that won him a Grammy Award in 1980 and was selected in 2018 for preservation in the National Recording Registry by the Library of Congress. So let's listen into the song, The Gambler.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

और अभी रेनु आपने फिजिक्स की बात की थी जिस तरह से, तो मैं भी श्रोताओं को आज की एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाना चाहूंगी। आज ही के दिन साल 1912 में जन्म हुआ था डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का। शायद बहुत कम लोग इस नाम से वाकिफ हों, लेकिन देश के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाने के पीछे इसी वैज्ञानिक

0: का दिमाग था। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश भारत के पहले मेटलर्जिस्ट यानी कि धातु विज्ञानी थे, जिन्हें खुद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के लिए भारत वापस लाए थे। और यहां तक कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उन्हें अपना गुरु और मेंटर मानते थे। कलाम साहब ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने उन्हें सिखाया था कि बड़ी टीमों को कैसे संभाला जाता है। साल 1961 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने एक ऐसे पर्दे के पीछे के नायक रहे जिन्होंने भारत को परमाणु और अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की नींव रखी।
1: यस, एंड टुडे इज आल्सो द बर्थडे ऑफ उसेन लियोबोल्ट, हू इज अ जमैकन रिटायर्ड स्प्रिंटर वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम्स। ही इज एन 8-टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन द 100 meters, 200 meters एंड 4x200 meters रिले। बोल्ट इज द ओनली स्प्रिंटर टू विन ओलंपिक 100 meter एंड 200 meter titles at 3 consecutive Olympics, that is 2008, 2012 and 2016, and his achievements as a sprinter have earned him the media nickname Lightning Bolt, and his awards include the IAAF World Athlete of the Year, Track and Field Athlete of the Year, BBC Overseas Sports Personality of the Year, which was 3 times, and Laurie's World Sportsman of the Year, which happened 4 times, and he is the most successful male athlete of the world championships till date.
0: और आज जयंती है आधुनिक भारतीय चित्रकला के स्तंभ नारायण श्रीधर बेंद्रे जी की, जिनका जन्म साल 1910 में इंदौर में हुआ था। एनएस बेंद्रे साहब भारत के उन गिने चुने कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन, यहाँ के त्योहारों और आम इंसानों की सादगी को अपनी पेंटिंग्स में अमर कर दिया। उन्होंने यूरोप की आधुनिक कला सीखी जरूर, लेकिन उनके चित्रों की आत्मा हमेशा शुद्ध भारतीय रही। कला जगत में उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा था। और संगीत और विज्ञान के साथ साथ अगर हम चित्रकला की बात कर ही रहे हैं तो चित्रकला प्रेमियों के लिए एक और भी बेहद खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1961 में जन्म हुआ था दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले मशहूर चित्रकार कृष्ण कन्हाई जी का। अगर आपने कभी भी उत्तर प्रदेश के विधान भवन में लगी महापुरुषों की भव्य तस्वीरें या देश विदेश के दरगाहों में भगवान कृष्ण के मनमोहक चित्र देखे हों तो आप उनकी कला के जादू को जरूर जानते होंगे। कहते हैं कि वृंदावन की पावन धरती से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण कन्हाई जी को कला विरासत में मिली। अपने पिता पद्मश्री कन्हाई चित्रकार सीख कर उन्होंने चित्रकारी को नए मुकाम पर पहुंचाया। वे मुख्य रूप से कन्हाई आर्ट के लिए जाने जाते थे, जिसमें पारंपरिक कैनवास पर शुद्ध सोने की पत्तियों और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने जीवंत किया है।
1: And today is the birthday of Glenn Hughes, who's an English rock bassist and vocalist, best known for playing bass and performing vocals for funk rock pioneers Trapeze, the MK3 and 4 lineups of Deep Purple, as well as briefly fronting Black Sabbath in the mid-1980s. Here we're going to listen to Glenn Hughes singing Chosen for our listeners.

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आप अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
3: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
2: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर

0: उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग चेटी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली

0: गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वैधता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के आगे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur.

0: More than 17 piracy-related incidents were documented across Somali waters and the Gulf of Aden during the first 5 months of the year, including the hijacking of at least 3 commercial ships and 5 dhow boats. Experts say regional conflict, economic difficulties for fishermen and reduced maritime security are contributing to the resurgence. Somali piracy previously peaked around 2010 when hundreds of vessels were seized and shipping companies and insurers faced billions of dollars in losses. With Bimal Mohapatra's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over Madhya Pradesh for today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and parts of Northeast India for the day. In Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky with a spell of light rainfall today. Several coastal areas of Kerala are likely to experience sea incursion due to high waves today. National Centre for Ocean Information Services has warned that waves measuring 1 to 1.5 metres are likely along the coast of Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha, Ernakulam, Malappuram, Kozhikode, Kannur and Kasaragod until 11:30 a.m. today. In hockey, Indian women's team will take on the Netherlands in the first match of the second pool phase of FIH World Cup at Amstelveen today. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Earlier, India advanced to the second round after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match yesterday. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. In badminton, Indian shuttlers will be in action today in the men's and women's doubles quarterfinal at the WBF World Championship 2026 in New Delhi. The men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will lock horns with third seeds Liang Wei Keng and Wang Chang of China. The duo defeated Junaidi Arif and Roy King Yap of Malaysia in the pre-quarterfinals 21-23, 21-19, 21-17 in a nail-biting encounter. In the women's doubles, the Indian pair of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand will face fourth seeds Jia Yi Fan and Zhang Huying of China. The pair defeated seven seeds Ring Iwanaga and Kei Nakashiki of Japan in straight games 21-16, 21-12 in the pre-quarterfinals. Astronomers have discovered an unusually dense giant exoplanet orbiting a star far beyond our solar system that challenges current theories of how planets were formed. The planet, named GJ523b, is about 150 million years old. It is more than 2.5 times wider and the radius roughly 2.55 times that of Earth. But it has an extraordinary mass, about 23 times the mass of Earth, while remaining predominantly rocky. The planet has been informally dubbed as Mega-Earth, a rare category of exceptionally massive and dense rocky worlds. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
2: Thank you, Pramod. Amit Shah slams Congress Working Committee's decision on two stanza Vande Mataram, reports Indian Express. Shah targets Congress and Vande Mataram, headlines the Pioneer. Almost all newspapers carry the story of former MP Sajjan Kumar passing away at a city hospital. The Hindustan Times says 42 years after anti-Sikh riots, Sajjan Kumar dies serving life term. And finally, a story in the Tribune says that Gandhi's 688 handwritten notes to freedom fighter Anand Hingorani has fetched a record 16.2 crores in action. And with that, it's back to you, Pramod.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to say...
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सियाहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने ईरान की हुकूमत के साथ हिजबुल्ला के राब्तों का हवाला देते हुए मस्कूरा तंजीम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और हॉकी में आज एम्स्टलफेन में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रिहायशगाह पर मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल के इकदामात के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उमूर खारजा और गवर्नेंस शामिल हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरियों से जोर देकर कहा कि वो इस बारे में तवील मुद्दती नुक्ता नजर के साथ गौर खोज करें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: डेटा के मौसर इस्तेमाल और बेहतर हमांगी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि डेटा एक कौमी असासा और मुस्तकबिल का वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रुकावटें सिर्फ एक तंजीमी मसला नहीं है बल्कि ये सोच का भी मसला है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अपने पन के जज्बे के साथ काम करें। अफसरान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत और टीम स्पिरिट की तामीर की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने पॉलिसी साजी में ताज़ा तरीन ख्यालात लाने के लिए सरकारी शोबों, यूनिवर्सिटियों और नौजवानों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा राब्तों पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की दिफाई सनअत को मजीद मजबूत बनाने और इसे आलमी सतह पर मजीद मुसाबिकती बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। COVID-19 वबा और मगरबी एशिया के बहरान के तजुर्बात की मिसालें देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हमाहंगी के तरीक़ेकार को हुकूमत के कामकाज के कल्चर का एक कुदरती हिस्सा बनना चाहिए। जनाब मोदी ने इंसानी मुदाखलत को यकीनी बनाते हुए मसनूई जहानत के मौसर इस्तेमाल और इंसानी महारत के साथ AI की सलाहियतों को जोड़ने के नए तरीके तलाश करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेचीदा चैलेंजों से निपटने और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र के साथ भारत के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुकम्मल हुकूमत के नुक्ते नज़र, बेहतर हमांगी, जदीद सोच और इज्तिमाई मिल्कियत की ज़रूरत का इयादा करते हुए अपनी बात ख़त्म की। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरियों ने शोबा जाति तरजीहात, उभरते हुए चैलेंजों और अमल दरामद के मसाइल पर अपने तजुर्बात शेयर किए। काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और महकमों के सेक्रेटरीज और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के सीनियर हुकाम ने इस मीटिंग में शिरकत की। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
3: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट की जानिब से मुरतब किए गए कानून की खुली खिलाफवर्जी के मुतरादिफ है और ये मुल्क मुखालिफ है। जनाब अमित शाह ने दावा किया कि 1937 में कांग्रेस ने खुशनूदी हासिल करने की खातिर वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर मरकजी सरकार ने इस तारीखी गलती की इसलाह करते हुए पूरे कौमी गीत को कानूनी एतबार से तस्लीम शुदा हैसियत दी। जनाब अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की क्यादत में कांग्रेस पार्टी फिर से वोट बैंक सियासत के लिए खुशनूदी हासिल करने के रास्ते पर चल रही है।
5: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।
3: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के रुकन पार्लियामेंट राजू बिस्ता और सियाहत के वजीर शंकर घोष और दीगर ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
6: जनाब अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर पर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, दो मीटिंगों में भी शरीक होंगे। दोपहर में वजीर दाखिला कवाखाली ग्राउंड पर भारतीय न्याय संहिता पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी और दीगर रियासती वुजरा उनके हमराह होंगे। इस नुमाइश में नए फौजदारी कानून के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगी। शाम में जनाब अमित शाह पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। पहाड़ी इलाकों और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर कल दो जायजा मीटिंगें भी होंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
3: भारत आज पुणे में मवासलात के वुजरा की 12वीं ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें ब्रिक्स रुक ममालिक के मवासलात के वुजरा और सीनियर नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल तब्दीली, इख्तरा और पायदार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग का मौजू है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए इख्तरा, इश्तराक और तब्दीली। वहीं भारत की ब्रिक्स की सदारत में 2026 के तहत आज जयपुर में सियाहत के वुजरा की ब्रिक्स मीटिंग का आगाज होगा। ब्रिक्स रुकन ममालिक से सियाहत के वुजरा और सीनियर ओहदेदारान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में जिन अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें पायदार और जिम्मेदार सियाहत, हुनरमंदी के फरोग, बिला रुकावट सफर और सियाहत में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निजाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। एनटीए का आंसर की चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन अमल है जहां जेईई मेन और नीट या यूजीसी नेट जैसे इम्तिहान में बैठने वाले उम्मीदवार उबूरी आंसर की में गलतियों पर एतराजात दाखिल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एनटीए ने कहा कि अगर एक उम्मीदवार भी किसी सवाल को चैलेंज करता है तो मुतालिका माहिरीन उस चैलेंज को कबूल करते हैं और नजरसानीशुदा आंसर की का इतलाक इम्तिहान देने वाले हर उम्मीदवार पर होता है। उसने कहा कि गैर संजीदा चैलेंजों की हौसला शिकनी की खातिर जवाब को चैलेंज करने के लिए फीस ली जाती है और चैलेंज के दुरुस्त पाए जाने पर यह फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपए की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए जाने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती, बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए यह फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैन तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफर करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निजाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदारान इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने गुज़श्ता 4 दिन में 2 बहरी जहाजों को अगवा किया है। इन वाकयात से इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नजदीक समंदर में कज़ाकी के वाकयात में फिर से तेजी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नजदीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 एहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें

0: झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। केरलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नजदीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के मुआहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत, इम्तिहानात मनसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, यह खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्जा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाह कुन मौसी कार्रवाई का ऐलान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ 2 अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सियाहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.
1: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली की और 8:46 और 16 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आ

भाई मौसम का जादू तो डेफिनेटली हमारे मूड, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर भी पूरा असर डालता है। और बरसात के मौसम में झमाझम बारिश होने पर जहां समोसे और चाय पकौड़े की सेल बढ़ जाती है, वहीं वाटर लॉगिंग के चलते लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जैम्स भी जो है ना, वो हमें अंदर तक प्रभावित करते हैं इस शहरी लाइफ में। लेकिन बात अब अगर हम टेररिज्म जैसे सब्जेक्ट्स पर करें तो फिर न केवल बात गंभीर हो जाती है, बल्कि हम सभी जानते हैं कि टेररिज्म के परिणाम भी गंभीर और भयावह, डरावने होते हैं। और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 21 अगस्त के दिन को जाना जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के तौर पर, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में यूएन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। अकेले 2017 में ही आतंकवाद के कारण जो मृत्यु हुई थी उनमें से लगभग 3/4 सिर्फ दुनिया के 5 देशों में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दिन आतंकवाद के पीड़ितों और उनकी जरूरतों को पूरा करने और उनके अधिकारों को बरकरार रखने की अनुमति देने के नाम है। चलिए 8:51 और 42 सेकंड पर बातों का ये सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे म्यूजिकल दिल्लगी के इस पहले सेगमेंट में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। लेकिन फिलहाल आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गाना अदिता जी की आवाज़ में।

8:54 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली। और कहते हैं कि हमारे दोस्त और जो किताबें हम अपने आसपास रखते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जो रास्ता हम इख्तियार करते हैं और हमारी सोच को अगर हम सही कर लें तो फिर हमारा जीवन बेहतरीन बन जाता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, जरा विचार कीजिएगा आज। और आगे बढ़ते बढ़ते काम की एक दो खबरें मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं जो शायद आपके काम आ जाएं, तो शेयर करना चाहूंगी यहाँ आपके साथ। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या फिर उसके पूर्व छात्र हैं तो और अगर आप हेल्थ सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि 25 अगस्त को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जा रहा है जिसमें 15 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी और इसमें फ्रेशर और अनुभवी यानी एक्सपीरियंस्ड दोनों ही तरह के एप्लीकेंट्स आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा फरीदाबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में चल रही शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के चलते सुबह के समय 9 सितंबर तक इसके आसपास यातायात प्रभावित रहेगा और खजूरी चौक से पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जाने वाले रास्ते में वाहनों की जो गति है वो भी थोड़ी कम रहने की संभावना जताई गई है। तो अगर आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलिएगा, निकलिएगा बाहर। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं हम वक्त के साथ और 9 बजने में थोड़ा ही समय बचा है और एक खूबसूरत गाना मेरे पास और है मेरी प्लेलिस्ट में जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसी गाने के साथ फिलहाल आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलती हूँ यही 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। आप सुनते रहिए गोल्डन म्यूजिक, सराहते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए हमारे मेल आईडी fmgold@gmail.com के जरिए। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट जिसमें आपके साथ होंगी रेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विषय विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त मंत्रालय ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त मंत्रालय के अनुसार ये नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। उधर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवे लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय शामिल हैं। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज एम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का आज अनुमान है। दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to the media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into two parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi,

दोस्तों, सुबह का सूरज सिर्फ उगता नहीं है, आपके सपनों को भी मौका मिलता है। कल जो नहीं हुआ उसे भूल जाओ, आज नया बनना है। डर के मारे बैठ मत जाओ, एक कदम बढ़ाओ, दुनिया खुद रास्ता देगी। लोग क्या कहेंगे।

ये सोचकर खुद को मत रोको, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने हर मुश्किल में खुद को संभाला है। आज फिर उठो, मेहनत करो, हंसो और अपनी शर्तों पर जियो। याद रखो, जिस दिन तुमने हार मानने से मना कर दिया, उस दिन जीत ने तुम्हारा नाम अपने पास लिख लिया। तो चलो, आज तुम्हारा दिन है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस म्यूजिकल दिल लगी के इस खूबसूरत सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूजिकल दिल लगी।

भाई जिंदगी जीने के लिए किसी बहाने की जरूरत थोड़ी होती है, आप तो जी रहे हैं और इसे खूबसूरत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी शर्तों पर जिएं। वेल, जिंदगी जीना आसान है लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग भी जरूरी होती है। और अगर मैं बात करूं एक ऐसी ही प्लानिंग की तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक केंद्र सरकार की पेंशन योजना है ये, और ये योजना 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन देती है। इसके लिए उम्र 18 से 40 वर्ष और मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं मासिक योगदान की जो आपकी तरफ से आपको देना होता है, तो उम्र के हिसाब से रुपए 55 से लेकर 200 रुपए तक हर महीने आपको इसमें जमा करना होता है, जितना आप चाहें, और उतना ही योगदान सरकार भी करती है। श्रमिक की कोई मृत्यु होने पर या किसी भी अनहोनी की वजह से अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो जीवन साथी को 50% पेंशन भी मिलती है। और अगर मैं बात करूं इसकी पात्रता की तो असंगठित क्षेत्र का कामगार

ना जरूरी है। मासिक आय जैसा कि मैंने कहा 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए और आधार कार्ड और बचत बैंक या जनधन खाता जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा पंजीकरण करने का तरीका क्या है ये भी बता दूं, अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र यानी सीएससी पर जाना है आपको, आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ रखना है और स्वप्रमाणित विवरण के साथ खाता सक्रिय करवाना है और उसके बाद आप ये जो पेंशन योजना है इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट है, मानधन पोर्टल है, जिस पर आप जाकर इस योजना से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा मानधन.in पर आपको जाना है। और अगर आप चाहें तो हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, वो भी बता देती हूँ, 1-44-34 यानी 1-44-34 और 1-800-267-688 यानी 1-800-267-6888 और एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए 1-800-267-688। तो भाई अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं और एक उम्र के बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी रहे इसकी सुनिश्चितता करना चाहते हैं, इसे पक्का करना चाहते हैं, तो फिर आप इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट देना है और आगे 60 साल की उम्र के बाद की सिक्योरिटी आपको इसके साथ मिल जाती है। तो भाई ये तो हो गई आज विकसित भारत में होने वाले अलग अलग योजनाओं के साथ लोगों के विकास की बात, लेकिन फिलहाल एक और गीत और इस गीत के बाद और भी बहुत कुछ है मेरे पास, जुड़े रहेगा म्यूजिकल दिल्लगी में।

0: दिल चुराने का जो जादू होता है ना, ये इन पुराने गीतों में बिल्कुल होता है ना। आप भी अगर पुराने गीतों के फैन हैं और आप भी अगर पुराने कुछ गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आज आपके लिए कुछ खास है मेरे पास। क्या खास है, चलिए प्रदीप जी से जानते हैं। हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, जो जिस कार्यक्रम की बात अब मैं करने वाली हूँ, और प्रदीप शर्मा जी से हम जानेंगे कि आज की शाम आप कहाँ पर जा सकते हैं और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो,
1: नमस्ते जी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम गोल्ड पर।
1: जी धन्यवाद।
0: अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा है आज, और वजह वही है कि एक खूबसूरत म्यूजिकल इवनिंग आप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो इस म्यूजिकल इवनिंग का पहले तो टाइटल बताइए, रीजन बताइए कि क्यों ये ख्याल आया और ये क्या है एग्जैक्टली, आप हमें इस बारे में सब कुछ बताएं।
1: एक्चुअली हमारी संस्था है मुकेश स्मृति कला संगम, जो कि हर साल मुकेश जी की याद में कार्यक्रम करती है, और इस बार एक ऐसा मौका आया है कि मुकेश जी हमें बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि उनको गुजरे हुए 50 साल हो जाएंगे इस साल। तो इतने अच्छे अच्छे गाने वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो उनको उन्हीं गानों की प्रस्तुति हम आज स्टेज पर लाइव सिंगिंग के साथ देंगे। और ये कार्यक्रम इंडिया इस्लामिक सेंटर में शाम को 5:30 से शुरू होगा।
0: तो क्या इसमें कोई भी आ सकता है?
1: हाँ, कोई भी आ सकता, सबके लिए ओपन है, कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप सबको आमंत्रित कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से।
0: जी, बहुत बढ़िया। और क्या खासियत है इस कार्यक्रम की, कुछ हमें और बताएं इस बारे में।
1: खासियत ये है कि मुकेश जी के कुछ चुने हुए गाने इसमें पेश किए जाएंगे, और दिल्ली मुंबई के कुछ प्रोफेशनल कलाकार और कुछ अच्छा गाने वाले मुकेश जी के डाई हार्ड फैंस इसको प्रस्तुति देंगे। साथ में मशहूर जो कवि और गीतकार हुए हैं नीरज जी, उनके बेटे हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और मुकेश जी के फैमिली से भी, एक्सटेंडेड फैमिली से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज हमारे खास मेहमान रहेंगे, और एक अच्छा कार्यक्रम सबको देखने को मिलेगा।
0: क्या बात है, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करना चाहेंगे और जरूर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे।
1: जरूर,
0: तो एक बार फिर से पता बता दीजिए कहाँ पहुँचना है और कितने बजे।
1: ये इंडिया इस्लामिक सेंटर मेन लोधी रोड पे है, मौसम विभाग के सामने।
0: तो भाई, जिसने भी इस एड्रेस को नोट कर लिया है, जरूर यहाँ पर पहुंच जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मुझे पता है कि हमारे जो एफएम को सुन रहे हैं वो सभी संगीत प्रेमी हैं, और आज इस शाम में जरूर वो आपके साथ वहां पर शामिल होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, आपका भी शुक्रिया
0: जी। तो प्रदीप जी ने आपको बता दिया कि आपको कहाँ जाना है, शाम को इस्लामिक सेंटर लोधी रोड पर पहुंच जाइए, शाम 5:00 से ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है मुकेश जी की याद में, तुम जो हमारे मीत ना होते, ये खूबसूरत प्रोग्राम जहां पर बहुत सारे सिंगर्स होंगे, बहुत सारे गीत होंगे और बहुत से कुछ खास मेहमान भी होंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहुंच जाइए आज शाम को 5:00 इंडिया इस्लामिक सेंटर लोधी रोड में। फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ, क्योंकि बात हुई है मुकेश साहब की, तो फिर उन्हीं का एक गीत होना चाहिए ना। ये रहा आपके लिए।

भाई रोजाना वीकेंड पर मॉल ट्रैफिक की भीड़ देखकर अगर आप बोर हो गए हैं, कैफेज में जाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं, किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप जाकर पूरे हफ्ते की थकान मिटा सके, तो आपको मैं बता दूं कि अमृत उद्यान आपके लिए खुला हुआ है। आप यहां जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद 15 एकड़ का अमृत उद्यान बेहद ही खूबसूरत है और यहां देश के स्थानीय फूल देखने को आपको मिल जाते हैं। इधर आपको व्यापारियों के जो शॉप्स हैं वो ज़्यादातर इन दिनों में बंद रहती हैं, जैसे संडे में या फिर किसी और ऐसे दिन जब आप फ्री महसूस करते हैं। तो भाई थोड़ा सा अपने कारोबार से, व्यापार से थोड़ी सी राहत पाइए, निकलिए और जाइए इस जगह पर जहां पर खूबसूरत फूल आपका स्वागत करने के लिए खिले हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सारे आपको ऐसे फूल मिलेंगे जिनमें अपराजिता, वर्षा फूल, गुल मेहंदी, रुक्मणी, नागपना और बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं कि जाना कब है, तो 16 अगस्त से खुला हुआ है और 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप यहां पर जा सकते हैं, इस खूबसूरत उद्यान की सैर कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि सोमवार का दिन जो है वो ये उद्यान बंद रहने का दिन है, उस दिन इसकी देखरेख के लिए इसे बंद किया जाता है, तो आप इस दिन यहां जाने से परहेज करें। और अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं यहां जाने के लिए, तो आपको बता दूं कि अमृत उद्यान को देखने के लिए आपको वैसे तो कोई शुल्क नहीं देना है, लेकिन यहां एंट्री बिल्कुल फ्री होने के साथ साथ आपको एडवांस बुकिंग ऑनलाइन जरूर करानी होगी, उसके बिना आपको यहां पर प्रवेश मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है visit.rashtrapatibhavan.gov.in, इस पर जाकर आपको अपना स्लॉट बुक करना है। और आपको कोई भी टिकट अपने पास नहीं वहां पर मिलेगा, तो इसलिए आप ये जो बुकिंग है ये अपने साथ इसका स्क्रीनशॉट रख लें, जो कि आप वहां दिखा सकें जरूरत पड़ने पर। और आप जिस दिन जाना चाहते हैं उसके लिए कम से कम एक दिन पहले आप बुकिंग कर लें, वहीं सुबह 10 बजे के बाद ऑनलाइन बुकिंग बंद हो जाती है, और इसलिए सोच समझ कर पहले से ही प्लान कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ वेन्यू रोड के पास मौजूद गेट जो है 35 नंबर, वहां से आप यहां एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप यहां जाते हैं तो पैदल चलने का जो रास्ता है वो बहुत ही सुविधाजनक है। इस उद्यान के अंदर रेस्ट रूम्स हैं, फर्स्ट एड भी यहां पर आपको मिल सकता है अगर जरूरत पड़े तो, बारिश से बचने के लिए रेन शेल्टर्स का इंतजाम है यहां। और अगर आप मेट्रो से आने वाले हैं तो आपको सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो से हर आधे घंटे में शटल बस सेवा मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप करके यहां पर पहुंच सकते हैं। और एक और खास बात कि इस बार दो खास दिनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस दिन खिलाड़ियों के लिए खास इंतजाम है यहां पर। और वहीं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर भी अमृत उद्यान में स्पेशल एंट्री का इंतजाम देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप टीचर हैं या फिर आप खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए भी यहां पर स्पेशल ये दो दिन है जिनमें आप जा सकते हैं, और इस जगह पर कुछ स्पेशल है आपके लिए, उसे भी देख सकते हैं। वैसे खूबसूरत फूलों को देखना किसे अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आंखों के लिए एक बेहतरीन ट्रीट आपको मिल गई हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों को ये ट्रीट मिले, तो पहुंच जाइए अमृत उद्यान बिना देर किए। जैसा कि मैंने कहा कि सुबह 10 बजे से ही खुल जाता है, लेकिन शाम 6 बजे तक तो खुला रहता है, पर 5:15 बजे यहां लास्ट एंट्री होती है, तो इसके बाद आप ना जाएं, इससे पहले ही आप यहां पहुंचने की कोशिश करें ताकि आप इस उद्यान को अच्छे से देख सकें। तो भाई 15 सितंबर तक खुला हुआ है, पहुंच जाइए जब भी मौका मिले।

0: पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, 9:42 और ये हुए पूरे 42 सेकंड, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और दोस्तों, आज है 21 तारीख यानी 21 अगस्त, और आज का दिन भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज है कई वजहों से, लेकिन उनमें से एक वजह ये है कि आज जानी मानी लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म दिवस होता है। और अगर हम बात करें इस्मत चुगताई की, तो उनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में, और उनका बचपन ज्यादातर जोधपुर में बीता जहां उनके पिता एक सिविल सेवक थे। इस्मत चुगताई अपने माता पिता के 6 बेटे और 4 बेटियों में 9वीं संतान थी। इनके भाई मिर्जा आजम बेग चुगताई जो थे वो भी एक जाने माने लेखक थे, और इस तरह इस्मत चुगताई को किशोरावस्था में ही भाई के साथ साथ एक गुरु भी मिल गया था। अपनी लेखन की जो शिक्षा थी वो उन्होंने उन्हीं से शुरू की, और अपनी शिक्षा जो वैसी नॉर्मल शिक्षा जिसे कहते हैं वो पूरी करने के बाद इस्मत चुगताई लेखन के क्षेत्र में आ गई। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री चरित्रों को बेहद संजीदगी से उभारा, और इसी वजह से उनके पात्र जिंदगी के बेहद करीब नजर आते हैं। इस्मत ने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदू उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। उनका भाषा प्रवाह अद्भुत था। इसने अगर मैं बात करूं कि उनकी रचनाओं की, तो जो उनकी भाषा थी इसने उनकी रचनाओं में एक लोकप्रिय भूमिका निभाई, या यूं कहूं कि उनको लोकप्रिय बनाने में एक खास भूमिका निभाई। और इस्मत चुगताई अपनी लिहाफ कहानी की वजह से खासी मशहूर हुई। उर्दू जगत में इस्मत के बाद सिर्फ सआदत हसन मट्टो ही ऐसे कहानीकार थे जिन्होंने औरतों के या महिलाओं के मुद्दों पर बेबाकी से लिखा। इस्मत का कैनवास काफी व्यापक था, जिसमें अनुभव के रंग उकेरे गए थे। ऐसा माना जाता है कि टेढ़ी लकीर उपन्यास में इस्मत ने अपने जीवन को ही मुख्य प्लॉट बनाकर एक महिला के जीवन में आने वाली समस्याओं को पेश किया। उपन्यास टेढ़ी लकीर, फायर और मृत्युदंड जैसी फिल्मों के किरदार तो पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन इस्मत ने उन्हें कहीं पहले गढ़कर अपने उपन्यासों में पेश कर दिया था। यूं तो उन्होंने जिद्दी, लिहाफ, सौदाई, मासूमा, एक कतरा खून जैसे कितने ही उपन्यास लिखे, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर और जिसका विरोध भी हुआ वो टेढ़ी लकीर है। इस्मत चुगताई ने कागजी है पैरहन नाम से एक आत्मकथा भी लिखी थी। इस्मत को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से कई खास सम्मान और इनाम मिले। 1975 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री का खिताब दिया। 1990 में मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें इकबाल सम्मान से नवाजा। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, गालिब अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड भी दिए गए। आधी सदी तक अदब की दुनिया में रोशनियां बिखेरने के बाद 24 अक्टूबर 1991 को उन्होंने इस दुनिया को मुंबई महाराष्ट्र में अलविदा कहा। लेकिन इस्मत की जो कहानियां हैं, जो लेखनी है, वो इस कदर खूबसूरत है कि आज उनके निधन के इतने साल बाद भी लोग उन्हें पढ़ते हैं, सराहते हैं, और शायद आने वाले युग को उनकी कलम ने बहुत पहले ही देख लिया था। वेल, फिलहाल तो बात हुई इस्मत चुगताई की, और भी बातें करूंगी अगर वक्त बचा तो। फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं जिसका हमेशा आपको इंतजार रहता है, और क्योंकि 3-4 दिनों से ना मौसम ऐसा है दिल्ली में कि थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है और बारिश आने का नाम नहीं ले रही है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई बादलों कहीं दूर मत जाओ, बरस जाओ ताकि मौसम एक बार फिर से खूबसूरत हो जाए, है ना।

ये जो इतनी जोर शोर से पुकार रहे हो ना, मेघारे मेघारे, अगर बरस गए तो मुझे पता है कि मेरे जैसे लोग तो पक्का भीगने के लिए निकलने वाले हैं। भाई बारिश में भीगना अच्छी बात होती है और मौसम का लुत्फ तो लेना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी मौसम को थोड़ा सा सावधानी से भी निकलने देना चाहिए। यूं कहूं कि कुछ सावधानियां होती हैं जो हर मौसम में जरूरी होती हैं। तो अगर बात करूं बरसात के मौसम की, सुहाना तो लगता है लेकिन कुछ बीमारियों को भी साथ ले आता है। थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि बारिश का पानी और बाहर का कटा फटा बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सिर्फ उबला हुआ या फिल्टर पानी पीना चाहिए। स्ट्रीट फूड, पत्ते वाली सब्जी और कच्चा सलाद इस मौसम में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। खाना हमेशा ताजा और गर्म खाइए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको अदरक, तुलसी, शहद, चाय, हल्दी वाला दूध, विटामिन सी और फल जैसे अमरूद, संतरा, ये सब रोज खाना चाहिए। सर्दी जुकाम से बचाते हैं ये। और अगर मैं बात करूं कि बारिश में भीग जाओ तो तुरंत कपड़े बदल लो और पैरों को सुखाकर थोड़ा सा पाउडर लगा लो। गीले जूते मोजे पहनने से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि काफी देर तक जूते गीले रहते हैं और पांव उसमें बंधे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको घर आकर जल्दी से अपने पांव को धो लेना चाहिए और उन्हें सुखाकर अच्छे से तब अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखना चाहिए ताकि आप ज्यादा ना भीगे। वेल, अगर भीगने का मन हो तो मैं तो कहती हूँ मौसम का लुत्फ लीजिए, लेकिन थोड़ी सावधानियों के साथ। डेंगू और मलेरिया का सीजन है, घर में पानी जमा मत होने दीजिए। सोते समय मच्छरदानी या कॉइल जरूर लगाइए। फुल स्लीव्स पहनिए और हल्का खाना खाइए। तले भुने और ज्यादा मीठा खाने से पाचन जो है वो खराब होता है। खिचड़ी, सूप, दलिया बेस्ट है। तो जब भी हो सके थोड़ा बहुत तला भला खा लीजिए, लेकिन ज्यादातर वक्त खिचड़ी, सूप, दलिया ऐसी चीजों को जगह दीजिए। हाँ, हाथ धोना मत भूलिए बाहर आने के बाद साबुन से कम बाहर से जब आप आते हैं तो एक मिनट तक हाथ धोना वायरस का सबसे आसान इलाज है। और एक्सरसाइज आपको इंडोर करनी चाहिए, जिम या घर पर ही हल्की एक्सरसाइज। योग आप करेंगे तो भीगकर एक्सरसाइज करने से बुखार जो है वो पकड़ लेता है, इसलिए जब आप भीगे हों तब इसे अवॉइड करिए। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका जो शरीर है, जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहती है, आपको हमेशा दुरुस्त रखती है। और इसके अलावा छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखते हुए बारिश को एंजॉय करना है। हेल्थ भी सेफ रहेगी और इस मौसम का पूरा मजा भी आप ले सकेंगे, है ना।

तो भाई इसी के साथ म्यूजिकल दिल्लगी का सफर तो यहीं तक, लेकिन इसके ठीक बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, और मैं फिर से मिलूंगी 10:30 बजे लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो जुड़े रहिएगा 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस फिलहाल के लिए लेती हूँ विदा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया।

0: था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministers and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to the media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into 2 parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
3: I appeal to my fellow citizens to reflect upon the consequences of the past decision to permit the division of Vande Mataram into 2 parts. We have unfortunately witnessed the regrettable consequences of that decision. I therefore urge all citizens to stand united against any such course of action and to reject the politics of appeasement pursued by the Congress Party.
2: India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will

0: be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The BRICS Tourism Ministers meeting will begin in Jaipur today under India's BRICS Chairship 2026. Tourism ministers and senior officials from BRICS member countries will participate in the two-day meeting, which will focus on strengthening cooperation in the tourism sector. Key areas of discussion will include sustainable and responsible tourism, skill development, seamless travel, and the use of technology and artificial intelligence in tourism. National Testing Agency NTA has said that its Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students and rejected concerns about it being expensive. An NTA Answer Key Challenge is an online process where candidates who take an exam like JEE Main, NEET or UGC NET can object to errors in the provisional answer key. In a social media post, NTA said if even a single candidate challenges a question and the subject experts accept the challenge, the revised answer key applies to every candidate who wrote the exam. The Trump administration has imposed fresh sanctions on Hezbollah and redesignated the group as an Iranian proxy. The U.S. Treasury Department announced sanctions on 10 individuals alleged to be part of a network responsible for transferring cash to Hezbollah. According to the Treasury Department, the network used couriers traveling on commercial airline flights between Lebanon, Turkey, UAE and Iran to move large amounts of money across jurisdictions, providing an avenue outside the formal financial system for Hezbollah to obtain foreign currency and evade sanctions. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for very heavy rainfall over Madhya Pradesh for today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Uttarakhand, western Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast India for the day. In Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky with a spell of light rainfall today. In hockey, Indian women's team will take on the Netherlands in the first match of the second pool phase of FIH World Cup at Amstel Wien today. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Earlier, India advanced to the second round after playing out a goalless draw against England in the final Pool D match yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विचार विमर्श में ब्रिक्स देशों और व्यापक वैश्विक दक्षिण में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पुणे में आयोजित यह ICT ट्रैक डिजिटल तकनीक के माध्यम से समावेशी टिकाऊ और लचीले विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। ये बैठक 19 और 20 अगस्त को जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक के बाद हो रही है। मंत्रियों की इस बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग और मजबूत होगा तथा पर्यटकों की आवाजाही और लोगों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर 100 से ज्यादा चालक दल के सदस्य बंधक बनाए गए हैं। वर्ष के पहले 5 महीनों में सोमालिया के समुद्री क्षेत्रों और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से जुड़ी 17 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गयी। इनमें कम से कम 3 वाणिज्यिक जहाजों और पारंपरिक लकड़ी के नौकायन पोत 5 धो का अपहरण शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। इससे औपचारिक रूप से यह माना जाता है कि हिजबुल्ला के सैन्य अभियान, भारी सुरक्षा गतिविधियां और बड़े वित्तीय नेटवर्क IRGC के विस्तार के तौर पर काम करते हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो राज्य में कल एक नदी में नाव पलटने से करीब 47 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से अधिक लोग सवार थे। ये लोग काम के लिए गुराव शहर के खेतों की ओर जा रहे थे। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत की खबर है और कई अन्य घायल हुए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के हमलों का असर पड़ोसी देशों मोल्दोवा और रोमानिया तक फैल गया है। रोमानिया में यूक्रेन की सीमा के पास एक ड्रोन गिरकर जल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित होने पर हाकाइंडे हिचिलेमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भाई कोई तो हो जो दिल की बात सुने, कोई तो हो जो हमारी बात पूरी करे, है ना। और इसीलिए तो आपके लिए है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा वो गीत है जो आपको पसंद है। और अगर हमें मौका मिला तो हो सकता है कि आज आप हो जाएं वो लकी श्रोता जिसका गीत आज हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो आप समझते हैं ना, इतने सारे दोस्त हमें मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, और उसके बाद सबके मैसेजेस को शामिल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, और सबके गीतों को शामिल कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। पर सब्र बनाए रखिए, आज नहीं तो कल आपकी बारी भी जरूर आएगी। वेल, फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि किस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है, 9868868753 यानी 9868868753, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com लिख भेजिए हमें वो गीत, वो फिल्म, आपका नाम, शहर का नाम जो आप सुनना चाहते हैं, वो गीत हो सकता है कि आज मेरी लिस्ट में हो। तो चलिए कुछ नामों को शामिल कर लेते हैं। हमें जैसे ही हमारी घड़ी में वक्त होता है, यहाँ पर हमारे पास बरसात हो जाती है आपके संदेशों की, तो चलिए लेते हैं कुछ नाम। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशान शिपा और पूजा परिहार का हमें मैसेज पहुंचा है, और गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी मामिका, वाणी थांदी का हमें मैसेज मिला है, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, और हमें लिखा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। और हमारे पास मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है अफरोज शेख का, नेमुआ सुपौल बिहार से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। और आपके बहुत सारे मैसेज हैं, हर एक मैसेज के बाद आपका मैसेज है, ऐसा मत करिए, कोशिश करिए कि एक ही मैसेज लिखें ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना का मैसेज, और हमें लिखा है ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू ने, और ये कहाँ से लिख रहे हैं, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से। और ये मैसेज अमन खोरवाल, सचिन खोरवाल, जयराम खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का, उत्तम नगर होली चौक से। और इसके साथ साथ हमारे पास मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवीएम जैन का मैसेज, और ढेर सारे और भी मैसेजेस हैं। अलीगढ़ से हमें लिखा है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने, और ये मैसेज महाराष्ट्र से, परभणी से हमें लिखा है, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रीतेश संघई और पूरे संघई परिवार ने, और राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी ने, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, और कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा का हमें सतना एमपी से मैसेज पहुंचा है, और मजनू का टीला से, और साथ ही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने सतना एमपी से लिखा है। और ये मैसेज मिला है फिर से वही मैसेज रिपीट, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह ने, पद्मा टॉकीज नेपानगर से, और हमें लिखा ये पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर ने, नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से हमें लिखा नारायण इंगले, सोपान थाड़े और आशीष मोहरकर ने। और फिर से वही मैसेज करते रहिए, खेलते रहिए, फिर आपके नाम ही मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊंगी, इसका भुगतान आप ही से होगा। फिर उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल का मैसेज पहुंचा है हमें आर्य नगर कोका भिलाई से, और धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि आदित्य और अंजलि जंघेल का मैसेज, और भवानीगढ़ पंजाब से हमें समर सचदेवा, करण सचदेवा ने मैसेज पहुंचाया, और ये मैसेज है किसका, उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से, बुलंदशहर से हमें मोहम्मद सईद अब्बासी, पूरे परिवार ने हमें लिखा है, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फायरा ताहिरा का मैसेज हमें पहुंचा, और साथ ही ये है हमें जो लिखा है दिवाकर शेनॉय ने मैंगलोर से, शिव कुमार, शिवा गोप, प्रेम गोप और कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली का मैसेज, पश्चिम सिंह भूम, चाईबासा, झारखंड से हमें लिखा है,
पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और संदीप मक्कर ज्योति मन्नत भारत कमल पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से लिख रहे हैं। साथ ही ये मैसेज हमें डॉक्टर पारुल डॉक्टर विवेक का बागपत यूपी से मिला है और हमें राम नरेश चिक रेखा चिक करण अल्पेश और सृष्टि यादव ने लिखा है संगम विहार हनुमान मंदिर से। थोड़ा सा नामों को क्लियर लिखिए, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मेघा राहुल रचिता खुराना केशुरीधान खुराना का हमें बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा से मैसेज पहुंचा। गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति भूमिका ने हमें लिखा है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। अतर सिंह राजकुमारी अनुज अंजलि डॉक्टर पारुल अद्विक समयपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं और प्रदीप पूजा ने हमें लिखा है और कहां से जनकपुरी से और लिखते हैं कि कल मेरी बेटी पारुल का बर्थडे था तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हमारे पास और भी मैसेजेस हैं लेकिन बाद में शामिल करूंगी फिलहाल।

0: एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने हमें खुर्जा यूपी से इस गीत की फरमाइश भेजी है। कल आज और कल फिल्म से किशोरदा और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गीत आपके लिए।
1: क्या
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

वो भी अपने मेल में आपका नाम शामिल करें, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप हमें मेल कर रहे हैं तो फिर आप ही कीजिए, दूसरों के साथ अपने नाम शामिल मत करें दोस्तों प्लीज। अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। और इसके अलावा कुलदीप सिंह खुरीवाल का मैसेज हमें सेक्टर 17 वसुंधरा गाजियाबाद से मिला है, और ये मैसेज हमें मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर का ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सामिर साबिर अंसारी मेहराज जहां का मैसेज हमें, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ और कलीम अंसारी का हमें मैसेज मिला है, नई बस्ती गंजुंडवाड़ा से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ का हमें मैसेज पहुंचा है, दाऊद सराय सहारनपुर से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष का हमें मैसेज मिला है, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, रेणु गोयल एसपी गोयल ने हमें रोहिणी दिल्ली से मैसेज पहुंचाया है, और हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का हमें दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जग्गू ताई राजे जाधव, कुमार संचित और प्रथमेश सर्वद, कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख का मैसेज हमें मिला है पूरे परिवार के साथ, मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से, और ये मैसेज हमें महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा का मैसेज पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुमित रमेश का मैसेज, डमराव बिहार से डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का मैसेज, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद का मैसेज, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान, और अब पूरे गांव का नाम आप शामिल मत करिएगा एक मेल पर, ऐसा मत करिए दोस्त, क्योंकि एक ही मेल में इतने सारे नाम होते हैं तो फिर एक मेल से अगले मेल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर और कुमार गौरव मंदुरकर का मैसेज, और हमें लिखा है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने, अनवर साबरी ये देखिए दोबारा मैसेज, और सहारनपुर चंद्र नगर सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग का मैसेज, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त थोड़ा सा कम रहता है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बेटा बजाज का मैसेज, और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है फिर से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मैसेज, और राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी का जैन मंदिर वाली कली कुरावली, मुझे लग रहा है मैंने पढ़ लिया है, राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार गांव फ्रांसी हिसार से हमें लिख रहे हैं, और साथ ही राशिद हुसैन का फिर से मैसेज, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का मैसेज है, और हमें लिखा है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से मैसेज है, और ढेर सारे अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का, मोहम्मद अख्तर का मैसेज, कहां से नाम नहीं लिखा, और ये मैसेज हमें लिखा है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने दतरेंगी से, साथ ही ये मैसेज बेबी आलिया, आयान बाबू, नौशाद सलमानी, निसार सलमानी का धन्नौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से, और सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता, सुजाता, संजू, लला, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंज भी फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से लिख रहे हैं, और अगर थोड़ा सा और पता लिख देते तो मैं आपके घर ही पहुंच जाती, मोहम्मद नहीं ये नाम है जगदीश कुमार, राहुल, ऋतिक का और नांगलोई से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, और साथ ही ये मैसेज हमें मिला है योगेश शर्मा, निवान, मीना, राज शर्मा, मैंडी और सौरव का साइना के साथ, भाई इतना अगर चिपका के नाम लिखेंगे ना तो फिर पढ़ना मुश्किल होगा, एक के ऊपर एक नाम ऐसे लिखें ताकि मैं उन्हें पढ़ पाऊं। इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है आदर्श नगर मलौट पंजाब से, और हमें लिखा है किसने ये बता दूं, जगदीश कुमार ने फिर से मैसेज भेज दिया, देखिए आप, चलिए अब मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, अब मैं जल्दी से आपको गीत सुनाऊंगी, अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमें इस गीत की फरमाइश भेज रहे हैं, तो ये रहा आपके लिए।

और अब कुछ और मैसेज। शेरवानी स्कूल गंजरुणवाला उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज, और शमसुल कमर राही, शाइना फातिमा, अदनान, फैजान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी का गंजरुणवाला से मैसेज, धनोरी विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल का मैसेज, और हमें लिखा है चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, कुमार सौरभ महतो ने कदमा जमशेदपुर से, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन और राजकुमार कुलदीप गांधी का मैसेज, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन, मुल्लापुर दाखा से हमें लिख रहे हैं, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का मैसेज, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू तमन्ना भाटिया का हमें मैसेज पहुंचा है जमशेदपुर से, और हमें लिखा है ये मुकेश जतिन, अनन्या, ममता, पूनम, रितिका, सुमन ने कहां से नहीं मिल रहा मुझे, और इसके अलावा प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यशस्वी का छत्तीसगढ़ पलारी से हमें मैसेज पहुंचा, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान का मैसेज, और नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद का मैसेज हमें मिला है रामपुर महाराष्ट्र फातिमा कॉलोनी से, और हमें लिखा गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर ने, और इसके अलावा मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का मैसेज, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका का मैसेज, कुम्भार गली श्रीरामपुर से, और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, और करिश्मा अविका विशाखा सोनवने का मैसेज, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुलाल सिंह और अविराज का मैसेज, लोहगढ़ ठाकुरावाला से, और हमें लिखा है कोपर गांव से सुरेश मालोद, वर्षा मालोद ने, और शेव गांव से श्रीराम गोंदली और उषा गोंदली का मैसेज हमें मिला है, और ये मैसेज हमें लिखा है सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ ने, और साथ ही हमारे पास ये मैसेज नवीन भाटिया का मोतीनगर से पहुंचा है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित घोषी गोस्वामी का मैसेज पहुंचा है श्रीगंगानगर राजस्थान से। मैसेजेस कुछ और भी हैं लेकिन वक्त अब नहीं बचा है तो कोशिश करती हूं एक और गीत आप तक पहुंचा दूं, एसपी गोयल और रेणु गोयल की पसंद, ये खूबसूरत गीत आपके लिए लता जी की आवाज में, ये रहा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया। श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर बढ़ते से दबाव का संकेत बताया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में आज बादल छाये रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलप्पुड़ा, एर्णाकुलम, मालप्पुरम, कोषिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वई खेंग और वांग चांग से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद और उसके बाद आप सुनेंगे तस्वीर। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
1: दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। दोस्तों, फैज अहमद फैज साहब का लिखा हुआ यह खूबसूरत शेर संदेश है हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में नाकामयाबियों का समय देख रहे हैं।
2: उनका कहना है कि हो सकता है इंसान को अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए समय तो लग सकता है, लेकिन उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारे देश के महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी एक ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने अपने बचपन की जिंदगी में बहुत दुख देखा।
1: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। घर में बिजली तक नहीं थी। वे रात में पढ़ाई करने के लिए केवल एक घंटे जलने वाली लालटेन का इस्तेमाल करते थे। सुबह उठकर मीलों पैदल चलना और परिवार की मदद के लिए अखबार बांटना उनका रोज का काम था।
2: लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कभी जी नहीं चुराया। पढ़ाई में कामयाबी हासिल करने के बाद भी जब एयरफोर्स के इंटरव्यू में 9वें स्थान पर रहने के कारण चयन नहीं हुआ तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और विज्ञान को अपनी राह चुनी। विज्ञान के प्रति लगन और ईमानदारी के दम पर देश के मिसाइल मैन और महान राष्ट्रपति बने।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: कहते हैं कि मेहनत को जिसने अपनी पहचान बना लिया, समझो कामयाबी को उसने अपना मेहमान बना लिया। दोस्तों, कामयाब तो अपनी जिंदगी में सभी होना चाहते हैं, मगर कामयाब होने के लिए, अपने खुद की पहचान बनाने के लिए जिस मेहनत और लगन की जरूरत होती है, उसे कम ही लोग कर पाते हैं।
2: कोई कहता है कि उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई कहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है मगर पैसे नहीं है, तो कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा काम मिल जाए जो घर बैठे ही किया जा सके। यकीन मानिए, ऐसा काम तो है, जरूरत है तो बस आपके समझने की, उसके बारे में जानने की।
3: क्योंकि कोई भी काम करने वाला और अपनी पहचान बनाने की चाहत रखने वाला आदमी बेकार नहीं होता, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें, अपनी हिम्मत को जगाएं, अपने मतलब का वो काम चुनें जहां आपको पैसे भी मिलें और आपकी पहचान भी,
2: ताकि आप अपने घर में और अपने इस समाज में आप सिर उठा कर चलें और कह सकें, अब मैं बेकार नहीं हूं, अब मेरी भी एक पहचान है, मेरी भी अपनी एक शख्सियत है। और याद रहे कि कामयाबी इस बात की मोहताज नहीं होती कि आप में

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दें तो आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
1: नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि हारना इस बात का संकेत नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि अभी आप मजबूत होना सीख रहे हैं। इस तरह अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता।
2: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। कामयाब होने का संदेश ये है कि सफलता किसी जादुई चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत, पक्के इरादे और असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ने से मिलती है।
1: तभी तो महान लोगों का कहना है कि अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक सफलता न मिल जाए, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं।
2: सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।

0: तमाम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

तो भाई हम आ गए हैं लेकर तस्वीर, और आज की तस्वीर के सफर में हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर पर, जिसे एबट माउंट के नाम से जाना जाता है। एबट माउंट एक छोटा और सुरम्य हिल स्टेशन जो उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श प्लेस है। प्रकृति की सुंदरता से भरपूर काली कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत जिले में स्थित ये हिल स्टेशन प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो शांत और निर्मल वातावरण में सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं उन लोगों के लिए। एबट माउंट 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ एक खूबसूरत औपनिवेशिक काल का चर्च है। घना जंगल और विशाल हिमालय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ कई शानदार पगडंडियां और पैदल मार्ग भी हैं, जो कई खूबसूरत जगहों तक ले जाते हैं। ये पंचेश्वर का आधार भी है, जहाँ सरयू और महाकाली नदियों के संगम पर मछली पकड़ने का आनंद लिया जा सकता है। तो जुड़े रहिए तस्वीर के इस खूबसूरत सफर में। मैं आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस ले चलूंगी आज आपको माउंट एबट माउंट की तस्वीर हम उकेरेंगे, और ये खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि उत्तराखंड में है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, आज आप और हम पहुंचे हैं एबट माउंट उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर पर, जो उत्तराखंड में बहुत खास है यहां आने वालों के लिए। ये हिल स्टेशन प्रकृति की सुंदरता और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का आनंद लेने के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा ये कपल्स के लिए भी एक बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहां पर एकांत में साथ बिताने के लिए कई खूबसूरत पल आपको मिल सकते हैं। ये ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। एबट माउंट एक सुरम्य पुराना शहर है जो उत्तराखंड के चंपावत जिले के काली कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। और यहां एक भव्य गिरजाघर और पहाड़ी पर बने 13 एकांत कॉटेज के जरिए बीते ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का आकर्षण देखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक ब्रिटिश व्यवसायी जॉन हेरोल्ड एबट द्वारा स्थापित एबट माउंट एक ऐसा स्थान है जो लगभग पहले जैसा ही है। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये बर्फ से ढकी हिमालय के मनमोहक नजारे पेश करता है और शांत वातावरण में पक्षियों की चहचहाट हल्की हवा के साथ मन को शांति देती है। यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है, जो इसे ट्रैकिंग, मछली पकड़ने और बर्ड वॉचिंग के लिए, फोटोग्राफी जैसी एक्टिविटीज के लिए एक बेस्ट प्लेस बनाता है। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध और चीड़ और देवदार के घने जंगलों से घिरा एबट माउंट शहर शोरगुल से एकदम दूर है और ये जरूर देखने वाली जगह है। सचमुच अगर आप भी रोजाना की दौड़ भाग से, शहर भर की इस दौड़ धूप से तंग आ चुके हैं, तो फिर एक बार जरूर प्लान कीजिए एबट माउंट की यात्रा। कैसा मौसम है यहाँ का, कब जाना चाहिए, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: तो भाई, मैं आपको बताने वाली थी कि एबट माउंट में कौन सा मौसम है जब आपको घूमने के लिए जाना चाहिए। वैसे तो एबट माउंट का जो मौसम है वो साल भर सुहावना रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी आम बात है और जनवरी फरवरी के महीनों में आप पूरे हिल स्टेशन को बर्फ की चादर से ढके हुए देख सकते हैं। और एबट माउंट में सर्दियां कड़ाके की ठंड वाली होती है, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, कभी कभी इससे भी नीचे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं और हर चीज को ढक देने वाली बर्फबारी का आनंद लेते हैं। गर्मियों के मौसम की बात करूं तो यहाँ का मौसम सुहावना होता है और गर्मियों में औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन हवा की वजह से मौसम काफी सुहाना हो जाता है और भीषण गर्मी के मौसम में भी लोगों को जो यहाँ दिल्ली में गर्मी में तरस रहे होते हैं थोड़ी सी ठंड के लिए, वहां पर लोगों को ऊनी पतली परतों वाले कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है। मानसून की बात करें तो तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है और औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां भारी बारिश नहीं होती, फिर भी लैंडस्लाइड्स और सड़क कहीं ना कहीं बाधित होने का खतरा रहता है। इसलिए मानसून में यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान आपको जरूर ले लेना चाहिए। और भी बहुत कुछ है इस बारे में, इस जगह के बारे में जानने को। वैसे आपको ये बता दूं कि एबट माउंट में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। एबट माउंट जो एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, अपने पर्यटकों को बहुत कुछ देता है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता, औपनिवेशिक शैली की इमारतों और मनमोहक ट्रैकिंग रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। एबट माउंट के आसपास कुछ खूबसूरत जगह भी हैं जो प्रकृति प्रेमियों के लिए दर्शनीय स्थलों की सैर को और भी यादगार बना देती हैं। इनमें से एक जगह है पंचेश्वर। एबट माउंट से लगभग 47 किलोमीटर दूर पंचेश्वर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। पंचेश्वर में चोमू मंदिर और इसका वार्षिक मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ मछली पकड़ने के लिए भी इस जगह को जाना जाता है, जो सरयू और महाकाली नदियों के संगम पर स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है। मायावती आश्रम है यहाँ पर, एबट माउंट से 16 किलोमीटर दूर पुराने चाय बागानों में स्थित है और ये खास तौर से भगवान शिव के भक्तों के लिए है जो यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। निर्मल प्रकृति के बीच ध्यान करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

तो मैं आपको बता रही थी कि भाई आपको यहाँ एबट माउंट में और कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। तो बता दूं कि यहाँ पर एक वनसुर का किला है। लोहाघाट से होकर यात्रा करते समय एबट माउंट से लगभग 25 किलोमीटर दूर वनसुर का किला स्थित है और ये किला राक्षस वनसुर की राजधानी माना जाता है, जिसे भगवान कृष्ण ने पराजित किया था। इस किले का धार्मिक महत्व भी है और यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। लोहाघाट एक जगह है। लोहाघाट उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। एबट माउंट से 5 किलोमीटर दूर स्थित ये प्राचीन शहर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की वजह से पर्यटकों से भरा रहता है। ये शांत छोटा सा शहर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का शांत वातावरण, चीड़ और बलूत के पेड़ और हरी भरी हरियाली लोगों को इस रमणीय स्थान की ओर आकर्षित करती है। हाँ, एक और चीज है जो यहाँ आपको देखनी चाहिए एबट माउंट में। एबट माउंटेन के प्रमुख आकर्षणों में से एक यहाँ के मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को रोशन करती सूर्य की पहली किरणें देखना एक जादुई अनुभव है जो यहाँ आने वालों पर अमिट छाप छोड़ता है। जैसे ही शाम ढलती है, आकाश जीवंत रंगों के कैनवस में बदल जाता है। पहाड़ों की पृष्ठभूमि में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य आपके सामने होता है। तो आपको अगर मौका मिले तो जरूर सनसेट या सनराइज का मजा यहाँ पर लीजिएगा। साहसिक गतिविधियां भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एबट माउंटेन न केवल अपने बेदाग प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि ये रोमांच के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग शिखर तक ले जाने वाले रोमांचक रास्तों पर निकल सकते हैं जो उन्हें प्रकृति के बीच एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। ट्रैकिंग मार्ग कंपैरेटिवली आसान है, जिससे ये शुरुआती और अनुभवी

दोनों तरह के ट्रैकर्स के लिए सुलभ है। आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एबट माउंट हरे भरे परिदृश्य के बीच बसे सुंदर मंदिरों और तीर्थ स्थलों से सजा हुआ है। ये पवित्र स्थल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए एक शांत जगह देते हैं, जिससे यहाँ आने वाले शांत वातावरण में अपने अंतर्मन से जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर शांति के लिए भी अगर जाने का मन हो तो जरूर जा सकते हैं। प्रकृति की सैर कर सकते हैं आप। एबट माउंट प्रकृति के विविध रंगों से भरा हुआ है और आप यहाँ पर पूरी तरह से डूब सकते हैं। और ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि इस जगह के चारों ओर इत्मीनान से आप सैर कीजिए। इस छोटे से पहाड़ी इलाके में कुछ रास्ते हैं जो आपको शानदार नजारों वाले कुछ अनोखे स्थानों तक ले जाते हैं। अपने परिवार या फिर जीवन साथी के साथ सैर का आनंद आप यहां ले सकते हैं। मरोड़ा खान से होकर गुजरने वाला 9 किलोमीटर का मार्ग एक अनूठा ट्रैक है और ट्रैकिंग के लिए भी बेस्ट है। फोटोग्राफी के लिए भी आपको यहां पर बहुत कुछ मिलेगा। अपना कैमरा तैयार रखिए और अपने होटल के कमरे से निकलते ही बाहर कैमरे से आप यहां के नजारों को कैद करने के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहां आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्थानीय लोग, आकर्षक घर, इमारतें और चर्च देखने को मिलेगा, जो फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। बर्ड वॉचिंग आप यहां कर सकते हैं। हर तरह के पक्षी, जो कि हिमालय पर्वतमाला के देशी पक्षी और प्रवासी पक्षी, यहां पर आपको आसानी से मिलते हैं। और एबट माउंट में इनमें से एक है यहाँ की ये खास चीज, यानी कि अगर मैं बात करूं सुंदर पक्षियों से भरा हुआ यहाँ का नजारा, जो अक्सर नाशपाती और अखरोट के पेड़ों पर बैठे हुए आपको दिखाई दे जाते हैं, तो आपको इनका भी आनंद जरूर लेना चाहिए। मछली पकड़ने की बात जैसी मैंने की, तो मानसून के महीने में यहाँ पर महसीर मछली पकड़ने का आनंद भी आप ले सकते हैं, जो कि पंचेश्वर में सरयू और काली नदियों के संगम पर आपको आसानी से मिलता है। ठहरना कहाँ है ये भी बता दूं, उत्तराखंड में एबट माउंट में अभी भी कम प्रसिद्ध, क्योंकि ये हिल स्टेशन है तो ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। इस हिल स्टेशन पर कुछ ही कॉटेज हैं जो ठीक ठाक रहने की सुविधा देते हैं। पास के अल्मोड़ा में बड़ी संख्या में होटल रिजॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ कई ऑप्शंस हैं और अलग अलग बजट के मुताबिक यहाँ पर ये उपलब्ध हैं, तो आपको जैसा भी बजट हो उसके अनुसार यहाँ पर जरूर अपनी तैयारी करके जाना चाहिए। अब ये भी जान लें कि पहुंचना कैसे है। हाँ, तो भाई एबट माउंट जो है वो सड़क मार्ग से बाकी शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। फिर भी अगर आप हवाई जहाज से या ट्रेन से यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो ये एक ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं होगा। हालांकि सबसे अच्छा विकल्प दिल्ली या हल्द्वानी से टैक्सी किराए पर लेना या बस से सवार होकर जाना है। हवाई जहाज से अगर आप जाएं तो एबट माउंट से करीबी हवाई अड्डा पंतनगर में है, जो लगभग 138 किलोमीटर दूर है, और ये हवाई अड्डा दिल्ली से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और यहाँ हर दिन नियमित उड़ानें संचालित होती हैं। पंतनगर से एबट माउंट पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर आपको लेनी होगी। रेल से अगर आप जाना चाहें तो रेल परिवहन की बात भी बता दूं आपको, दो स्टेशन हैं जहां पर आप उतरकर टैक्सी लेकर एबट माउंट पहुंच सकते हैं, और इनमें से एक काठगोदाम स्टेशन है जो करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा तनकपुर स्टेशन है जो एबट माउंट से 185 किलोमीटर के लगभग की दूरी पर है। सड़क से अगर आप जाना चाहें तो उत्तराखंड के सभी प्रमुख स्थलों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्थान काफी दूर है। आप आरामदायक यात्रा के लिए उत्तराखंड रोडवेज की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काठगोदाम हल्द्वानी से एबट माउंट तक पहुंचने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि सांस्कृतिक विरासत का एक खूबसूरत संगम भी आपको यहां पर मिलेगा प्रकृति के साथ, चाहे आप रोमांच की तलाश में हो, आध्यात्म की तलाश में हो, या बस प्रकृति में डूब जाना चाहते हो, एबट माउंट पहुंच जाइए। और भी बहुत कुछ है वैसे तो जानने को, अगर वक्त बचा तो बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वक्त बचेगा। पर हाँ, एक छोटी सी चीज आपको बताती चलूं कि यहां पर अगर आप जाते हैं तो कुमाऊनी संस्कृति, परंपराओं और ब्रिटिश काल इतिहास का एक शांत सुंदर संगम आपको यहां मिलेगा। संस्कृति जो है वो यहां की प्रकृति, लोक पर्वों और पहाड़ी जीवन शैली से गहराई से जुड़ी है, और यहां का कुमाऊनी पहनावा, जो कि महिलाएं पिछोड़ा यानी दुपट्टा और घाघरा चोली और पुरुष कुर्ता पैजामा सदरी पहनना पसंद करते हैं। खान पान की बात करूं तो यहां पर पहाड़ी व्यंजन पौष्टिक होते हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दाल की भरी हुई रोटियां, बालूशाही या गहत रोटी, भट्ट की चुरकानी और मंडवे की रोटी आपको यहां पर मिलेगी, तो इसका स्वाद जरूर चखिएगा। आपको कुमाऊनी जो परंपरा है, जो यहां के लोग हैं, जो स्वाद है, उसको चखने का मौका मिलेगा। भाषा की बात करूं तो कुमाऊनी भाषा और हिंदी बोली जाती है यहां पर, और स्थानीय लहजे की मिठास आपको उसमें देखने को मिलेगी। मेले और त्योहार, लोक पर्व यहां पर बहुत उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इगास, हरेला, फुलदेई और नंदा देवी राजा जैसे त्योहार पूरे उल्लास से यहां लोग

मनाते हैं। मेलों का आयोजन होता है, छोलिया नृत्य और झोड़ा झांझरी नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं, जो आपसी भाईचारे और उत्सव धर्मिता के प्रतीक हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खरीदना क्या है वो भी जल्दी से बता दूं। मसाले, राजमा और गहत जैसी स्थानीय दालें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हाथ से बुने ऊनी वस्त्र जो कुमाऊं क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं, गर्म स्वेटर, शॉल और स्कार्फ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। पारंपरिक मिठाइयां खरीद सकते हैं। लोहाघाट बाजार की स्थानीय मिठाई भंडार से आप यहां की पारंपरिक मिठाइयां खरीद सकते हैं। और जैविक उत्पाद और हर्बल उत्पाद भी आपको यहां मिल जाएंगे, जैसे पहाड़ी शहद, बुरांश का जूस और स्थानीय जड़ी बूटियां। तो बहुत कुछ है यहां पर करने के लिए, जब भी मौका मिले पहुंच जाइए एबट माउंट, क्योंकि ये जगह आपको बुला रही है अगली छुट्टियों में। वेल, फिलहाल एक और खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाती हूं और उसके बाद आपसे लूंगी विदा, क्योंकि अब वक्त तस्वीर में बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन फिलहाल ये गीत आप तक।

और इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात होगी। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और आगे भी कार्यक्रम है, तो जुड़े रहिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी तो कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। मौसम सिर्फ बाहर का नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है, इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं, यानी कि आप सबका घर आंगन के प्यारे से इस शो में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, तब सबसे पहले ये खूबसूरत सा गीत आपकी नजर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत, फिल्म थी आशा। और आज आप सभी जानते हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और आज के दिन खास तौर पर ये विशेष कार्यक्रम के साथ साथ आज का दिन जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज बहुत सारे दिन हैं खास, लेकिन सबसे पहले खास बात हम करेंगे कि आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। जब हम बात करते हैं उन अनमोल लोगों की जिनके अनुभव हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तो हमारे हैं वो वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उन केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों और सीख की एक भरी खूबसूरत यात्रा है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने परिवार को संभालने और बच्चों को संस्कार देने और समाज को बेहतर बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज जरूरत है कि हम उन्हें केवल सम्मान ही ना दें, बल्कि उनका साथ भी निभाएं, उनके साथ कुछ समय बैठकर बातें करें, पुरानी यादें सुने, उनकी पसंद नापसंद जानें और सबसे जरूरी बात उन्हें महसूस कराएं कि वे आज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कई बार बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों या सुविधाओं की नहीं, बल्कि अपनों के समय प्यार की होती है। आपका कुछ मिनट उनके साथ बैठना उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आइए एक छोटा संकल्प लें। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहां अनुभव की रोशनी और संस्कारों की खुशबू हमेशा बनी रहती है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, उनका हाथ थामें और कहें आप हमारे परिवार की ताकत हैं और आज भी और हमेशा रहेंगे।

और दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि आज बहुत सारे दिवस हैं, तो पहले बात करते हैं आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जो हमें आतंकवाद के उन पीड़ितों की याद दिलाता है जिन्होंने हिंसा और आतंक के कारण अपने जीवन, अपने प्रियजनों को और अपने सपनों को खो दिया। इस दिन हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज के इसके शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जूझ रहे हैं। हमें अपने समाज में शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करना बेहद जरूरी है। और साथ ही आज विश्व कवि दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें कविता की उस खूबसूरत दुनिया से जोड़ता है जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं, सपने और संवेदनाएं बन जाती हैं। कविता कभी खुशी की आवाज बनती है तो कभी दर्द को शब्द देती है, कभी प्रेम का इजहार करती है तो कभी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, और कभी समाज को एक नई सोच देती है। कविता की सबसे खास बात यही होती है कि ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, और वही दो पंक्तियां हमारे दिल की पूरी कहानी भी बयां कर देती है। लीजिए सुनिए हेमलता की आवाज में खूबसूरत सा गीत फिल्म है अखियों के झरोखों से।

और अब बात करते हैं कुछ विश्व उद्यमिता दिवस की। उद्यमिता सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि एक विचार को हकीकत में बदलने, जोखिम उठाने और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करने का साहस है। घर से शुरू किया गया छोटा सा काम भी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ एक बड़े उद्यम का रूप ले सकता है। हम अपने भीतर के उस विचार और हुनर को पहचानें जिसे हम अब तक टालते आए हैं। छोटा कदम उठाइए, सीखते रहिए और अपने सपनों को अवसर में बदलिए। और आज बात करते हैं लेखिका स्मृति चुगताई की जयंती की। आज हम हिंदी उर्दू साहित्य की ऐसी बेबाक और सशक्त लेखिका स्मृति चुगताई को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से समाज की उन सच्चाइयों को सामने रखा जिन पर अक्सर बात करने से लोग कतराते थे। उन्होंने आम जिंदगी और खासकर महिलाओं के अनुभवों को साहित्य के केंद्र में लाकर एक नई पहचान दी। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज को आईना दिखाने के बदलाव की शुरुआत करने का माध्यम भी हो सकता था।

एक कदम बुजुर्गों की ओर। जी हाँ, बुजुर्गों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं वो हमारे बुजुर्ग होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। जो ढाल बन के खड़े होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब रिश्ते नाते होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब खुश होते हैं वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे जीवन में उन अनमोल लोगों की जिनकी अनुभव और आशीर्वाद

की हमें बहुत ज़रूरत है वो हमारे लिए हमारे बुजुर्ग ही तो हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपने बुजुर्गों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जिन्हें कभी हमारी छोटी सी मुस्कान और खुशी देती थी, क्या आज हमारी कुछ मिनटों की बातचीत उन्हें खुशी नहीं दे सकती? क्योंकि बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि सम्मान, अपनापन और साथ की भी ज़रूरत होती है। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके पुराने किस्से पूछिए और उनके अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ इंसान की ज़रूरतें कम नहीं होती बल्कि प्यार और अपनापन पाने की चाह और भी बढ़ जाती है। तो आइए आज हम संकल्प लेके अपने बुजुर्गों को परिवार का बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका हाथ थामेंगे, उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाएंगे।

और अब बात करते हैं परिवार विघटन और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में रिश्ते तो हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद और बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने आपकी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वही उम्र के उस पड़ाव पर अक्सर अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है और

को जोड़कर रखने की क्षमता भी है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन में भागदौड़, हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी जरूरतों को समझें, ये बहुत ही जरूरी है। तो टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत अपने घर से करें और अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं।

और अब बात करते हैं मौसम बदलने में बुजुर्गों के खान पान का भी रखें ध्यान। जी हाँ, बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब मौसम बदलता है, क्योंकि मौसम बदलते ही हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। और खासकर घर में बुजुर्गों के बदलते मौसम के साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखना हमारे लिए बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे जरूरी है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें। प्यास कम लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। मौसम के अनुसार सूप, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी भी लिया जा सकता है। और खाने में ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन बेहतर रहता है। दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दलिया और खिचड़ी जैसे

पौष्टिक विकल्प भोजन में शामिल करें। बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार और अत्यधिक मीठा भोजन कम करें। अगर बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी की दवा उनकी चल रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान में बदलाव करें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन लेने से भी बचें। और हाँ, भोजन का समय नियमित रखें। लंबे समय तक खाली पेट रहने की बजाय थोड़ी मात्रा में लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन करना बेहतर है। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को ज्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की जरूरत होती है। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों की थाली में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी रखें ख्याल। तो स्वस्थ बुजुर्ग और खुशहाल परिवार।

दोस्तों, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो हमें सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। और इसी खूबसूरत वादे के साथ कि आप बुजुर्गों का रखेंगे खूब सारा ध्यान और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलूंगी घर आंगन के अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष के वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.21 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है। और कलाकार बेमिसाल में आज हमने आमंत्रित किया है एक गुरुजी को। कौन है वो गुरुजी, सुनिए।
1: आदाब गुरुजी,
2: नमस्कार।
1: चाय नोश फरमाएंगे?
2: अवश्य, चाय पान तो करेंगे ही।
1: अले उल सुबह एक कप चाय तबीयत और मिजाज दोनों को बहाल और तंदुरुस्त रखती है।
2: हाँ, प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नित्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है।
1: जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्त की मश के लिए बहुत उम्दा चीज है।
2: ये रक्त मश क्या होता है?
1: रक्त माने नाच, मश्क माने रियाज।
2: अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो?
1: आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब।
2: हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है।
1: उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहने, जैसे कि हम और आप।
2: क्या बहने हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, हम दोनों तो भाई हैं। जैसे कि दो भाई मिलजुल के रह सकते हैं, तो क्या बहने नहीं रह सकती? मिलजुल कर रहने में ही तो वतन की तरक्की अर्थात देश की उन्नति, यही कहते हैं ना हिंदी में।
0: जी हाँ, तो कुछ याद आया आपको? तो ये गुरुजी थे अभिनेता पेंटल साहब और ये किरदार निभाया था उन्होंने फिल्म बावर्ची में। जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में हम बात करेंगे पेंटल साहब के लिए। और पेंटल साहब को इस भूमिका के लिए 1971 का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म थी बावर्ची और आगाज इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसी गीत से कर रहे हैं। और इस गीत का जो छायांकन हुआ था वो पेंटल साहब पे हुआ। साथ आपको ये भी बताएं कि इस गीत को गाया था चौबे महाराज और लक्ष्मी शंकर ने। मदन मोहन का संगीत, कैफी आजमी साहब के बोल।

जी हाँ, कलाकार बेमिसाल में पेंटल साहब की बात और जो संवाद आपने सुने थे वो फिल्म बावर्ची से थे और जो हुए थे पेंटल साहब और राजेश खन्ना के बीच। अभिनेता पेंटल, जिनका वास्तविक नाम कंवरजीत सिंह पेंटल है और इनका जन्म 22 अगस्त 1948 को पंजाब के तरन तारण में एक सिंह परिवार में हुआ। बाद में ये परिवार दिल्ली के सदर बाजार में आके रहने लगा। अभिनेता कंवरजीत सिंह पेंटल फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित हैं और 1969 में तब के बॉम्बे आ गए थे और अपने फिल्मी जीवन काल में लोगों को हैरानी होगी कि इन्होंने लगभग 103 फिल्मों में काम किया है। आइए सुनते हैं 1980 में आई फिल्म ओ बेवफा का एक गीत। सावन कुमार के लिखे गीत को संगीत से सजाया वेदपाल वर्मा ने, किशोर कुमार के गाए इस गीत का छायांकन हुआ पेंटल साहब पर और साथ में योगिता बाली भी हैं।

0: कर्मा वाली जरा बचके बचके ओ मारे मारे
1: जी हाँ, फिल्म ओ बेवफा का गीत आपने सुना है, जिसका छायांकन पेंटल साहब पे हुआ था और कलाकार बेमिसाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंटल साहब की, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, ये कहना गलत ना होगा कि पेंटल साहब के फिल्मी जीवन का सुनहरा दौर था 1972, जिसमें आपने बावर्ची जिसमें गुरुजी का रोल निभाया, जवानी दीवानी जिसमें आपने रतन का रोल निभाया, पिया का घर फिल्म में अरुण का रोल और परिचय में ज्योतिषी पंडित जी का किरदार निभाया। 1971 में एक फिल्म आई थी यार मेरा, जिसमें एक बड़ा ही सफल गीत था डर लगे तो गाना गा। इसके छायांकन में जितेंद्र मनमोहन के साथ पेंटल साहब भी थे। नीरज साहब के लिखे गीत को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने और गा रहे हैं सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी।

जो भी यहाँ चीज है तेरा ही माल है, जो भी यहाँ चीज है तेरा ही माल है, तेरा हाथ थामने किसकी मजाल है, पकड़ भी जाए यार कभी तू बस में, रेल में थन में जेल में भीड़ में मेल में सोने में अकेले में।

क्यों नहीं तो नहीं चीख नहीं चिल्ला नहीं चुप नहीं भाग नहीं सो नहीं जाग नहीं सिर्फ गाना गा।

लगे तो आते हुए जाते हुए पीते हुए खाते हुए उड़ते हुए गिरते हुए जीते हुए मरते हुए सिर्फ गाना गा।

जी हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि डर लगे तो गाना गा। फिलहाल आपको बता दें, आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

1:28 और ठीक 50 सेकेंड। कंवरजीत सिंह पेंटल साहब की बात हो रही है कलाकार बेमिसाल में, और देविका है आपके साथ कलाकार बेमिसाल लेकर। जब भी कंवरजीत सिंह यानी पेंटल साहब की फिल्मों की बात होगी तो कौन भूल सकता है उन द्वारा निभाया गया सलमा का रोल 1975 की फिल्म रफू चक्कर में, जिसमें उनके समकक्ष थे ऋषि कपूर, और दोनों ने ही इस गीत में जो आप आपको सुनवाने जा रहे हैं हम, और महिला के किरदार निभाए थे। और ये गीत जब आप सुनेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कितने प्यारे लग रहे थे दोनों।

जी हाँ, महेश, उषा मंगेशकर और आशा जी की आवाज थी और ये फिल्म थी रफू चक्कर। यूं तो अपनी फिल्मों में पेंचल साहब ने अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन आज इस कलाकार बेमिसाल में हमने केवल वही किरदार लिए जिसमें पर्दा स्क्रीन पर वो दिखे हैं या गाने गाए हैं। इस कड़ी में हमने पेंचल साहब की अगली फिल्म ली है 1988 की पाप की दुनिया, जिसमें सनी देओल नीलम जी के छायांकित इस गीत में पेंचल साहब पियानो अकॉर्डियन बजा रहे हैं।

जी हाँ, फिल्म पाप की दुनिया का गीत आपने सुना। अंजान साहब के बोल, बपी लहरी का संगीत और आवाज थी शैलेंद्र सिंह, शबीर कुमार और आशा भोसले की। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, पेंटल साहब की एक और बेहतरीन फिल्म थी मेरे अपने, कौन भूल सकता है इस गीत को, जिसमें सबका हाल चाल ठीक ठाक ही है।

पिंटल साहब की हो रही है तविका है आपके साथ। पिंटल साहब को अपने जीवन काल में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड इन कॉमिक रोल दो बार मिल चुका है। पहली फिल्म थी बावर्ची और दूसरी फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि आपके भाई भी उच्च कोटि के एक्टर रहे हैं, गोफी पिंटल। आप लोगों को धारावाहिक महाभारत याद होगा। धारावाहिक महाभारत में उन द्वारा निभाया गया शकुनी का किरदार आज भी लोगों को याद है। धारावाहिक महाभारत में हमारे पिंटल साहब शिखंडी के अवतार में नजर आए थे। आकाशवाणी एफ एम में गोल्ड ने आज पिंटल साहब को याद किया और कल उनका जन्मदिन है, तो आकाशवाणी एफएम गोल्ड उन्हें आने वाले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता है। और कलाकार बेमिसाल का अंतिम गीत हम लेकर आए हैं फिल्म सत्य बेसत्ता से।

रहते से कायम रखेगा। कलाकार बेमिसाल में आज बस इतना ही। आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह, किशोर कुमार, आशा भोसले, सपन चक्रवर्ती और आदि बर्मन ने इस गीत को गाया। संगीतकार आदि बर्मन थे और जी हाँ, गीतकार गुलशन बाबरा। रेविका आपसे विदा लेती है, लेकिन आपको बताती जाती हूँ थोड़ी सी देर में उर्दू की

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। पुणे में ब्रिक्स आईसीटी मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में ताबुन की खातिर मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दिया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इक्तसादी शराकतदारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमरीका की दाखिली इक्तसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नेदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। टेली मुवासलात के महकमे ने बताया है कि भारत और ब्राजील ने टेली मुवासलात और इतलाआती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ICT से मुतालिक तावुन को मजीद बढ़ाने की खातिर आज पुणे में ब्रिक्स मुमालिक की इतलाआती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ICT ट्रैक मीटिंग से अलहदा एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेली मुवासलात के महकमे ने कहा कि इस मुआहिदे से डिजिटल इख्तिरा को फरोग मिलेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तावुन को फरोग मिलेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पुणे में मुनाकिदा ब्रिक्स मुमालिक के मुवासलात के वुजरा की मीटिंग से अलहदा मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के मुवासलात के वजीर फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो ने इस मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहिमत नामे से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अमाबीम बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, सलाहियत साजी और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले से मुतालिक दो तरफा तआवुन में मजीद इजाफा होगा। इस शराकतदारी का मकसद दोनों मुल्कों में शमूलियाती महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम को फरोग देना है। कौमुदी पारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारत की ब्रिक्स 2026 की सदारत के तहत जयपुर में आज दोपहर ब्रिक्स सियाहती वुजरा की मीटिंग शुरू होगी। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के सियाहती वुजरा और सीनियर अफसरान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में तआवुन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग में पायदार और जिम्मेदार सियाहत, महारत पैदा करने और सफर को आसान बनाने, नीज सियाहत में मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस वजारती मीटिंग से तवक्को है कि ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तआवुन को तकवीत मिलेगी और सयाहों की आमदोरफ्त में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले को आज तब्दील किया है। इसके तहत इब्तदाई सतह के कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने के लिए कानून के तलबा को 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस करना जरूरी था, जिसको अब 1 साल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AG मसीह और के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने 1-2 से यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार जो 25 मई 2025 और 31 मार्च 2027 के दरमियान नोटिफाई किए गए हैं, इम्तिहान देने के मजाज होंगे। ताहम इन इम्तिहानात के जरिए मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को पहले ट्रेनी जुडिशल अफसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा और उन्हें जुडिशल अकेडमी में 1 साल की तरबियत हासिल करना होगी, जिसके बाद मजीद 1 साल के लिए उन्हें क्लर्क के तौर पर काम करना होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पूरे एशिया और सिंगापुर के साथ इक्तसादी साझेदारी को सनत से सनत के दरमियान मजबूत तालमेल पैदा करते हुए भारत के अज्म को उजागर किया है। भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर्स और भारतीय ताजिरों और तजारती स्कूल इनसीड के

फारिगीन से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने भारत के तरक्की के सफर, सरमायाकारी मवाक़े और तिजारत के लिए पैदा की गई आसानियों को बढ़ाने की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। जनाब गोयल ने सिंगापुर के खारिजी उमूर और तिजारत और सनत के वजीर मुमलिकत गान सीओ हुआंग और दीगर मुअज्जस शख्सियात से मुलाकात भी की। बरामद को फरोग देने की खातिर APEDA कम कीमत रोड शो के मौके पर यह मुलाकात मुनक्किद की गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नई और काबिले तश्दीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजारत के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने पीएम कुसुम के अगले मरहले के रोड मैप के बारे में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने बताया कि कल इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मजकूरा स्कीम के अगले मरहले में जरई शमसी तवानाई को मजीद फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पीएम कुसुम के जरिए अब तक 27 लाख से ज्यादा पंपों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 15.8 गीगावाट काबिले तश्दीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा भी हुआ है, जिससे हर साल तकरीबन 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत करने में मदद मिल रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि उन्होंने मुल्क में पॉली सिलिकॉन की तैयारी और शमसी साजो सामान के अंदरूनी मुल्क तैयारी का मजबूत और पूरी तरह मरबूत इकोसिस्टम तैयार करने के इकदामात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने छोटे और हाशिए पर रह रहे किसानों समेत सभी किसानों तक कम से कम इमदादी कीमत MSP के फायदे पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इकदामात किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा बड़ा कदम है। ये स्कीम लोगों के दरमियान कीमतें मुस्तहकम करते हुए किसानों को दी जाने वाली कीमतों को यकीनी बनाने के लिए सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। किसानों की बहबूद और ज़राअत के मरकजी वजीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत पिछले कुछ बरसों में बजट में मुख्तस की जाने वाली रकम में इजाफा किया गया है। 2024-25 में इस स्कीम के तहत हकीकी खर्च तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए था, जिसमें इजाफा करते हुए 2026-27 में इसे 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर होते हुए एक तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। इस नई रेल खिदमत से मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी और जम्मू और कश्मीर के दो शहरों के दरमियान रेलगाड़ी की खिदमत में इजाफा होगा। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का एक खत शेयर किया है। इस खत में जनाब वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर होते हुए जम्मू तवी और श्रीनगर के दरमियान एक तीसरी वंदे भारत के लिए मंजूरी दे दी गई है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची ने ईरान के खिलाफ इकतसादी धमकियों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस तरह की नाकाम पॉलिसियों से ईरान के लोगों में मजीद नफरत पैदा होगी और ये पॉलिसियां मजीद नाकाम होंगी। इराकची का बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त इकतसादी इकदाम की धमकी के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास इराकची ने कहा कि इन धमकियों का मकसद अमरीका के अवाम की मुल्क के अंदरूनी माली मसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि अमरीका की इक्तसादी दहशतगर्दी से आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की अपनी खुदमुख्तारी को खतरा लाहिक है। इससे कबल अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कल कहा कि ईरान दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इक्तसादी तौर पर अलग थलग किए जाने का सामना करेगा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने उन ममालिक और कंपनियों को इजाफी बंदिशों की धमकी दी थी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका के इत्तेहादी अपने मौकिफ के ताल्लुक से फैसला करें। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद आज सुबह फिर से रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नेदरलैंड्स का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
पुणे में ब्रिक्स आईसीटी मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके

0: Astra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में तृष्णा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री

0: और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
3: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जीएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार

0: शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटा

बढ़ाकर एक वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर 2:30 लीजिए 2:31 हुए हैं। संगीत.com लेकर देविका हाजिर है, जहां बातें होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं। श्रोता, 1979 में एक फिल्म आई थी दो शिकारी। फिल्म दो शिकारी में संगीत दिया था चित्रगुप्त साहब ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे अश्क जालंधरी, राही मासूम रजा और जानेसार अख्तर साहब ने। और सबसे खास बात है कि जानेसार अख्तर जी का लिखा एक गीत फिल्म के नायक बिस्वजीत जी ने स्वयं गाया था और हिंदी फिल्मों में गाया गया बिस्वजीत का ये पहला और अंतिम गीत है। लीजिए सुनिए।

जी हाँ, बिस्वजीत साहब की आवाज में गीत आपने सुना। फिल्म थी दो शिकारी और इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त साहब ने। संगीत.com सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अब बात करते हैं कव्वालियों की। कव्वाली सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जज्बात, इश्क और रूहानी एहसास का नाम है, है ना। और जब यही अंदाज हिंदी फिल्मों में आया तो पर्दे पर एक अलग ही जादू छा गया। फिल्मी कव्वालियों ने कभी मोहब्बत की कहानी कही, कभी महफिल में मुकाबला कराया, तो कभी दिल की बात सीधे अल्फाज में बयां कर दी। आज भी जब ढोलक की थाप, हारमोनियम की धुन और सामूहिक आवाज गूंजती है तो पुरानी फिल्मों की महफिल याद आ जाती है। इसी क्रम में सुनवा रहे हैं आपको एक कव्वाली, फिल्म बहुरानी से। चितलकर रामचंद्र जी के संगीत से सजी ये कव्वाली लिखी साहिल लुधियानवी ने और गा रही हैं से आशा भोसले एवं साथी।

फिल्म में बहुरानी की कवाली आपने सुनी आशा भोसले और साथी की आवाज़ और संगीतकार सी रामचंद्र। संगीत.com सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, फिल्म संगम का एक सदाबहार गीत शंकर जयकिशन के मध्य व्याप्त कार्यशैली के अनुसार शंकर जी ने संगीतबद्ध किया था और ये गीत उस वक्त प्रसिद्धि की सूची में सबसे ऊपर था। और इस फिल्म का जयकिशन जी द्वारा रचित एक और गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर सूची में बहुत नीचे चल रहा था। इस पर किसी ने मजा लेने वाले ने जयकिशन साहब से कहा कि आपका बनाया गीत तो बहुत नीचे चल रहा है। इस पर जयकिशन साहब ने कहा कुछ दिन रुक जाओ फिर बात करना। और श्रोताओं, यही हुआ। कुछ दिनों बाद ये गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर सफलता की सूची में अव्वल नंबर पर था। आइए सुनते हैं।

0: हजरत जयपुरी साहब के बोल, फिल्म थी संगम और आवाज मोहम्मद रफी की।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, संगीत.com सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और बात जितेंद्र साहब की करने जा रही हूँ मैं। अभिनेता जितेंद्र ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मैं तोता बड़ा अच्छा था, मुझे जो रटाया जाता था मैं रट लेता था। और फिल्म आशा का एक गीत में उनका नृत्य देखकर ये मानना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि इतने सारे गीत में जो ऑफ बीट लय होती है उससे हट कर नृत्य करना आसान नहीं होता। जो जानने वाले हैं नृत्य के और लय के, वो ये जानते हैं कि लय पारंगत कोई व्यक्ति भी ये नृत्य कर सकता है जिसको लय की समझ हो। लीजिए सुनिए रफी साहब का गाया वो सदाबहार गीत, जिसपे जितेंद्र साहब ने नृत्य किया है।

रफ़ी साहब की आवाज़ की तो क्या बात है। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। ऐसी आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। और सच कहें कि जब रफ़ी साहब किसी गायिका के साथ डुएट गाते थे तो लगता था जैसे दो आवाज़ें नहीं, दो दिल आपस में बात कर रहे हों। कभी प्यार की शरारत, कभी रूठना मनाना, कभी जुदाई का दर्द, कभी एहसास में रफ़ी साहब की आवाज़ एक अलग रंग भर देती थी। और उनके डुएट में सबसे खूबसूरत बात थी कि एक आवाज़ ख़त्म होती तो दूसरी उसी एहसास को आगे बढ़ा देती। और शायद यही वजह है कि रफ़ी साहब के डुएट आज भी सिर्फ गाने नहीं लगते, एक खूबसूरत बातचीत लगते हैं। और इसका प्रमाण है फिल्म तलाश का ये गीत और संगीत.com का अंतिम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। इस अवसर पर लगभग 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसबी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए बहुमत से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मित्र देशों को अब फैसला लेना होगा कि वो अब किसके साथ खड़े हैं। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 102.1 MHz पर। कार्यक्रम मनभावन लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा।

जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जहाँ हम आपके मन के तार और आपके मन के करीब जो गीत होते हैं उनकी फरमाइश हम आपसे मंगवाते हैं, आप हमें वो फरमाइश भेजते हैं और साथ ही आपके मन के करीब जो लाइनें हैं, कुछ विचार हैं, आपके जो ख्यालात हैं वो भी हमारे साथ आप साझा करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसे आज के प्रोग्राम में शामिल करें। तो भाई देर किस बात की, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश अपने गीत, नाम और पते के साथ। आपको पता है ये मेल हमें करना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और दोस्तों, अगर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9868868753। जब तक आपका संदेश हम तक पहुंचे तब तक आप सुनिए हमारी पसंद का ये खूबसूरत गाना।

कश्मीर की कली फिल्म से ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत ओपी नायर का और गीत एस एच बिहारी के। दोस्तों आइए अब रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश, पहला मेल हम तक किसका आया है, किसने ये खूबसूरत मेल लिखा है। तो पहला मेल हमें आया है शेख मूसा मोहसिन का, सनावत से ये लिख रहे हैं और इन्होंने लिखा है, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हैं? जी हाँ, हम खैरियत से हैं और आप भी खैरियत से होंगे ऐसी हम कामना करते हैं। आपने एक खूबसूरत गीत की फरमाइश की है तो बिल्कुल हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाएंगे। इसी के साथ अगला मेल हमें कुम्हार गली कोलगांव से आया है और इसे लिख रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुम्हार। तो शुक्रिया इस खूबसूरत मेल के लिए। इसी के साथ अगला मेल हमें जिला मुरादाबाद दूल्हापुर गांव उत्तर प्रदेश से आया है और इसे लिख रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। और इसी के साथ अगला मेल हमें संदीप मक्कड़ जी का आया है और इनके साथ ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ शामिल है इस मेल में और ये भी एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं, ये जालंधर से हमें मेल कर रहे हैं। इसी के साथ अगला मेल हमें एन श्रीनिवासन का आया है, इनके साथ हैं सरीजा, अभिलाष, अंकिता, अभिषेक, ये हमें केरलम से मैसेज कर रहे हैं। तो आपका भी शुक्रिया इस खूबसूरत मैसेज के लिए। इसी के साथ अगला मेल हमें वडिंग खेड़ा पंजाब से आया है और इसे लिखने वाले हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। इसी के साथ एक और मेल हमें नागलोई से आया है, ये लिख रहे हैं राहुल, रितिका और जगदीश कुमार। इसी के साथ एक और मेल हमें भोपालगढ़ राजस्थान से आया है और इसे लिखने वाले हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। तो दोस्तों आपके मेल हमने शामिल किए हैं, अगर आपने अब तक हमें मेल नहीं किया है भाई तो देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और हमें मेल कर दीजिए या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। तब तक इन श्रोताओं की फरमाइश पर हम आप तक पहुंचाते हैं ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म ये वादा रहा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलशन बाबरा के।

आइए दोस्तों एक बार फिर नजर डालते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किन श्रोताओं के संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। तो भाई अगला मेल हमें आया है मोहाली पंजाब से और इसे लिख रहे हैं बाबला मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी के साथ अगला मेल हमें शेरवानी स्कूल गंज डुंगवारा उत्तर प्रदेश से आया है और इसे लिख रहे हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी। इसी के साथ अगला खूबसूरत मेल हमें प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का। ये मेल हमें लिख रहे हैं चंडीगढ़ से। इनके साथ हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये लिख रहे हैं होस्ट राम प्रकाश वर्मा जी को गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप किसी भी गीत में हमें शामिल करिए। तो लीजिए जनाब, हमने आपको इस गीत में शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और इसे लिख रहे हैं पीएस नहावांकर, निर्मला नहावांकर, विशाल नहावांकर, नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुहेंकर ये मैसेज हमें कर रहे हैं। इसी के साथ खैल बाजार पानीपत से हमें मेल आया है और इसे लिख रहे हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इस मेल में शामिल है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का। इसी के साथ हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना का मेल आया है और इसी के साथ हमें ऊपर कोटा मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ दोस्तों शक्तिनगर दिल्ली से हमें तनसा सेवा ग्रुप की ओर से एक खूबसूरत मेल आया है और इस ग्रुप में शामिल हैं नीरज जी, रामचंद्र जी, रविशंकर जी, हरीश जी, योगेंद्र जी, विकास जी, संजीव कुमार, विजय जी, जगदीश जी, अंकित, खुशहाल, संजय कुमार, दीपेश और अन्य साथीगण। ये अपने किसी एक खास दोस्त को आज के दिन पर जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं और एक प्यारा सा गीत भी सुनना चाहते हैं। तो आइए ये खूबसूरत गीत सिर्फ आपके लिए।

0: दोस्ताना फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद दोस्तों आज के कार्यक्रम मनभावन में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, लेकिन तब तक अगर आपने हमें मेल नहीं किया है तो भाई आप हमें मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: NCRAPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम मनभावन सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ।

दोस्तों आइए नजर डालते हैं एक बार फिर मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसका संदेश हम तक पहुंच चुका है। तो इस बार पहला संदेश हमें फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से आया है और इसे लिख रहे हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद साहिद। जी हाँ, ये खूबसूरत मेल हमें लिख रहे हैं और इसी के साथ गांव फरांसी हिसार से हमें मैसेज आया है और इसे लिख रहे हैं राजकुमार दाऊदी, पुष्पेंद्र कुमार दाऊदी, प्रमोद कुमार दाऊदी। और अगला मेल हमें आया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, इसे लिख रहे हैं फातिमा बली बेलदार, सोनम बली बेलदार, आसमा बली बेलदार और डब्लू बली बेलदार। ये एक खूबसूरत बात लिख रहे हैं कि पानी आप बचाओ, पानी आपको बचाएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही है कि पानी के बिना जीवन नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जल जीवन है। इसी के साथ एक और खूबसूरत मेल हमें फारुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से आया है और इसे लिख रहे हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, सरिता चौरसिया। इसी के साथ अगला मेल हमें फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से असलम मंसूरी जी का भी आया है और अगला मेल हमें आ चुका है, ये लिख रहे हैं

लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, और इन्होंने हमें मेल लिखा है रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। ये लिख रहे हैं, कार्यक्रम मनभावन पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपकी आवाज़ और आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है जी, शुक्रिया आपका इस सुंदर कॉम्प्लीमेंट के लिए। और इसी के साथ एक और खूबसूरत मेल हमें महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर जी का आया है। और ये लिख रहे हैं, प्रिय प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार, और एक खूबसूरत गीत ये सुनना चाहते हैं जी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गीत आप तक पहुंचाने की। इसी के साथ आफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं, और इसी के साथ एक खूबसूरत मेल हमें डेरावाल नगर दिल्ली से आया है, और इसे लिख रही हैं मधु नागपाल निधि जी, और उन्हीं के साथ इस मेल में शामिल हैं प्रियंका जी। ये खूबसूरत मेल इन्होंने हमें भेजा है, तो आइए इनकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

जी हाँ, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म किनारा से, आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की, संगीत आडी बर्मन का और बोल गुलजार साहब के।

आइए एक बार फिर नजर डालते हैं मेल बॉक्स की तरफ। तो पहला मेल हमें प्राप्त हुआ है जीतू दीपक शिवाय महादेव का, और ये हमें लिख रहे हैं मंडोली एक्सटेंशन दिल्ली से, और इन्होंने लिखा है हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी शुक्रिया आपका इस सुंदर मेल के लिए। इसी के साथ हमें छत्तीसगढ़ पलारी से मैसेज आया है और इसे लिख रहे हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। इसी के साथ एक मेल हमें अनु बड़जातिया जी का आया है और ये लिख रहे हैं राम प्रकाश जी हमारा मेल कहीं खो गया है, सर्च करिए और पढ़िए। देखिए हमने सर्च भी कर लिया और पढ़ भी दिया आपका मैसेज। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है, ये लिख रहे हैं सलाम जी दिल साफ रखना अच्छा है बस हर किसी के लिए नहीं है। बड़ी गहरी बात कही है आपने, कब कहाँ क्या करना है इसकी समझ भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। ये खूबसूरत लाइनें और ये मेल हमें लिखा है मगर पारा विलासपुर से, और इसे लिख रहे हैं वसीम आसमा दलाल, अकरम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा दलाल, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से। ये दो दो एड्रेस इन्होंने लिखे हैं, माफ कीजिएगा आप कहाँ रहते हैं मालूम नहीं। इसी के साथ एक और मेल हमें लिख रहे हैं राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, और इसे लिखने वाले हैं हर्षा रामेरकर, दिलीप रामेरकर, अक्षय रामेरकर, रुद्रा रामेरकर, रुचिका रामेरकर। और एक और खूबसूरत मेल हमें प्राप्त हुआ है और इन्होंने खूबसूरत लाइनें लिखी हैं, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी के गले नहीं लग सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात आपने कही है। और ये लाइनें लिखी हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, कमलेश खोरवाल ने, और ये मेल इन्होंने हमें किया है होली चौक उत्तम नगर से। इसी के साथ एक और मेल हमें सत्य प्रकाश सनोठिया जी का आया है, ये मेल हमें रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं और इन्होंने भी बहुत प्यारी लाइनें लिखी है कि राहों में मुश्किलें हजार आएंगी, धूप के बाद ही तो छांव आएगी, हार मत मानना है मुसाफिर कभी, तेरी मेहनत ही एक दिन रंग लाएगी। वाह क्या बात कही है आपने, पर्सनली ये लाइनें मुझे बहुत पसंद आई हैं। इसी के साथ एक मेल हमें सीसी कॉलोनी दिल्ली से आया है और इस मेल को हमें भेजा है ज्योति राणा ने, और इस मेल में शामिल है पार्थ राणा, प्रतीक राणा और राधा। आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो जी राम राम और नमस्ते आपको, और हमें भी आपका मेल पढ़कर बहुत अच्छा लगा। ये मेल हमें आया है गौरी शंकर का नागलोई से। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है दीप्ति वैद, दिलीप वैद आवाजो गोई मराठवाड़ा से, और ये लिख रहे हैं किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो लीजिए जी, हमने आपका नाम इस मेल में शामिल कर लिया, इस गीत में शामिल कर लिया। इसी के साथ हमें दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार लिख रहे हैं और लिख रहे हैं हम आप हमारे संदेश को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। और नेहा जी का हैदराबाद में जन्मदिन है, उनको शुद्ध एफएम टीम की तरफ से, यानी एफएम गोल्ड लिखना चाहते हैं शायद आप, नेहा जी को ये जन्मदिन विश करना चाहते हैं। और देखिए, हमने आपके मेल को नज़रअंदाज नहीं किया और शामिल कर लिया। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है नवाब अहमद भारती का, इनके साथ इस मेल में शामिल हैं बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय डींगरा, सलीम अख्तर जी दिल्ली से ये मेल हमें कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और हमें मेल आया है, ये लिख रहे हैं विशिंग यू अ हैप्पी एंड लवली डे, इफ पॉसिबल प्लीज प्ले अ सॉन्ग। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि हम आपका गीत बजाएं। और ये मेल हमें लिखा है दुर्गा पाठक, प्रीति एंड पृथ्वी पाठक ने, फरीदाबाद हरियाणा से। इसी के साथ एक और हमें झज्जर हरियाणा से मेल आया है और इसे लिख रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। इसी के साथ एक और मेल हमें फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से आ चुका है, और इस मेल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार मैसेज या मेल ना करें। और एक हरजिंदर सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इतनी बार मेल करते हैं कि उनका मेल जो है वो हाइड हो जाता है और हमें पढ़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सच कहूँ तो उनका मेल समझ में ही नहीं आता, इसलिए बार बार हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है श्रोताओं कि एक बार आप मेल करिए, हमें भी पढ़ने में आसानी होती है, नहीं तो बार बार वो आपका नाम आता रहता है और आपका मेल छूट जाता है। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है और ये लिख रहे हैं हेलो आरजे सर, गुड आफ्टरनून, आई हैव रिक्वेस्ट टू यू दैट प्ले सॉन्ग, शायद फिर आपने बार बार मैसेज किया है। तो श्रोताओं, ये खूबसूरत मेल आज हमें प्राप्त हुए और हमने इनको शामिल किया। अगर आपने अभी तक हमें मेल नहीं किया है तो आप जानते हैं कि आपका मेल हमें कहाँ मिलेगा और आप उसे कहाँ भेजेंगे। हमारा मेल आईडी है fmgoldaardelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868683। लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश और आपकी फरमाइश पर सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों आइए एक बार फिर नजर डालते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसका संदेश हम तक पहुंच चुका है। तो ये संदेश हमें ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से आ चुका है और इसे लिखने वाले हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी के साथ एक और मैसेज हमें आया है, ये लिख रहे हैं राम प्रकाश जी, राम राम।

दोस्तों आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसका संदेश हमें प्राप्त हुआ है और कुछ और संदेश आज के कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। तो ये संदेश हमें छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आया है और इसे लिख रहे हैं मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है गंज डुगवारा से और ये लिख रहे हैं राम प्रकाश जी आदाब। तो जी आदाब, और लिख रहे हैं हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो लीजिए जनाब, हमने आपको इग्नोर नहीं किया, आज के कार्यक्रम में हमने आपको शामिल कर लिया। ये मेल हमें लिखा है शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है और ये लिख रहे हैं सर नमस्ते, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से कुमारी चंदा चांदनी, आकाश कुमार और उनके मम्मी पापा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और ये मेल लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी शुक्रिया इस सुंदर कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसी के साथ हमें संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का मैसेज भी आया है। और इसी के साथ हमें जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का मैसेज भी आ चुका है। तो जी शुक्रिया आपका इस खूबसूरत मेल के लिए। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम मन भावन में फिलहाल इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके नाम और आपके संदेश आज के कार्यक्रम में शामिल करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई संदेश छूट गया हो तो क्षमा कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसे, आपके संदेश को आज के कार्यक्रम में शामिल करें। खैर, अगर आज हम शामिल नहीं कर पाए तो कल कोई और आएगा और आपका नाम आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस गीत के साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा ठीक 4:10 पे AIR Delhi FM Gold 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की।

0: प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने इसके लिए देश में अनुकूल इकोसिस्टम की जरूरत पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसका वर्तमान अनुमान लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर है, उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता वैश्विक स्वास्थ्य सेवा बाजारों के लिए प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित, निर्मित और निर्यात करना होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस संबंध में अपने पिछले साल के फैसले में संशोधन किया है। न्यायालय की पीठ ने पुनर्समीक्षा खारिज करते हुए बहुमत से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के लियांग और वांग की जोड़ी से होगा। मैच शाम 4:30 से खेला जाएगा। इससे पहले त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने 4थी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यी फैन और झांग शूशियान को बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with Chief Executive Officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi.

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आइए दोस्तों, आपको कुछ और बेहतरीन नगमे सुनवाते हैं जो सजे हुए हैं खूबसूरत आवाज और खूबसूरत साज से।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म बड़े दिलवाले से, और आवाजें लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का, और बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

आइए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और बोल राजेंद्र कृष्ण के।

0: We begin with
1: the Directorate General National Cadet Corps, NCC, Ministry of Defense, is inviting applications on deputation for 5 posts of stenographer grade 1, group A, non-gazetted, in various NCC directorates and the Officer Training Academy. The posts are available at locations in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Karnataka and Goa, Rajasthan, the Northeast region and Kampiti. The pay is in level 6 and the deputation period is initially for 3 years, extendable up to 5 years as per organizational requirements. Interested and eligible officers should submit their applications in duplicate using the prescribed performer with attested ACRs, APRs for the last 5 years to the Joint Director, Personnel, Directorate General, NCC, West Block 4, RK Puram, New Delhi, 110066 within 45 days of the release of this advertisement in the Employment News. A certificate confirming no disciplinary or vigilance case and no penalties in the last 5 years must also be included. Late or incomplete applications will not be considered. For details and application format, kindly visit the NCC website. That is at www.nccindia.gov.in. I repeat the website, it is www.nccindia.gov.in. The Office of the Development Commissioner, Handicrafts, Ministry of Textiles, invites applications for 1 post of Regional Director, Handicrafts at Level 12 on deputation. Officers from central or state governments or union territories are eligible to apply. The selected candidate will initially be posted at New Delhi or Lucknow, but may be assigned to any regional office including Mumbai, Chennai, Kolkata or Guwahati. Applications in the prescribed format along with the required documents and certifications should be forwarded through proper channel to the Director HC, Office of the Development Commissioner Handicrafts, Shilp Bhavan, Plot Number 8, Nelson Mandela Mark, Vasant Kunj, New Delhi, 110070. Within 60 days of these advertisements publication in the Employment News. Incomplete or late applications or those not routed through proper channels will not be considered. For application details and their performer, kindly visit the website at www.handicrafts.nic.in. I repeat, it is www.handicrafts.nic.in. The Ministry of Housing and Urban Affairs, MOHUA, Government of India, is inviting applications for the post of an Executive Director in the Building Materials and Technology Promotion Council, BMTPC. The post is in Level 14 as per the 7th CPC and may be filled through direct recruitment, failing which by deputation and if needed by contract appointment. BMTPC's mandate includes promoting innovative and emerging building materials and construction technologies, acting as training and resource center, supporting disaster mitigation and reconstruction and providing project management and consultancy service for housing projects under various central and state schemes. For detailed eligibility criteria, application procedures and further information, candidates should visit the official website of the Ministry of Housing and Urban Affairs. That is at www.mohua.gov.in and must apply within 30 days from the date of release of this advertisement in the Employment News. I repeat the website, kindly refer to www.mohua.gov.in. Krishi Vigyan Kendra, Barmer 1, Danta, managed by the Society to Uplift Rural Economy, SURE, invites applications for 2 vacancies, stenographer grade 3, unreserved, pay level 4, and programmer assistant, lab technician, T4, unreserved, pay level 6. For stenographer, candidates must have passed 12th class or equivalent and demonstrate proficiency in transcribing a dictation test in English or Hindi on computer. For programmer assistant, candidates need a bachelor's degree in agriculture or relevant sciences with 2 years experience preferred. The upper age limit is 27 years for stenographer and 30 years for programmer assistant, with relaxations as per Government of India rules. Applicants should send their completed application forms at www.barmer1.kvk2.in. I repeat, it is www.barmer1.kvk2.in. The last date to apply is within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. And now we have the Employment News in Hindi.
0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोत अधिकरण आमंत्रित कर रहा है संविदा के आधार पर इन पदों को भरने के लिए आवेदन। ड्रेजर सहायक 2 पद, सहायक जल सर्वेक्षक 2 पद, वैज्ञानिक सहायक 2 पद तथा समुद्री सहायक 16 पद। पात्रता, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, पारिश्रमिक, संविदा के नियम और शर्तों तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग और विषयों के नाम हैं: वाणिज्य कुलपद 12, अर्थशास्त्र कुलपद 3, गणित कुलपद 1, कुल मिलाकर 16 पद रिक्त हैं। शारीरिक शिक्षा निदेशक का 1 पद भी रिक्त है। योग्यता, अनुभव, स्क्रीनिंग, दिशा निर्देश और सांकेतिक प्रोफार्मा आदि के बारे में विवरण देख सकते हैं आप कॉलेज की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.src.edu, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी ये विवरण उपलब्ध है। वेबसाइट है www.du.ac.in। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये पद रिक्त हैं: उप CVO 1 पद, प्रबंधक सतर्कता 1 पद और पर्यवेक्षक सतर्कता 2 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.spmcil.com। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक केंद्र में सलाहकार एंटोमोलॉजी का 1 पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत नियम शर्तों योग्यता आदि की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक केंद्र की वेबसाइट www.ncvbdc.mohfw.gov.in। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: सहायक निदेशक 2 पद, लेखा अधिकारी 1 पद तथा सहायक ग्रेड 1 1 पद। पात्रता संबंधी विस्तृत शर्तों और निर्धारित प्रपत्र की जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.ccsniam.gov.in। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन: ऑफसेट मशीनमैन सामान्य, केंद्रीय सेवा समूह ख, अराजपत्रित। रिक्तियों की संख्या 2 है। आवेदन हेतु पात्रता की शर्तों और निर्धारित अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट caomod.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इंतजार में गुजार देते हैं, कभी किसी बेहतर कल का, कभी किसी मुकम्मल रिश्ते का, कभी किसी ऐसे ख्वाब का जो अभी पूरा होना बाकी है। हम बार बार अपने दिल से कहते हैं, अभी नहीं फिर कभी, मगर जिंदगी की किसी आने वाले लम्हे का नाम नहीं है। जिंदगी तो वही है जो इस वक्त हमारी सांसों में उतर रही है, इसलिए ठहरिए। बारिश हो रही हो तो उसे सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए। चाय की प्याली हाथ में हो तो उसे जल्दी जल्दी खत्म मत कीजिए, उसकी गर्माहट को हथेलियों में ठहरने दीजिए। जिस शख्स से मोहब्बत है उसकी आंखों में थोड़ी देर और देखिए। बच्चों की हंसी को मोबाइल के कैमरे में कैद करने से पहले उसे अपने दिल में कैद कर लीजिए। जिंदगी को हर वक्त बेहतर बनाने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे जीना ही भूल जाएं।
1: That's very right, Mukesh. And indeed, this beautiful song by Kishore Kumar, ye bhi hum log se shayad yahi kuch kehna chahte hain, that we should make the most of the moment that we are living. Kyunki ye pal bhi to humse hi zinda hai. Ye bahut hi azim shayra ne kaha tha. And I think it's so, so right jo aapne shuru mein kaha, that we keep on waiting for that one moment that is to arrive. And we always say, no, this is not the right time. This is not the right time. Well, indeed, this moment is everything that is what matters. And I think this breath, this heartbeat, this ordinary, imperfect, yet beautiful moment is yours. Hold it gently, but very tightly also. For one day, you will look back and realize that the life that you were waiting for was quietly happening all along. तो इसी नोट पे, इसी पॉजिटिविटी के नोट पे मुकेश और सायरा का इस्तकबाल हम लोग का आप जो कबूल कीजिए। वेलकम टू आवर शो परिक्रमा।
0: बिल्कुल, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है और स्वागत है न्यूज मैगजीन परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज़ शो, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
0: जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
1: India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि घटाकर 1 वर्ष की।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnerships with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore.
0: अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है।
1: एंड इंडियन डू ऑफ ट्रीसा जॉरी एंड गायत्री गोपीचंद एडवांस टू वुमेन्स डबल्स सेमीफाइनल्स ऑफ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। हस्ब दस्तूर हम लोग जो है शुरू करते हैं परिक्रमा विद आवर स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। एंड मुकेश, आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट कंसर्न्स द यूथ विच फॉर्म्स द मेजर चंक ऑफ आवर कंट्री एंड हाउ द यूथ इज नाउ एक्चुअली चेंजिंग द होल, यू कैन से, डेमोग्राफी एंड द वे पीपल लुक आउट फॉर लाइवलीहुड, बिकॉज द यूथ इज नो मोर सीकिंग जॉब्स, इट्स इनफैक्ट क्रिएटिंग जॉब्स। तो हम लोग का जो स्टार्टअप इंडिया जो शुरू हुआ उसके अंतर्गत भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए एंड दे आर स्टिल ब्लूमिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, हाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर टेकिंग होम ग्रोन आइडियाज टू द वर्ल्ड। सो वेल, टुडे इज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द ड्रीम्स, द रिस्क एंड चेंजेस ऑफ द पीपल हु टर्न आइडियाज इन टू एक्शन एंड चैलेंजेस इन टू अपॉर्चुनिटीज। एंड वॉट बेटर डे टू एक्सप्लोर हाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर टेकिंग होम ग्रोन आइडियाज फ्रॉम टेक्नोलॉजी and startups to traditional crafts, GI tagged products, fashion and food to audiences across the world.
0: बिल्कुल, भारत के एक छोटे से शहर में जन्मे एक छोटे से विचार से लेकर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले ब्रांड तक का सफर अब सिर्फ मेड इन इंडिया तक सीमित नहीं है, ये भारत में बना और दुनिया भर में सराहा गया सफर है। आज हम लोकल से ग्लोबल बनने के उसी रोमांचक सफर के बारे में जानेंगे।
1: But before we move further, Mukesh, here's a question to get us started. Well, when you hear the words made in India, what's the first thing that comes to your mind? Is it Indian spices? Is it the handlooms? Or maybe just UPI? Well, a startup. Well, maybe a beautifully crafted sari or even a premium Indian spirit.
0: बिल्कुल, भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल अब सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हो रहा है बल्कि दुनिया भर में उन्हें पहचाना और सराहा भी जा रहा है और उनकी मांग भी बढ़ रही है। आज हम बात कर रहे हैं लोकल से ग्लोबल की, यानी भारतीय उद्यमी कैसे देश में बने उत्पादों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।
1: And this is not just a story about exports, Mukesh. It's also about how Indian entrepreneurs are taking our technology, the craftsmanship, the culture, the flavors and business ideas and turning them into global success stories. Let's begin with something that millions of Indians use every day, that is UPI.
0: बिल्कुल सारा, भारत में शुरू हुई डिजिटल भुगतान की क्रांति अब एक ऐसा मॉडल बन गई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा है। इससे मिलने वाली बड़ी सीख ये है कि भारत अब सिर्फ प्रौद्योगिकी ही नहीं अपना रहा बल्कि हम एक ऐसी डिजिटल अवसंरचना बना रहे हैं जो दूसरे देशों की वित्तीय प्रौद्योगिकी के बारे में सोच को प्रभावित कर सकती है।
1: That's right, Mukesh, and perhaps that's the beauty of India's entrepreneurial ecosystem. We have a huge domestic market, millions of digital users and entrepreneurs who are constantly solving problems at an enormous scale.
0: और फिर भारत की सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी SaaS की कहानी है। भारतीय कंपनियां तेजी से भारत में ही दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रही हैं।
1: That's right, and in fact, I think our software engineers and architects of this industry are known globally to make a mark. And the advantage isn't simply a lower cost anymore. India has a massive pool of engineers, developers, designers, and product managers who understand the global customer.
0: बिल्कुल सारा, उस बदलाव के बारे में सोचिए। पहले वैश्विक कंपनियां अक्सर भारत को काम आउटसोर्स करने की जगह के तौर पर देखती थीं और आज भारतीय उद्यमी कह रहे हैं हम खुद उत्पाद बनाएंगे और उसे दुनिया भर में बेचेंगे।
1: That's right, and I think that is a huge shift, you know, from being the back office to now becoming the innovation centers. And of course, अब जो artificial intelligence का, you know, with the advent of AI, cloud computing and even deep tech is moving so quickly, Mukesh, that opportunities are only getting bigger and bigger.
0: बिल्कुल, अब कोड से हटकर कला और कौशल की बात करते हैं क्योंकि भारत की वैश्विक कहानी सिर्फ स्टार्टअप और तकनीक के बारे में नहीं है।
1: That's right, और मेरे ख्याल से आए दिन हम लोग जो है अपने इंडिया की बहुत से कुछ ऐसे, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे खाने हो, चाहे हैंडलूम के कुछ प्रोडक्ट्स हो,
0: ढेर सारे उत्पाद
1: जिनके हम लोग ये न्यूज सुनते हैं आए दिन कि उनको GI टैग मिला। यस, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग टेल्स कंज्यूमर्स दैट अ प्रोडक्ट हैज अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड इट पोजेसेस क्वालिटीज, रेप्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस।
0: और भारत में ऐसे कई तरह के शानदार उत्पाद मौजूद हैं, दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ियां, कांचीपुरम सिल्क, पश्मीना, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी केसर और तिरुपति लड्डू के बारे में सोचिए। इन सभी की अपनी एक कहानी है जो किसी खास इलाके से जुड़ी है।
1: That's very right, and if I'm not wrong, मेरे ख्याल से recently कोल्हापुरी चप्पल को भी शायद जीआई टैग लगा ना कि वो कोल्हापुर की है, because some international brand was probably trying to hijack that. And well, that story can become a global advantage also. Just imagine buying a beautifully woven Indian textile abroad. You're not just buying that fabric, you're actually buying centuries of craftsmanship, a community's skills and the cultural identity of a region. तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि बनारस की साड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोचिए कि जब उस साड़ी को आप हाथ में लेते हैं, अगर आप में थोड़ा सा भी शौक के साथ साथ जौक है, देन यू विल थिंक ओवर दैट द प्रोडक्ट दैट इज इन योर हैंड्स, इट्स एक्चुअली अ लेबर ऑफ लव, और ये कितनी जनरेशन से पास डाउन हुआ है उन बुनकरों के। सो यू नो, समटाइम्स वी जस्ट लुक एट द प्राइस टैग, बट दैट प्राइस टैग इज प्रॉब्ली नॉट मियरली ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर होल्डिंग, बट ऑल्सो ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप, द आर्टिस्ट्री दैट लाइज बिहाइंड इट, इजंट इट?
0: बिल्कुल, और यहीं पर GI टैग वाले उत्पादों में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये भारतीय कारीगरों और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय

0: बाजारों में असली क्षेत्रीय उत्पादों की अलग पहचान बनाने में सहायता कर सकते हैं।
1: और मुकेश, जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की बात ही कर रहे हैं हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की, देन ऑफ कोर्स द कन्वर्सेशन विल नॉट बी कंप्लीट अगर हम लोग अपने फूड प्रोडक्ट्स की बात ना करें, खास तौर से मसाले, चाय, कॉफी, इजंट इट?
0: बिल्कुल सही कहा। भारतीय मसालों, चाय, कॉफी, अचार, स्नैक्स और क्षेत्रीय व्यंजनों की लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय प्रशंसक भी रहे हैं।
1: That's right. I remember clearly when Bill Clinton came and he had the samosa.
0: जी.
1: तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे. So you know, for many international parties, the samosa became a regular.
0: और एक किसी देश के प्रधानमंत्री को जब मोदी जी ने पानी के बताशे खिलाए.
1: That's right. और आप एकदम सही लफ्ज यूज किया, हम लोग भी पानी के बताशे ही बोलते हैं कुछ जगह उसको.
0: गोलगप्पे बोलते हैं,
1: गोलगप्पे,
0: पानी
1: पूरी बोलते हैं, कुछ लोग पुचका भी कहते हैं, इज इट इट? तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर देखा जाए इट्स सच अ सिंपल थिंग, यू नो, बट एक पता नहीं द मोमेंट यू पॉप इट इनटू योर माउथ यू गेट अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स एंड दैट गिव्स यू
0: हाई।
1: एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा के एक मतलब टपरी पे भी वो आपको दिखेगा और एक मॉल में भी मिलेगा,
0: मुंह में पानी आता है।
1: दैट्स सो वेरी राइट। सो वेल, समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग इन द इंडिया ऑफ टुडे। इंडियन फ्लेवर्स आर मूविंग बियॉन्ड इंडियन कम्युनिटीज अब्रॉड एंड एंटरिंग द मेन स्ट्रीम ग्लोबल फूड कॉन्वर्सेशन।
0: बिल्कुल, हल्दी, इलायची, मिर्च मसाला और चाय दुनिया भर की रसोई में जाने पहचाने वाले शब्द बन गए हैं।
1: इनफैक्ट अगर जो आप हल्दी, इलायची, स्पाइसेस की बात करें, ये तो मतलब सदियों से, सेंचुरी से इनकी वाहवाही तो हो ही रही है। बट जैसे आपने पानीपुरी की बात की, रिसेंटली मास्टर शेफ में यू वोंट बिलीव शी मेड राज कचौरी
0: जी,
1: एंड द वाइट पीपल दे वर एब्सोल्युटली ब्लोन ओवर बाय द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इनटू देयर माउथ के राज कचौरी है क्या चीज, जैसे उसको आप फोड़ते हैं उसके अंदर खाली खाना नहीं निकलता, लग रहा है कि देयर सो मेनी, यू नो, एन अमलगमेशन ऑफ सो मेनी फ्लेवर्स। एंड वेल, लेट्स रैप अप टुडेस डिस्कशन। एंड वन थिंग इज क्लियर मुकेश, दैट इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज टेकिंग आवर आइडियाज, इनोवेशंस, ट्रेडिशंस एंड प्रोडक्ट्स फार बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, फ्रॉम यूपीआई एंड इंडियन स्टार्टअप्स टू जीआई टैग्ड क्राफ्ट्स, फैशन, फूड एंड होम ग्रोन ब्रांड्स। India is showing the world that our local stories can have, and in fact, they do have global appeal.
0: तो इस विश्व उद्यमी दिवस पर आइए ना सिर्फ उन व्यवसायों का जश्न मनाएं जो ये पहले ही ग्लोबल हो चुके हैं, बल्कि उन अनगिनत भारतीय विचारों का भी जो उस सफर पर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि असली ग्लोबल सक्सेस स्टोरी एक साधारण से विचार से शुरू हो सकती है, और वो भी यहीं भारत में। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की बनाई जा रही राखियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ये महिलाएं राखी को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह।
2: देहरादून जिले के रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकास खंडों में समूह की महिलाओं द्वारा ऊन, क्रोशिया, मौली के धागे और रिबन सहित विभिन्न सामग्रियों से आकर्षक राखियां तैयार की जा रही हैं। रायपुर के मालदेवता क्षेत्र की सास बहू लीला रावत और अलका रावत इस कारोबार में पहचान बना रही हैं। दोनों ने इस वर्ष 2000 से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी है। पिछले वर्ष उन्होंने 1200 राखियां बेचकर करीब 25000 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस बार उन्हें स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। अलका रावत ने पिछले साल प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपनी सास लीला के साथ स्वरोजगार की राह चुनी। दोनों ने मालदेवता क्षेत्र में एक दुकान शुरू की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से शुरू की गई स्वरोजगार के माध्यम से वे राखियों के साथ अन्य हस्तनिर्मित और स्थानीय उत्पादों का भी कारोबार कर रही हैं। उनके अनुसार समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आय का बेहतर अवसर मिला है।
3: मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूं, एनआरएलएम से, और यहां से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, एनआरएलएम की तरफ से महिलाओं के लिए रोजगार के अन्य अन्य साधन आते हैं, नई नई स्कीमें आती रहती हैं, और हम हर सारी महिलाएं जो है इससे काफी लाभ उठाती हैं, और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फायदा मिल रहा है और हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं।
4: मैंने ये अपना हैंडमेड राखिया का स्टार्ट किया था, हैंडमेड राखिया बनाते हैं, तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल, इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखियां बनाई है। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखियां इस बार बनाई है।
2: वहीं सहसपुर और डोईवाला की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 महिलाएं भी विभिन्न डिजाइन की राखियां तैयार कर बाजार में बेच रही हैं। जिला प्रशासन

0: device set to revolutionize post-stroke rehabilitation. Let's hear more from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: Stroke remains one of the leading causes of long-term disability worldwide, affecting over 13 million people each year, with 80% residing in low- and middle-income nations. Up to 80% of survivors suffer from upper limb motor impairments, and fewer than 30% manage to fully regain their independence. Traditional rehabilitation techniques are often expensive, labor-intensive, and fail to keep patients consistently motivated due to repetitive routines. Extend solves this problem by turning tedious therapies into immersive, data-driven, and virtual experiences that encourage long-term practice. Categorized as a software as a medical device, Extend stands out because it operates completely without external body sensors or complex wiring, making it fully portable and convenient. The platform features 18 targeted physiotherapy exercises covering full kinetic chain from shoulders to fingers. To make therapy more relatable and enjoyable, it incorporates gamified simulations of daily activities like brushing teeth, eating, making phone calls, and gardening. The device easily changes the rehabilitation from hospital settings directly to patients' homes. After initial setup and guidance by a therapist, patients can continue their exercises independently, while real-time data is transmitted remotely to doctors and physiotherapists. Currently undergoing final clinical trials and regulatory approval processes, Extend is expected to hit the commercial market soon. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
2: और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश. बेतवा नदी पर बना झांसी का परीछा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है. इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दी है. तो सुनते हैं रिपोर्ट.
3: प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि परीछा बांध को फ्रांस के मार्सेई में 14 अक्टूबर को होने वाली 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान WHIS अवार्ड 26 दिया जाएगा. इसके लिए विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है. ये बांध करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. ये बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है. इस नहर व्यवस्था से बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्रों में खेती के लिए पानी पहुंचाया जाता है. परीछा बांध करीब 1174 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई नदी तल से करीब 16.8 मीटर है. इसमें 318 स्टील के गेट लगाए गए हैं. इन गेटों की मदद से पानी को रोकने और जरूरत के हिसाब से छोड़ने का काम किया जाता है. वहीं पिछले कुछ वर्षों में इसकी पानी जमा करने की क्षमता भी बढ़ाई गई है. इस बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सिंचाई का फायदा मिलता है. बारिश के मौसम में जब बांध के गेट खोले जाते हैं तो यहाँ पानी का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है. यही वजह है कि ये जगह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनती है. परीछा बांध से थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी पानी मिलता है. परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी.
0: And before we move to some other news, there's a very important news coming in. The Territorial Army has launched a national level hackathon, Terrier Cyber Quest 2026, which is aimed at developing innovative solutions at emerging challenges in defense, cybersecurity, and the information domain. The hackathon has been launched in collaboration with Cyber Peace to bring together technical talent from academia, industry, research institutions, government organizations, and the armed forces. The registration for the competition is open till 31st of August. The online shortlisting phase will be conducted from 1st to 10th of September, followed by the grand finale in New Delhi from 6th to 8th of October.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. तो सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की. भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है. नई दिल्ली में आज भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले गेम में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जियाई फेन और झांग शुशान को हराया. इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है. ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा.
0: In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the first match of the second pool phase of the FIH World Cup at Amstelveen today. The match will start at

0: 9:30 p.m. Indian time. And moving on to some business news. Well, benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex closed at 77,541. Nifty added 20 points to settle at 24,252.
1: और अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी।
3: आज सहोदरन अयप्पन की जयंती है। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया।
2: मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया।
3: 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।
2: आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था।
3: 1924 में उन्होंने वाईकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुँचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए।
2: जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई।
3: तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया।
2: आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिन लिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायित थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था।
3: वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे।
2: अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयं सेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयं सेवक बने। सत्याग्रही स्वयं सेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया।
3: ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो। गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी।
0: Legendary actress Saukar Janki also passed away in Chennai today, Mukesh. The 94-year-old actor Janki, widely known as Saukar Janki, she breathed her last due to age-related illnesses at a private hospital today. Saukar Janki is well known in South Indian films with an outstanding number of nearly 400 films. A recipient of Padma Shri, she also bagged the Filmfare Lifetime Achievement Award, 2 Nandi Awards and a Kalaimamani Award and started her career in the films in 1950.
1: और अब हम याद कर रहे हैं महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, खगोल भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। उनकी शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी और वो नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे।
0: And now, of course, Mukesh, we are remembering a very, very renowned personality who probably didn't just play the shehnai, बल्कि वो कहते हैं ना, कुछ लोग जो है एक यंत्र बजाते हैं और कुछ उसमें रूप हुक देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम लोग याद कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान को, who probably breathed a new life into the shehnai.

0: भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक को सन 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार तथा अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उनकी जो विशिष्ट पहचान थी, उनका योगदान जो रहा है पूरे विश्व भर में, अपनी शहनाई को उन्होंने एक नई पहचान दी। और बिस्मिल्ला खान की जो शहनाई है वो आज़ादी का संदेश भी बांट रही थी। और कब बांट रही थी? 1947 में। तब से लगभग हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्ला खान की शहनाई वादन एक प्रथा बन गई है।
1: That's right, Mukesh. And in his hands, the Shehnai was no longer merely an instrument of celebration. It became a language of longing, prayer, love and remembrance. His music seemed to rise from the narrow lanes of Banaras, carrying with it the fragrance of the Ganga, the bells of temples, the azan from distant minarets and the timeless soul of India. Aur shayad aaj bhi Banaras ke kisi khamosh ghat par Ganga ki rawani mein unki Shehnai ki koi dur jati hui taan sunai deti hai. Ye kaisi जो वक्त के पार चली जाती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, वो रिवायत बनती हैं, यादें बनती हैं और मौसिकी बनती हैं।
0: बिल्कुल। और हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। उन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक, समर्थ संगीत गुरु, अप्रतिम कंठस्वर और गायन कौशल के धनी, भक्त हृदय गायक थे।

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र

0: में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए। महान अभिनेत्री सौकार जानकी का चेन्नई में निधन हो गया है। सौकार जानकी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय महिला टीम आज एम्सफल्टन में FIH हॉकी विश्व के दूसरे चरण में मेजबान नीदरलैंड के साथ खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today interacted with Chief Executive Officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Mr. Modi also congratulated the leaders of the space sector for showing courage in taking the lead in a new area. He said that the confidence shown by the sector has strengthened the vision with which the space sector was opened to private participation. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal SSB in Siliguri, West Bengal today. Mr. Shah stated that since the BJP government came to power at the centre, the welfare personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwani Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme MPMS. Union Cabinet had approved the scheme last month. Addressing media in New Delhi, Mr. Vaishnav said the scheme has come into effect from 1st of April 2026. The scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain and stronger domestic manufacturing capabilities. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers' communities of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving two foreign flagged vessels, Mr. Jaiswal said that all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being. Army Chief General Dhiraj Seth's Nepal visit, the spokesperson said that during his visit, the Army Chief was conferred the rank of Honorary General. He noted that this reflects the long-standing friendship between the two countries and the armed forces. Union Minister J.P. Nadda today hit out at Congress leader and leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over a sit-in protest outside the Sansad Marg police station in New Delhi. Talking to media, Mr. Nadda said that this protest is neither for the interest of the students nor for the sake of justice. He alleged that this is a symbol of the Congress party's political desperation and Mr. Gandhi's hunger for media attention. Government today signed a $230 million loan with Asian Development Bank, ADB, to modernize and expand Chennai's water supply and sanitation infrastructure. The Minister of Finance said that the Chennai Climate Resilient Water Security and Sewerage Project will improve access to safe and reliable water supply and better sanitation services across Chennai. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. India's Kajal Dhochak has won her second consecutive Under-20 World Wrestling Championship title. She clinched the women's 76-kilogram gold medal with a commanding 7-0 victory over China's Jingru San in the final. In the 72-kilogram category, Tanu Sharma, and in the 62-kilogram category, Savita, won silver medals after losing the respective final bouts. India's Mansi Lathar is in contention for gold in the 68-kilogram category. In the BWF Badminton World Championships, India's Trisha Joly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semifinals and assured the country of a coveted medal at the prestigious championship. They upset the fourth seeds Jia Yifan and Zhang Shuxian of China at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Trisha Gayatri will take on top seeds Liu Xiangshu and Tan Ning in the semifinals on Saturday. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। तो मेरी कहानी का वो किरदार हो जो इसे पढ़ने लायक बनाता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है राग पहाड़ी और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी राग पहाड़ी।

पहाड़ों में गूंजा राग बसंत बहार। कुसुम ने सूटकेस सीट के नीचे रखी। दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस सही समय पर रवाना हुई। इस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन रेलगाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन नजरों के सामने नजारे नहीं बीते दिनों की झांकियां तैरने लगी। अतीत के झरोखों से 9 साल पहले का लम्हा लम्हा नजर आने लगा। कहने के लिए कुमाऊं का वह पहाड़ी गांव छोटा सा था, पर कुसुम का सारा संसार उसमें समाया था। स्कूल, सखियां, संगीत, सबसे खास उसका बेस्ट फ्रेंड सौरभ। पगडंडियों पर हंसते खेलते स्कूल जाना, लौटने पर कभी देवदार और साल के पेड़ों की ओट में लुका छुपी खेलना, तो कभी झरने के किनारे रेडियो रेडियो का खेल रचाना। वादियों में उनकी खुशियां गूंजती थी। कुसुम और सौरभ को पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। वो गीत सुनाती, राग पहाड़ी उसका सबसे पसंदीदा राग था। सौरभ रेडियो संचालक की अदायगी करता, कभी क्लासरूम में सिखाई गई कविता की पंक्तियां दोहराता, तो कभी अपने मन से गढ़ी हुई तुकबंदी सुनाता। धरती के साथ जब तक रहेगा नब, कुसुम का साथ देगा तब तक सौरभ। कुसुम की आवाज की स्वर लहरिया और छल छल बहते झरने की अटखेलिया। किशोरावस्था की कच्ची धूप में आत्मीय रिश्ते पक्के हो रहे थे।

लेकिन 9 साल पहले की वह घटना अभी भी भुला नहीं सकी थी। पापा ने रातों रात गांव छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया। 12 साल की कुसुम के मन पर मानो कोई बिजली सी गिरी। अलबत्ता वह जानती थी कि अगर पापा ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे खास वजह जरूर थी। पापा सत्य प्रताप भारद्वाज गांव के विकास कार्यों में सिर्फ इसलिए सक्रिय नहीं थे कि वे सरकारी विभाग के प्रमुख इंजीनियर थे, परंतु वह गांव उनके पुरखों का बसाया हुआ था। बचपन के मित्र राजदीप पाराशर उस गांव के मुखिया थे। भाभी संगीता ने कुसुम को मुंह बोले बेटी माना था। उसे बचपन से संगीत की तालीम भी देती थी। यही कारण था कि कुसुम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। सत्य प्रताप ने अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के हितार्थ लिया। विकास कार्यों के साथ साथ वे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते थे। बतौर मुखिया राजदीप पाराशर उन तमाम परियोजनाओं को अपने हाथों में लेते थे। बात उस वक्त की है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां 5 सितारा हिल रिसोर्ट बनाने के लिए राजदीप को प्रस्ताव भेजा। इसके लिए सरकारी अनुमति की दरकार थी। सत्य प्रताप ने इसकी समीक्षा की और प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन परियोजना के 3 महीने के बाद उस पर रोक लगा दी। कहा, राजदीप, आवंटित की गई जमीन से 3000 वर्ग फीट पर अधिक तुमने निर्माण काम किया है। वह भूमि खेत की जमीन है। नियम के अनुसार यह अतिक्रमण के वर्ग में आता है। नक्शे के हिसाब से तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए निर्माण काम रोका गया है। यार, रिसोर्ट में मिनी गोल्फ कोर्स को जोड़ने के लिए यह काम करना पड़ा। गोल्फ टूरिज्म को आजकल दुनिया में कितनी तवज्जो मिल रही है। जरा सोचो यार, इस रिसोर्ट में अगर मिनी गोल्फ कोर्स जुड़ जाएगा तो हमारे गांव में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। सुनो, अगर गोल्फ कोर्स जोड़ना चाहते हो तो अलग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। मेरी मानो तो झील के उस पार गांव में गोल्फ कोर्स के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। एक अलग से अर्जी दे दो। भाई सत्या, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दो ना। घी गिरेगा तो हमारी थाली की खिचड़ी में ना। हमारे गांव के लाभ को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचे यार। भाई राजदीप, यह गांव हम दोनों के पूर्वजों ने मेहनत और समर्पण से बनाया था। आज हम दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अपना योगदान आसपास के गांवों के विकास के लिए भी कर सकते हैं, ताकि उस गांव के लोगों को भी रोजगार के नए आयाम मिले। देख यार, संसाधनों और मजदूरी की बात करें तो यहाँ रिसोर्ट बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। समाज कल्याण तो बाद में भी होता रहेगा। राज, पिछले इन सालों में तुम कितने बदल गए हो। यार देख, यही वक्त है तुम और मैं मिलकर दौलत कमा सकते हैं। देख राज, दोस्ती अपनी जगह है, कायदे कानून अपनी जगह। भाई सत्य प्रताप, मैं तो दोस्ती के बारे में भी सोच रहा हूँ, दोस्त की बेटी के बारे में भी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी कुसुम और अपने बेटे सौरभ में कोई अंतर नहीं समझता। मेरे घर उसका आना जाना, संगीता से उसका इतना लगाव, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोचना तो तुम्हें है कुसुम के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। धन राशि कमा लोगे तो उसका भविष्य सुरक्षित कर पाओगे। राज, मेरी दुख तिरक पर हाथ मत रखो। जब सूत्रों से मुझे पता चला कि तुमने पिछले कई परियोजनाओं में पैसों की गफलत की है, मैंने यकीन नहीं किया था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कानून के दायरे में रहो। दोस्ती भुलाकर कानूनी कार्यवाही करने पर मुझे मजबूर मत करो। इससे राजदीप का गुस्सा हद पार कर गया। मौका देखकर उसने गंदी चाल चली

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सत्य प्रताप जब नैनीताल गए, तब राजदीप ने उन तमाम लोगों को बुलाया जिनके खेतों की जमीन निर्माणाधीन रिसोर्ट में आ रही थी। मुंह मांगे दाम पर जमीन खरीद ली। दूसरे दिन सरपंच की बैठक बुलाई। गांव के लोग भी उपस्थित हुए। इनमें ज्यादातर राजदीप के आदमी थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन दिनों क्यों सत्य प्रताप अपने गांव के विकास परियोजनाओं में रोड़े डालते हैं, जानबूझकर नीति नियमों का वास्ता देकर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। राजदीप ने भी ढोंग रचा, बोला, हाँ, मेरे सत्या से इस पर जब बात हुई थी तब वह आसपास के गांवों को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहीं इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्य प्रताप के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यह सब जब हो रहा था तब कुसुम सौरभ के साथ पढ़ाई कर रही थी, राजदीप के घर पे थी। नारेबाजी सुनकर वह सहम गई। संगीता ने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए। बच्चों का मूड बदलने के लिए वह बोली, सौरभ, आज कौन सी कविता सीखी स्कूल में, चलो दोहराओ तो। उसके बाद कुसुम एक अच्छा सा गीत राग पहाड़ी में सुनाएगी। सौरभ ने टेबल पर रखी चम्मच को अपना माइक बना लिया। दोनों के सामने बैठ

कर सुनाई अपनी कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दो लोगों की ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। कुसुम ने भी गीत सुनाया। फिर संगीता बोली, कुसुम चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना बेटा।

0: कुसुम को कमरे में सुलाकर संगीता बाहर आई। सौरभ ने पूछा, माँ सत्यप्रताप अंकल और पापा इतने अच्छे दोस्त है ना, मगर आज पापा ने उनका बचाव क्यों नहीं किया? संगीता बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वक्त और हालात के साथ रिश्तों में बदलते समीकरण को इस वक्त समझ नहीं पाओगे। हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है, कभी दौलत तो कभी किस्मत हर संबंध को आजमाती है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है और संबंध और भी पक्का हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम भी जाकर सो जाओ। राजदीप घर लौटे। संगीता ने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है, अचानक ये दौलत कमाने की इतनी भूख क्यों?
1: अरे तुम दोनों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं।
0: अरे सुनिए, नैतिकता को दांव पर लगाकर कमाया गया धन हमारे किस काम का?

0: अब सौरभ भी बड़ा हो रहा है, आपकी करनी का उस पर भी तो असर होगा।
1: संगीता, बहती गंगा में हाथ धोने में अकलमंदी है, वरना तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाएगी खेत।
0: संगीता ने बस आंखें बंद कर ली और दोनों बच्चों के बारे में सोचने लगी। वहां सत्यप्रताप भी कुसुम के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से आए पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव दिया, पहाड़ी पारिस्थितिकी संतुलन समिति में उन्हें सलाहकार के रूप में नामांकित किया गया था। इस नए पदभार को संभालने के लिए उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। सत्यप्रताप कुसुम के बारे में सोचने लगे और सालों से राजदीप की दोस्ती उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। दिन भर इस धर्म संकट से जूझते रहे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से कहा कि कुछ सोचकर बताता हूं। वे अपने गांव लौट आए। सत्यप्रताप ने कहा, भाभी जी, कुसुम स्कूल से आ गई क्या?
2: हाँ भाई साहब, संगीत का रियाज कर रही है।
1: तभी राजदीप ने व्यंग्य में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी की हमारे घर अच्छी देखभाल होती है।
0: सत्यप्रताप कुसुम को लेकर घर तो आए, पर पिछले दो दिनों में हुई घटनाक्रम के बारे में सुना, रात भर चिंतन किया। राजदीप का बदलता रुख और दौलत कमाने की अंधी दौड़ अब मित्रता की आहुति ले रही थी। उसके परिवार से कुसुम की आत्मीयता आगे चलकर कहीं बोझ न बन जाए, यही सोचकर सत्यप्रताप ने फैसला किया। दो फोन कॉल लगाए, अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। अगली सुबह कुसुम को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त पापा ने कहा था, पता है कुसुम, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी थी? पूरी तन्मयता से जिस राज्य को संभाला था उसे छोड़कर नई द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी? बेटा, क्योंकि जिस प्रजा से वो इतना प्रेम करते थे वे उनकी रक्षा करना चाहते थे, पर प्राणों से प्यारी जनता को रण में झोंक कर उनका अहित मंजूर नहीं था। इस वक्त तुम छोटी हो, इस वक्त शायद तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आएगा, लेकिन कुसुम, वक्त आने पर तुम जान जाओगी। इतना याद रखना बेटा कि जब बात सिद्धांतों की हो तो समझौता नहीं किया जाता। ट्रेन में बैठी बैठी कुसुम अपने सिद्धांतवादी पापा की बात समझने लगी थी। जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर पापा ने गांव छोड़ा था, कमोबश कुछ ऐसे ही हालात कुसुम की जिंदगी में आ गए थे। वरना दिल्ली में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो को बीच में छोड़कर वह अपने गांव वापस जाने के बारे में क्यों सोचती? पापा की कही बात मन में गूंजने लगी, किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है तब कुदरत हजार नई खिड़कियां खोल देती है। बंद दरवाजे की दहलीज पर सर पीटने के बजाय जरूरत है खुले झरोखों की ओर रुख मोड़ने की।

कुसुम के ख्यालों का सिलसिला अचानक टूटा। काठगोदाम स्टेशन आ गया था। अपनी सूटकेस और हैंडबैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। वक्त ने कैसी करवट ली है ना। 9 साल पहले जिस गांव को छोड़कर गई थी, आज वहीं वापस लौटी है। गांव तक जाने के लिए टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठी। 9 साल बाद फिर से पहाड़ों की आगोश में

स्थानीय रेडियो स्टेशन की ओर से आयोजित राग पहाड़ी उत्सव में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। कुसुम सोचने लगी, अगर टेलीविजन पर उस रियलिटी शो के आधार पर उसे गाने के लिए निमंत्रण मिला है तो बात अजीब है ना, क्योंकि जिस शो की वह टॉप 5 प्रतियोगी में शुमार हो चुकी थी उसी शो में वह बदनामी का शिकार भी तो हुई थी। सोशल मीडिया में लोग उसे ट्रोल करने लगे थे। इसके बावजूद कुमाऊं के उस रेडियो स्टेशन से उसे उत्सव में लाइव गाने के लिए बाइज्जत बुलाया गया। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ हैरानी हुई, क्योंकि टेलीविजन पर शो के दौरान बतौर निर्णायक आए उस सेलिब्रिटी ने रिहर्सल के दौरान कुसुम से बदतमीजी की थी। कुसुम ने आयोजकों से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ शिकायत दायर करने की अपील की। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था, शो के टीआरपी पर असर होने का डर था, तो कुसुम को खामोश रहने की सलाह दी गई। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उस सेलिब्रिटी ने अपने चैनल पर कुसुम का चरित्र हनन किया, कहा कि जीतने के लिए प्रतियोगी ने उस पर डोरे डाले थे। लाखों फैन फॉलोइंग वाले चैनल पर कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पापा की मौत के बाद कुसुम ने अपनी गायकी को जीवन का आधार बनाया था, लेकिन इस घटना ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सहमी हुई कुसुम नहीं जानती थी कि कहां जाए। पापा की बात याद आई, किस्मत एक दरवाजा बंद करे तो कुदरत हजार खिड़कियां खोल देती है। उसी रात ईमेल पर राग पहाड़ी उत्सव के लिए आमंत्रण आया। स्टेशन से पिकअप और सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था का मैसेज भी था। टैक्सी रुकी, ख्यालों का सिलसिला भी थम गया। उसी झरने के किनारे सर्किट हाउस था। 5 साल पहले वहां भूस्खलन की खबर टीवी पर देखी थी। उसके दिल में मानो कोई भूचाल आ गया था। वो कितना रोई थी। इस वक्त वो गांव का नजारा देख रही थी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कमरे में सामान रखकर कुसुम रिसेप्शन में आई। मैनेजर ने बताया कि शाम को राग पहाड़ी उत्सव की टीम उससे मिलने आएगी। कुसुम ने अपनी शॉल ओढ़ी, झरने के पास टहलने गई। बचपन की सारी खूबसूरत यादें पलकों पर आरोहित होने लगी। बचपन का हर पल संगीता आंटी और सौरभ की सुखद स्मृति से सजा था। दिल्ली जाने के बाद पापा के कहने पर उसने सौरभ से संपर्क तोड़ दिया था। न अपना पता या नंबर उसे दिया, न कभी उसे कॉल किया। लेकिन जब टीवी पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी तो लैंडलाइन पर उसने फौरन फोन किया था, लेकिन पता चला कि वह नंबर अस्तित्व में नहीं है। कुसुम की नजर इस वक्त देवदार के उस पेड़ पर पड़ी जिस पर सौरभ ने लिखा था, जब तक रहेगा धरती के संग नब, तब तक साथ रहेगा कुसुम संग सौरभ। सौरभ को याद करके इस कदर सस्कियां भरने लगी कि पीछे से जब किसी ने उसका नाम पुकारा उसे सुनाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुसुम ने मुड़कर देखा तो लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कुसुम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, ठीक से उसको देख नहीं पाई। उस नौजवान ने अपने रुमाल से कुसुम के आंसू पोछे, रूहानी आवाज में बोला, चाहे जितनी तेज हो हालात की आंधी, कुसुम कभी आंसू नहीं बहाती। बुद्ध से बैठी कुसुम टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। होने से पूछा,

जी हाँ मैडम जी, राग पहाड़ी उत्सव में आपका स्वागत है। इस बार आंसुओं की धारा खुशी की थी, गले से आवाज निकल नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियां सौरभ के चेहरे पर घुमा रही थी। सिसकी भरने के बाद गला साफ किया और पूछा, ये कोई ख्वाब तो नहीं है? 9 साल का अंतराल बुरा सपना जरूर था, वह बीत गया है कुसुम। अब तुम और मैं आमने सामने हैं, यह इस लम्हे की हकीकत है। सौरभ, तो इस उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने मुझे न्योता भेजा है? देश की उभरती हुई गायिका का स्थानीय रेडियो के क्रिएटिव हेड सौरभ पराशर की ओर से हार्दिक स्वागत है। सौरभ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कैसे मिला? 9 साल से शिद्दत से तुम्हें तलाशता रहा, अचानक टीवी पर रियलिटी शो में तुम्हें देखा, तुम्हें फॉलो करता रहा। तो फिर तुमने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी, तो मुझे अपनी कुसुम पर यकीन है, आदर्शवादी पापा की सिद्धांतवती बेटी कुसुम शो छोड़ सकती है पर समझौता नहीं कर सकती। कुसुम की आंखें फिर से भर आई, सौरभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें पल पल याद करने का यही सिला है, लंबी तपस्या के बाद शुभ फल मुझे मिला है। सौरभ, हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई, मगर बताओ संगीता आंटी कैसी है? और अंकल, माँ तुम्हें देखने के लिए बेताब है। पता है तुम्हें कुसुम, रेडियो स्टेशन की वे अब सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। अरे वाह, सीरियसली? तो मुझे बताओ कि ये नाम राग पहाड़ी उत्सव उन्हीं ने दिया होगा। ओ मैडम, सुनना चाहती हो तो सुनो, राग पहाड़ी उत्सव यह नाम उनके बेटे ने दिया है, यानी मैंने, क्योंकि तुम्हें ये राग बहुत पसंद है ना? कुसुम मुस्कुराकर बोली, ये राग तुम्हारे बगैर अधूरा था सौरभ। सौरभ ने कुसुम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर कुसुम ने

अचानक पूछा, अच्छा बताओ अंकल कैसे हैं? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहां भूस्खलन हुआ था कुसुम, बहुत सारे मकान बह गए थे, पिताजी भी उस वक्त। ओह आई एम सो सॉरी। मगर पता है उस वक्त कुसुम, माँ के साथ मैं रेडियो स्टेशन में था। कुसुम सौरभ से लिपट गई। भगवान की दया है कि तुम ठीक हो सौरभ। पता है उस वक्त मैंने टीवी पर यह खबर देखी थी, मैंने फोन भी लगाया था, मैं कितनी डर गई थी। कुसुम याद है तुमसे मैंने वादा किया था, 1000 साल तक कुसुम और सौरभ साथ रहेंगे। वक्त के दरिया में बस 9 साल बह गए हैं, अभी तो सदियों का साथ बाकी है। राग पहाड़ी में तुम्हारी आवाज का गूंजना बाकी है, मेरे दिल के आंगन में तुम्हारा खिलखिलाना बाकी है, बसंत बहार में बगिया का महकना बाकी है।

ये थी कहानी राग पहाड़ी। आपको सुना रही थी शीतल शाह और ये कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर ईमेल कीजिएगा fmgoldchannel@gmail.com पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में

0: सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where, when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving 2 foreign-flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being. On the visit of MEA Secretary Sri Priya Ranganathan to Palestine, the MEA spokesperson said that the Secretary handed over consignment of life-saving medicines to the Palestinian government for the people of Palestine for their health needs. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwani Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme MPMS. Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The scheme tenure will be of 5 years from 2026-27 to 2030-31. The MPMS has two target segments, including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands. The government has said that a total of 29 foreign direct investments, FDI, have been reported under the revised framework till yesterday, involving proposed FDI of more than 4,800 crore rupees. These investments span a range of sectors, including infotech, AI, information and communication, manufacturing and pharmaceuticals, among others. The Minister of Commerce and Industry said that the 29 investments have been reported by investors based in Mauritius, US, South Korea, Japan, Singapore, Luxembourg and the Cayman Islands. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal SSB in Siliguri, West Bengal today. Mr. Shah stated that since the BJP government came to power the centre, the welfare of personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Mr. Shah also inaugurated an exhibition on Bharatiya Nyaya Sanhita in Siliguri. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. The government has assured that adequate sugar stocks are available in the country to meet domestic demand despite lower than estimated production. In view of the recent price rise in sugar, the government has taken a series of measures to ensure sufficient sugar availability and maintain stable prices for consumers. The Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that it is closely monitoring the situation. Legendary Uriya playback singer Pranab Patnaik, whose distinctive voice captivated generations of music lovers, passed away at the age of 88 in Bhubaneswar today. With a career spanning over 5 decades, Patnaik sang more than 200 films and collaborated with several celebrated national-level singers. He was a 7-time Odisha State Film Award winner and a recipient of the prestigious Jaydev Puruskar. In the BWF Badminton World Championships, India's Trisha Joly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semifinals and assured the country of a coveted medal at the prestigious championship. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amsterdam, the Netherlands today. And that is the end of this news bulletin.
3: Akashwani Samachar Seva Prabhag ki prastuti Vishleshan.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, भारत की बड़ी आदिवासी आबादी देश के वन क्षेत्रों और उनके आसपास रहती है। इन समुदायों का जीवन जंगल और उसके संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगलों में मिलने वाली महुआ, शहद, इमली, तेंदुपत्ता, लाख, बांस और औषधि जड़ी बूटियां केवल वन उपज नहीं है, ये उन लाखों जनजाति परिवारों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण आधार भी है। कई जनजाति परिवारों की सालाना आय का 20-40% हिस्सा लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से आता है। लेकिन इन जनजाति परिवारों के सामने एक बड़ी चुनौती है, कई बार कच्ची उपज को बिचौलियों के जरिए कम कीमत पर बेचना पड़ता है और इससे उत्पाद जुटाने वाले समुदाय को उनकी मेहनत के अनुपात में आय नहीं मिल पाती। इसी चुनौती को बदलने की कोशिश है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया ये मिशन जनजातीय समुदायों को केवल वन उपज का संग्रहकर्ता बनाए रखने के बजाय उन्हें उसके मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता से जुड़ने पर बल देता है। मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से संगठित किया जाता है, जहां स्थानीय उपज को बेहतर उत्पाद में बदलने और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित

0: जाती है। साथ ही सरकार लघु वनोपज के लिए पहले से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के जरिए भी आय को सुरक्षा देने का प्रयास करती है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन की शुरुआत किस तरह हुई, ये जमीन पर कैसे काम करती है और इस मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक और बाजार के स्तर पर किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है। श्रोताओं, जनजातीय समुदायों के लिए जंगल और उससे मिलने वाली उपज का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि उसकी पारंपरिक आजीविका से भी जुड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि लघु वनोपज से जुड़ी इस अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बना वर्ष 1996 का पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस कानून ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए आजीविका से जुड़े अधिकारों को मान्यता दी। इसके अंतर्गत उन्हें गैर इमारती लघु वनोपज के संग्रहण और बिक्री का अधिकार दिया गया। लेकिन अधिकार मिलने के साथ एक और चुनौती सामने थी, उचित कीमत। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि बीते वर्षों में किए गए प्रयासों ने इन वन अधिकारों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने और आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: यदि बाजार में किसी उत्पाद की कीमत गिर जाए और संग्रहकर्ता को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़े तो उसकी आजीविका सीधे प्रभावित होती है। इसी चुनौती को देखते हुए लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था विकसित की गई। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के तहत 87 लघु वनोपजों के लिए MSP अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में भी जनजातीय संग्रहकर्ताओं को एक निर्धारित मूल्य के स्तर पर सुरक्षा मिल सके। लघु वनोपज में बांस, शहद, लाख, तेंदु या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, जड़ें, कंद और इसी तरह के कई गैर इमारती वन उत्पाद शामिल हैं। इस व्यवस्था में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड जनजाति उत्पादों के विपणन और विकास के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ट्राइफेड राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से निर्धारित MSP पर लघु वनोपज की खरीद करता है। इन एजेंसियों में जनजाति विकास, सहकारी संस्थाएं और वन विकास निगम जैसी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। वर्ष 2013-14 से अब तक राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के तहत 267,954 मीट्रिक टन लघु वनोपज की खरीद की है, जिसकी कीमत 693,98,00,000 रुपए रही है। इस अभियान की सोच केवल उपज खरीदने तक सीमित नहीं है। जनवरी 2020 में नीति आयोग ने जनजाति आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष कार्यक्रम को मिशन मोड में तैयार करने की सलाह दी। इसके बाद अक्टूबर 2020 में कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम नाम से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। इसी पृष्ठभूमि में पहले से चल रही दो व्यवस्थाओं को मिलाकर जनजाति विकास मिशन की अवधारणा तैयार की गई। एक ओर था लघु वनोपज के लिए MSP और वैल्यू चेन डेवलपमेंट का तंत्र, जिसमें वन धन योजना शामिल थी। दूसरी तरफ जनजाति उत्पादों के विकास और विपणन के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की व्यवस्था, इन दोनों को एक व्यापक मिशन के रूप में भी जोड़ा गया। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसके तहत जनजातीय संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। लगभग 15 वनधन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर एक वनधन विकास केंद्र बनाया जाता है, जिसमें करीब 300 सदस्य हो सकते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल उपज इकट्ठा करना नहीं है, यहाँ लघु वनोपज और अन्य जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए सामूहिक व्यवस्था विकसित की जाती है। इस तरह जनजातीय विकास मिशन का मॉडल केवल ये नहीं कहता कि जंगल से उपज लेकर बाजार में बेचिए, बल्कि प्रयास ये है कि जंगल से उपज आए, समुदाय उसे संगठित करें, उसका मूल्यवर्धन हो, उत्पाद तैयार हो और फिर वो बाजार पहुँचे।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कच्ची वन उपज से आगे बढ़कर सामुदायिक उद्यम तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आज तक 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,911 कार्यरत हैं और इनसे 12,48,000 जनजाति सदस्य जुड़ चुके हैं। लेकिन किसी भी उद्यम की सफलता केवल उसके ढांचे से तय नहीं होती, इसके लिए कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी सुविधाएं और बाजार, इन सभी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत

0: जनजातीय समुदायों को ये सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाती हैं और एक वन धन विकास केंद्र जंगल की उपज को बाजार तक पहुंचाने में क्या भूमिका निभाता है, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं।
1: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार से जोड़ने के लिए सहायता का एक पूरा तंत्र विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत होती है कौशल विकास से। वन धन विकास केंद्रों में लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से उपज एकत्र करने, उसके प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को उनकी स्थानीय जरूरत के अनुसार प्राथमिक प्रसंस्करण के उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें कटिंग और सीविंग उपकरण, डिकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकेजिंग से जुड़े उपकरण शामिल हैं। यानी जिस उपज को पहले कच्चे रूप में बेचा जाता था, उसे स्थानीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया से गुजारकर अधिक उपयोगी और बाजार योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता विकसित की जाती है। इस काम के लिए बुनियादी ढांचे की भी जरूरत होती है। वन धन विकास केंद्रों को लाभार्थी के घर, सरकारी भवन या ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भंडारण और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय जरूरतों के लिए स्वयं सहायता समूह को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSTFDC के साथ जुड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाता है। मिशन में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्रों के सदस्यों को आगे चलकर वन धन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन उत्पादन और प्रसंस्करण के बाद अगली चुनौती है बाजार तक पहुंच। इसके लिए वन धन विकास केंद्रों को स्थानीय हाट बाजारों से जोड़ा जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे 5,000 से अधिक हाट हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थायी ढांचे, भंडारण, पेयजल, छाया और वजन की सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय उत्पादों को स्थानीय बाजार से आगे ले जाने के लिए मेले और प्रदर्शनी आयोजित किए जाते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर भी जोर दिया जाता है। ट्राइफेड की ओर से वन धन विकास केंद्रों को बाजार से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें दैनिक दरों और ई कॉमर्स के अवसरों से संबंधित जानकारी शामिल होती है। इससे उत्पादक समूहों को अपने कारोबार से जुड़े निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रोताओं, जब स्थानीय संसाधन स्थानीय समुदाय के हाथों में रहकर उत्पाद और उद्यम का रूप लेते हैं, तो वन आधारित आजीविका केवल आय का साधन नहीं रहती, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन जाती है। यही सोच एक ऐसी जनजाति अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाती है, जिसमें परंपरा और आधुनिक बाजार, स्थानीय संसाधन और नई तकनीक तथा सामुदायिक स्वामित्व और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।

0: भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इण्डिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषिणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतञ्च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणम् अधोरेखितवान्।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-अधिक-2000 वर्षस्य मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति। औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यमम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति। नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्तीति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोग दृढ़ीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढ़ीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतु विज्ञान विभाग अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडा वार्तासु भारतस्य काचल ढोचक नामनी द्वंद युद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीय बारं अन्तः 20-वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वंद्व युद्ध स्पर्धायां स्वर्ण पदकं प्राप्तवती। सा निर्णायक द्वंद्वे चीन देशीयां जिंगरू सन नामनी क्रीडिकां 7-0 पराजितवती इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,541, निफ्टी एड्स 20 पॉइंट्स। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज बाय 9.9 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द वीक एंडिंग अगस्त 14 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% की गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावरग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%, housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया. इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है. जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित दौर से काम कर रहे हैं. जो दो तीन ट्रेंड जो है वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है. पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चितता. दूसरी कारण यह है कि जो बाजार में वैश्विक बाजार में जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ मनी में जो चढ़ाव हो रहा है, जो दाम बढ़ रहे हैं वो है. और तीसरा जो है आपका जो क्रूड ऑयल का जो दाम जो है उसका आउटलुक. अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, पर द लेटेस्ट जो ट्रम्प साहब का जो ऐलान है कि वो एक इकोनॉमिक वॉर ईरान के ऊपर छेड़ेंगे, उससे क्रूड ऑयल मार्केट में उसका एक प्रभाव दिख रहा है. और ये तीनों चीज जो वैश्विक अनिश्चितता और जो बॉन्ड यील्ड में चढ़ाव और तीसरा आपका जो क्रूड ऑयल के दाम और यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, एक न्यू डीडीए फॉर द इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, उससे काफ़ी मार्केट में और उसी का एक थोड़ा बहुत प्रतिफलन हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है, और जो कल जो मार्केट में जो हमने जो करीबन 0.8 और 0.9% वृद्धि देखी है हमने सेंसेक्स में कल, उसका कारण भी ये था कि उनके पिछले 7 दिनों में काफ़ी नीचे था, वो जरा रिकवरी होकर स्टेबिलाइज किया है। पर अगर आप पूरी तरह से अगर 6 महीने की देखें, अगर वॉर से देखें, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो स्टॉक मार्केट में है वो उसी जगह अटकी हुई है जहाँ वो उस समय थी।
0: AKB, do you think that Trump's announcement of this initiative of isolating Iran, the economic D-Day as he calls it, is triggering how the global markets are behaving, including the Sensex and Nifty right now? Because fundamentally, the first quarterly results for the new financial year has been quite positive on the net profit side, on the revenue side, even margins of our companies have improved. Do you think, even from the point of view of the PMI index for services and manufacturing are well above 50, even if it's below month on month, do you think that it's because of this trigger of Trump that is creating that kind of sentiment in the market where FIIs and FPIs have been net sellers, but DIIs are not quite buying into the market as they were earlier?
2: There are two things that we must bear in mind in this context. Number one is that the disconnect between the macro economy, even the sectoral economy in India, and how the stock market is behaving, that disconnect is now complete. Today, if you are looking at the macro economy, looking at the sectoral economy, you see a story of relative calm, growth. As you also pointed out, the corporate sector sales as well as profit has been very good in Q1. The economy is expected to rise not less than 7% for the full year. This is in spite of the early war. So economy is doing well, but the markets remain where they are. So the disconnect between the macro economy and the market is complete in today's context. Why is this disconnect complete? That is because that the Indian market has not gone down to the extent that it becomes cheap for the foreign investors to come in large hordes. And that is because what we have seen in the Indian market is that a large number of retail investors, large number of institutional investors, because of the national payment systems, national pension system, or the EPFO, they are allocating more money to the equity market. So therefore, what you are seeing is this, that our stock markets are still very expensive for the foreign investors to get attracted to the Indian market. So therefore, what we are seeing is that on the one hand, the macroeconomy is doing reasonably well, but the stock market is not reflecting that buoyancy as yet. Now, what will happen because of Mr. Trump's announcements is a larger, broader question of whether US decision to isolate Iran economically succeeds or not. So far, in his war attempts, Iran was not really cowed down or dominated. Whether the US manages to dominate Iran or isolate Iran economically is a moot point, given the fact that Iran has got many backers globally, whether it is China or Russia.
0: So buying into a market, the price to earnings ratio of Sensex is still 20.5 to 20.9. We're talking about the large cap stocks. If you look at mid cap 100 and small cap 100 index, they have increased only marginally. Do you still think our market is overvalued? It's expensive for the FIIs and the FPIs to.
2: I did not say overvalued. I said expensive. Now, if you look at the global benchmarks, the global other emerging markets PEs are not at that level. So, therefore, for the global investor, the options are very clear that whether they want to. This is probably a good time for them to book their profits. And because there are bond yields going up, others, emerging market economies are

0: सरकार का प्लान भी है कि वो रॉ शुगर 0% ड्यूटी में इंपोर्ट करने का भी उन्होंने एक निर्णय लिया है। वो अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट आ जाए उससे जरूर हमारी जो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की जो स्थिति जो है उसमें उसमें कुछ कंट्रोल आएगी। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो इथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को इथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो है अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफी एक एडवर्स इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियां जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, इंपोर्ट आने से उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूं कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है
1: जी।
2: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continued their growth momentum in the first quarter of this financial year. Despite global uncertainty, the sector grew by 9.2% year-on-year for the April to June quarter, according to the quarterly bulletin of unincorporated sector enterprises released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. The estimated number of establishments increases 8.67 crore in this period. Employment in the unincorporated non-agricultural sector reached 13.7 crore, with the other services sector emerging as a key driver, recording employment growth of more than 21%. This was followed by the manufacturing sector, which registered growth of 10.06% in the estimated number of establishments and 6.6% in the estimated workforce. However, the unincorporated trade sector recorded a year-on-year decline of 7.88% in the estimated number of establishments and 7.29% in the estimated workforce. Sir, your comments briefly on this, the unincorporated sector enterprises, the quarterly bulletin that's come out.
0: Well, I think the unincorporated sector is a very important sector. They represent the largest segment of the Indian industry. But I think it's important to note that the urban sector has done better than the rural sector in jobs. And there is a welcome trend that we see of how women employment in these unincorporated sector has seen a significant rise. So both these developments, to my mind, are significant.
2: In more news, the Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have already been filed for the assessment year 2026-27. It includes more than 2 crore ITRs 3 and 4 till yesterday. The department has urged taxpayers to avoid the last minute rush, as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month.
1: सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
2: In more news, from the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.67% up at $94.41 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.48% higher at $87.25 per barrel when reports last came in. How concerned are you, AKB? Because even the Urals oil, which comes from Russia, is trading at $89 per barrel, because what's happening between Russia and Ukraine in that war, and now you have the threat of economic D-Day on Iran by the US president. How concerned are we about global inflation here?
0: It is a cause for concern. If the situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. So therefore, and domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that. If this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
1: और आगे बढ़ते हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपए प्रति किलोग्राम थी. एक भी हमने अभी देखा कि पिछले दो तीन दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है. इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी. इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है. अगले हफ्ते राखी है. राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीजन का आना होता है. मैं समझता हूँ कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है.
1: एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता।

0: सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers' communities of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving 2 foreign-flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being.
3: Two ships which are foreign flagged, they have been hijacked. We are in touch with the authorities that are concerned in this and we have 22 Indian nationals and all of them are reportedly safe, but we are looking into the matter, the welfare and safety of our seafarers and seafaring community to which we attach very high importance.
2: On the visit of MEA Secretary Shri Priya Ranganathan to Palestine, the MEA spokesperson said that the Secretary also handed over a consignment of life-saving medicines to the Palestinian government for the people of Palestine for their healthcare needs. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme, MPMS. The Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500.

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत से वैश्विक बाजार तक बढ़ते मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को जुलाई के महीने में मंजूरी दी थी। इस स्कीम की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक यानी कि 5 साल की है। पिछले दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में औद्योगिकी रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस सेक्टर ने लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आधारित आर्थिक विकास और आजीविका पैदा करने में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। अकेले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ही अभी लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार, धन्यवाद।
2: शिशिर जी, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू करने के पीछे सरकार की आखिर क्या सोच थी?
3: देखिए, ये जो स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, ये दरअसल पुरानी स्कीम की जगह लेगा। पुरानी स्कीम क्या थी? हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी। और उस स्कीम का जो नतीजा है वो अगर आप देखें, जैसे कुछ आंकड़े आपने शुरुआत में बताए, आंकड़े ये बताते हैं कि 2014-15 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 18,000 करोड़ का था मोबाइल हैंडसेट की अगर मैं बात करूं, जो कि 2025-26 में 6.27 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 33 गुना बढ़ा। आप अगर निर्यात की बात करिएगा तो लगभग 1,500 करोड़ का था 2014-15 में, जो कि 2025-26 में बढ़कर के करीबन 2,60,000 करोड़ पर पहुंच गया। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो

0: 165 गुना बढ़ा है। अब ऐसे समय में हमने ये देखा कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी ब्रांड थे, वो देश में उन्होंने अपनी पैठ बना ली, उन्होंने यहाँ पे इसको हब बनाया और हम यहाँ से बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरेलू ब्रांड को कैसे बढ़ावा देते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे ब्रांड हैं जो स्थानीय स्तर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि PLI में उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया, लेकिन उस तरीके का स्केल जो चाहिए था वो शायद उनके पास उस तरीके का नहीं था। अब वो माहौल बन चुका है, अब आपके पास एक इकोसिस्टम तैयार है। उस इकोसिस्टम में घरेलू कंपनियों को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, विदेशी कंपनियां जो होंगी सो होंगी उनको आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये 5 वर्षों की स्कीम है, जिसमें करीबन 62,000 करोड़ रुपए का जो है वो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और मुझे लगता है कि मोबाइल हैंडसेट एक ऐसी चीज है, जैसे आप देखेंगे कि अभी आप किसी के भी हाथ में देखें तो एक तो मोबाइल हैंडसेट है ही, कई लोग हैं कि दो दो मोबाइल हैंडसेट रखते हैं, यानी कि देश में मांग काफी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है। एक और चीज आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए डिजिटल जो है वो हमारी जिंदगी की जरूरत बन गई है। पहले हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान मोबाइल फोन और डेटा। ये पांचों हमको चाहिए जो हमारी जिंदगी को सही तरीके से चला सके। तो घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग उनको देखते हुए और घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी को ध्यान में रख करके ये स्कीम लाई गई है।
1: आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि IPs जो हैं उनका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आखिर क्या योगदान है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिर क्या कहा।
2: TS2 टारगेट सेगमेंट 2 इज फॉर सपोर्टिंग इंडियन IP, इंडियन डिजाइन, इंडियन ब्रांड। दैट्स अ फंडामेंटल initiative. It's a very ambitious initiative, but we have taken in consultation with the industry. If you recall, we had a mobile manufacturing ecosystem, but because of the tax issues and because of the Chinese onslaught, it became impossible for them to compete in the market. Now that we have been able to establish the ecosystem back in our country, time has come when we should be now focusing on developing Indian brand. Indian brand, Indian IP, Indian design. That is the thought process, and I think we are taking very measured, very calibrated steps on that. We have very closely coordinated with the industry, and we hope that in the tenure of this mobile phone manufacturing scheme, we'll have a good success on the having Indian brands.
1: शिशिर जी, जैसे कि मैंने भी बताया कि आज दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को ब्रीफ किया कि इस स्कीम के बारे में, जो कि जुलाई के महीने में ही आ गई थी और उसको कहा गया था कि ये अप्रैल से लागू हो गई है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस स्कीम के अलग अलग पहलू क्या है।
0: देखिए, सबसे बड़ी जो बात इस स्कीम की है जो मुझे समझ में आती है कि वो घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर कल पूर्जे का उत्पादन करना, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम एक मोबाइल हैंडसेट बनाते हैं, हम अमूमन ये कहते हैं कि हम एक असेंबली प्लांट हैं। आप असेंबलिंग प्लांट हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको बाहर से पड़ती है। अभी के समय में देखिए कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है, वो है आपका चिप को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत सारे चिप यूनिट्स स्टार्ट हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 2027 तक हम उसका निर्यात करना भी शुरू कर देंगे। तो दूसरा पहलू यह है कि आप लोकलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। पहला तो आप घरेलू ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा जो भी विदेशी कंपनियां हैं या देसी कंपनियां हैं वो लोकलाइजेशन को कैसे बढ़ाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का जिक्र किया कि लगभग 18% से बढ़कर के 23% तक आया है, अभी उसको और आगे बढ़ाना है। तो ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि आप तकनीक के मामले में, डिजाइन के मामले में आप किस तरीके से घरेलू स्तर को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई विदेशी ब्रांड है या विदेशी डिजाइन है, आपको एक रॉयल्टी की रकम अदा करनी पड़ती है, पेटेंट की रकम अदा करनी पड़ती है। ये यदि आपके अपने देश में विकसित होना शुरू हो जाए तो आपके लिए ये एक बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसका जाना रुक सकेगा। तो हम असेंबली से कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सके, उसके लिए तीन जो कंपोनेंट की मैंने आपको बात की, तीन अलग अलग वर्टिकल की बात की। और ऑफ कोर्स उसके बाद ये है कि जैसे जैसे जरूरतें और जैसे जैसे तकनीक की जरूरतें बढ़ रही हैं, उसके आधार पर आप कैसे हैंडसेट को तैयार करते। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ खास बिंदु है इस योजना के। और उम्मीद ये की जा रही है, जैसा आंकड़े दिए जा रहे हैं, कि लगभग 39,00,000 करोड़ रुपए का जो है प्रोडक्शन हमारा पहुंच सकता है। और मुझे लगता है कि ये आपके निर्यात को अगर आप ध्यान में रखिए, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और रोजगार भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 60,000 सीधे रोजगार की बात होगी। तो ये सारी संख्याएं और सारे जो वर्टिकल्स को अगर आप मिला दे तो हमारे कंप्लीट इकोसिस्टम

0: तैयार होगा जो आगे चल करके आपको दुनिया में और बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है।
1: अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया था कि भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे मोबाइल फोन उत्पादन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से भी कंपनियां भारत में अपने असेंबली यूनिट्स को लेकर आ रही हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि किन देशों ने अपने मोबाइल फोन असेंबलिंग यूनिट्स को भारत में लाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है।
0: देखिए, सबसे बड़ी तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हमारे आपके पास जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें से अगर आप देखें तो या तो वो सैमसंग का होगा या एप्पल का होगा। तो अमेरिका से एप्पल जो है वो लेकर के आए और कोरिया से हमारे पास सैमसंग आए। इसके अलावा नोकिया ने भी अपना यहाँ पे काम शुरू किया है। ये जो तीन देश है जो कि काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते थे वो अपने यहाँ पर असेंबलिंग शुरू की। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ही क्यों? तो एक तरफ तो आपने उत्पादन में प्रोत्साहन राशि आपने दी उनको, दूसरी तरफ यहाँ पे जो श्रम शक्ति है वो काफी सस्ती है, ये एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो यहाँ पर जिसको कहते हैं भारत के पक्ष में जाता है कि पहले हमारी एक बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारा जो पहले कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की लागत ज्यादा होती थी, इससे हमारे प्रतिस्पर्धा के ऊपर असर पड़ता था। तो अभी जब पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई या उसके पहले भी सड़कों के ऊपर बात हुई, चाहे रेल मार्ग की बात करें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इन सबका नतीजा ये हुआ है कि आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। तो आपके पास एक श्रम शक्ति सस्ता है, आपके लिए जो लागत है जो सामान बाजार से बाजार तक पहुंचाने या कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने वो लागत कम है। और तीसरी बात जो भी महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारी यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि बाहर के देशों से कंपनियों के लिए एक बड़ी मददगार साबित होती है सेकंड लेयर में। तो आपके पास लेबर है, उसके पास एक व्हाइट कॉलर जो हम लोग कहते हैं कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, बाहर के देशों के साथ बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, व्यापार पे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य आपके पक्ष में हैं, इसीलिए हमारे लिए उन देशों को जो अपने यहाँ सामान बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक और बात आप याद रखिए, उनके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। हम कहते हैं ना कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। तो अब उस 35 वर्ष से कम उम्र के लिए रोजगार के मौके की अगर हम बात कर रहे हैं, उनको अगर हम प्रशिक्षित कर देते हैं और बाहर के देश यहाँ पर आकर के पूंजी और तकनीक लगाते हैं तो आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा।
1: शिशिर जी, और एक चीज मैं जो आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी आई है और कैसे ये सेक्टर बढ़ता ही चला जा रहा है।
0: देखिए, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी चीज से हुआ तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी किसी भी देश में निवेश करती है तो वो दो तीन चीजें देखती है। एक वो ये देखती है कि क्या वहां पर मुझे सामान का उत्पादन करना मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, सस्ता है कि नहीं है। दूसरा वो ये देखती है कि वहां से अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में सामान पहुंचाएं तो उसकी हमारे लिए लागत क्या बनेगी। अगर हम वही सामान अपने आप बना करके बाहर भेजते हैं और भारत में ला करके तैयार करते हैं और फिर उसे दुनिया के दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसकी जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो आपके लिए किस तरीके से है। और तीसरी बात ये, राज्य सरकारों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करें। उनके लिए जमीन की सुविधा है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर मंजूरी है वो देने की बात होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक विदेशी कंपनी को लुभावित करती है। और अगर आप देखें, हम आप जहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक इलाका जिसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, वहां पर आप देखें तो मोबाइल हैंडसेट की जो असेंबलिंग यूनिट्स हैं, जिस स्तर पर उनका विस्तार हुआ है वो काबिले तारीफ है। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर आप बात करें, अलग अलग राज्यों में भी बात करें, वहां भी विस्तार हुआ है। तो ये सारे तथ्य जो है इन कंपनियों को एक मौका देते हैं, प्रोत्साहित करते कि आप आइए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रोत्साहन देने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी एक फायदे का सौदा है। उनके यहाँ अगर निवेश आता है, उनके यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, उसके अलावा कई तरह के अप्रत्यक्ष तौर पर जो गतिविधियां होती हैं उनको फायदा पहुंचता है। तो राज्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इन सब का मिला जुला ये हुआ कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर मैं मोबाइल हैंडसेट की बात करूँ, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई।
1: आपने जैसे कि मोबाइल हैंडसेट का जिक्र किया तो उसी पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आने वाले सालों में क्या डेवलपमेंट होगा उसका भी जिक्र किया, और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,
2: टाइमलाइंस ऑलरेडी दी कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग एंड वी हैव सेड दैट दिस स्कीम बेसिकली किक्स इन फ्रॉम 1st April ऑफ दिस ईयर, दिस फिस्कल ईयर FY 2026-27. So from 1st April 2026, the scheme becomes effective. So that way there is a continuity of the previous program, so that all the hard work which the sector has done so far also gets accounted for. The new Indian brand industry is working on it. There is a lot of discussion going on between various players in the entire ecosystem, whether it is the brand designers, the component designers, the design of the full phone, the design of the entire PVC, the PCB assembly. All those things are right now, that is work in progress, and as soon as something comes up, we'll definitely inform you.
1: आपसे मैं एक चीज और यहाँ बात करना चाहूंगी. भारत में होसूर और श्री पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में है, और बैंगलोर या बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, वहाँ मौजूद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अकेले ही 100,000 से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले नौकरियां दे रहे हैं.
0: मोबाइल हैंडसेट में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टेक्निकली आप कहिएगा कि वो रोबोटिक हो जाते हैं, वो उस तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर आपको मानव श्रम की जरूरत होती है, जहां पर पैकेजिंग करनी है, कुछ खास तरह के इक्विपमेंट लगाने हैं, ब्रांडिंग करनी है, उन सब चीजों में बड़े पैमाने पर आपको जरूरत होती है. तो जब इन तीन जगहों का जो आपने जिक्र किया दक्षिण भारत के, जहां पर काफी विस्तार हुआ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, खासतौर पर मैं तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पर काफी बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, जहां पर तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है, तो स्किल्ड मैन पावर आपके पास एक इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो रहा है. वहीं पे एक और इंडस्ट्री है जहां पर आपको उसी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ करीब करीब मिलते जुलते आपको लोगों की जरूरत हुई, तो वहां पर आपका विस्तार हुआ. एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी आप ध्यान रखिए कि आपने इन तीन जगहों का जिक्र किया जहां पे 100,000 से ज्यादा की नौकरियों की, मोबाइल असेंबलिंग में या मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में 1,200,000 नौकरियां जो है अब तक सृजित हुई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 70% महिलाएं हैं, जिसको कहते हैं ना कि हम जो आधी आबादी को बेहतरी देने की बात करते हैं, वो ये उद्योग काफी उसमें मदद कर रहा है.
1: शिशिर जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आज जो स्कीम के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग करी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके बारे में आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
3: अभी आप सुन रहे थे भारत से वैश्विक बाजार तक बढ़ते मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: सुर्खियों में

7:25 आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आपका स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। महफिल सच चुकी है सांझ ढले की, आइए जुड़ते हैं इस महफिल में आप और हम।

जी हाँ, जीवन तो चलने का नाम ही है और हम आप सब भी जलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन जब अपनी मंजिल तक पहुंचने के करीब होते हैं तब हम थोड़ा सा अधीर हो जाते हैं जल्दी और जल्दी पहुंचने की चक्कर में, और उस अधीरता में हम कभी कभी जो है अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड दे देते हैं, ओवर स्पीडिंग कर देते हैं, या रेड लाइट जंप कर देते हैं, या ज़ेबरा लाइन को क्रॉस करके उसके आगे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जब हम चलते हैं सड़क पे तो हमको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर चलना सड़क पे हमारा राइट है तो बहुत से और लोग भी हैं जिनको सड़क क्रॉस करनी होती है ज़ेबरा क्रॉसिंग से, पैदल यात्री, उनका भी राइट है, और बाकी जो आसपास और लोग चल रहे हैं उनका भी राइट है। तो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन अगर आप करेंगे तो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे, खुद भी और दूसरों को भी डालेंगे। इसलिए बेहतर है कि चलते रहिए और अपना काम करते रहिए, लेकिन काम के साथ साथ इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि हमें किसी भी सूरत में कोई नियम कायदा कानून नहीं तोड़ना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए।

0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

फिल्म कॉलेज गर्ल का ये गीत सुन रहे हैं आप किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत के साथ ही सांझ ढल की महफिल आज हम यहीं खत्म करेंगे। फिलहाल संजीव को दीजिएगा इजाजत, लेकिन सुनते रहिए FM गोल्ड 100.3।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंची। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में जमीन सीमित है, लेकिन हमारी सोच और परिकल्पना सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों में 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियां, 500 मीटर के दायरे में पारगमन अनुकूल विकास और पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही इसमें लैंड पूलिंग के जरिए नए नियोजित आवासीय क्षेत्रों को विकसित करने पर भी बल दिया गया। श्री सूद ने कहा कि इस नीति में जहां झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत पुनर्वास, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक, हरित क्षेत्रों के विस्तार और जीरो वेस्ट विकास जैसे प्रावधान भी हैं।
1: प्लान्ड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया को रीडेवलप करने की रास्ता मास्टर प्लान ने खोल दिया है। इन प्लान्ड एरियाज में उदाहरण के लिए DDA के फ्लैट बने हैं, 3000 स्क्वायर मीटर के लोग इकट्ठा आए तो उसको तोड़कर नए सिरे से

0: मानकों का उल्लंघन करती पाई गई, वहीं 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन की सहमति के बिना संचालित हो रही थीं। साथ ही 44 मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया, जबकि 33 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि प्रदूषण के स्रोत पर भी प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
1: हमने 500 स्क्वायर मीटर से बड़ी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइटें हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है डस्ट पोर्टल और लगा दिए हैं वहाँ पर AI एनेबल्ड कैमरास, जो कि वहाँ पर उड़ती हुई धूल मिट्टी को सेंसर कर पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में तुरंत आ जाएगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलने के कारण स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या अब तक 1777 तक पहुंच गई है। मौसमी और वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इन्फ्लुएंजा पर बारीकी से निगरानी करने को भी कहा गया। वहीं श्री सिंह ने बताया कि अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाओं और जरूरी मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अभियान के पहले चरण में लगभग 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। ट्रेन के साथ पावर स्प्रे टैंकर तैनात रहेंगे, जिससे जल भराव और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों तक दवा पहुंचाई जा सके। निगम के अनुसार अभियान अगले महीने तक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के विभिन्न रेलवे रूटों पर चलेगा। श्री वाही ने कहा कि बारिश के दौरान जल भराव से मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ती है, इसलिए शुरुआती स्तर पर ही उनके प्रजनन चक्र को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महापौर ने दिल्ली वासियों से भी घर और आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर तथा पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने की अपील की। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह के 4 आरोपियों को पंजाब और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे टेलीग्राम के जरिए बैंक खाते हासिल करके उन्हें कम्बोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में बैठे साइबर ठगी करने वालों को उपलब्ध कराते थे। इनमें से एक बैंक खाता कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज 17 शिकायतों से जुड़ा था। इन मामलों में करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के करोल बाग के प्यारे लाल रोड पर आज 2 मंजिला एक पुरानी इमारत के ढहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि हादसे में 2 घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के अनुसार इमारत जर्जर हालत में थी और उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को बिना मास्टर डिग्री के PhD करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थी सीधे PhD कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2026-27 सत्र के पहले बैच के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था विशेष रूप से लागू की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 4,400 MTS कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर आज उन्होंने निगम मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर श्री वाई ने कहा कि सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और समान वेतन का निर्णय इसी संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें उनके कार्य, दायित्व और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित तथा समान वेतन उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्ट

0: स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का प्रतीक है।
1: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है। पिछले कुछ सप्ताह में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपए प्रति किलो थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने वाले मार्ग पर मरम्मत और नवीकरणीय कार्य के कारण 31 अगस्त तक यातायात धीमा या बाधित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि मार्ग पर यातायात को नियंत्रित और सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली नगर निगम के राजभाषा विभाग की हिंदी प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई। इस दौरान प्रतियोगिताओं में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निबंध लेखन, टिप्पणी और आलेखन, सुलेख तथा हिंदी ज्ञान जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य निगम के कामकाज में हिंदी को सरल, सहज और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रविवार को नई दिल्ली में 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आयोग सभी हितधारकों के लिए एनसीएसके मिस्ड कॉल सुविधा नंबर जारी करेगा। इससे आयोग कॉल करने वालों से संपर्क कर सकेगा और उनकी शिकायतें, मुद्दों और आवेदनों को समयबद्ध तरीके से दर्ज कर सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एनटीए ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। एनटीए के उत्तर की चुनौती एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें जेईई मेंस, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों ने बेहद संघर्षपूर्ण क्वार्टर फाइनल में चीन की ही फैन और झांग शू को हराया। इस जीत के साथ ही भारत का पदक सुनिश्चित हो गया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहला भारतीय पदक होगा। वहीं पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग और वांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि घुसपैठियों को पकड़कर देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सहयोग नहीं किया। श्री शाह ने कहा कि अब भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में राज्य में कानून का शासन स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है।
1: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टलफन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. The government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. Briefing media in New Delhi, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving two foreign flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being.
2: Two ships which are foreign flagged, they have been hijacked. We are in touch with the authorities that are concerned in this, and we have 22 Indian nationals and all of them are reportedly safe, but we are looking into the matter, the welfare and safety of our seafarers and seafaring community, to which we attach very high importance.
3: On the visit of MEA Secretary Sri Priya Ranganathan to Palestine, the MEA spokesperson said that the Secretary also handed over consignment of life-saving medicines to the Palestinian government for the people of Palestine for their health needs. Union Home and Cooperatives Minister Amit Shah inaugurated a six-day awareness exhibition on the three new laws, BNS, at Kawakhali Ground in Siliguri today. On this occasion, Home Minister Amit Shah also inaugurated the newly constructed Bidhan Nagar Police Commissionerate building and a 20-bed de-addiction centre at Uttar Bengal Medical College and Hospital. The Home Minister, who was present as the chief guest, addressed a large number of college, university and law students and citizens and said that the three new laws, that is Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS, will further protect the citizens. He announced that the BNS has now been fully implemented in the state. He said that justice will be ensured within 3 years after the FIR is filed. He thanked Chief Minister Suvendu Adhikari for

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हुआ है 10:11, मधुरिमा की महफिल लेकर के हाजिर हूं मैं संजीव अग्निहोत्री।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म वो कौन थी से। साथियों, मधुरमा की महफिल में हम बात करते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों की। तो आज जो हमने राग लिया है वो है राग पहाड़ी। राग पहाड़ी भारतीय संगीत का एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय लोक धुन प्रधान राग है, जिसकी उत्पत्ति पहाड़ों की लोक धुनों से हुई है। ये मुख्य रूप से चंचल, रोमांटिक और मधुर भावों को व्यक्त करते हैं ये गीत, तथा इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है।

फिल्म ताजमहल से गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हम बात कर रहे हैं राग पहाड़ी की। तो राग पहाड़ी का जो थाट है ये बिलावल कहा जाता है, हालांकि कुछ विद्वान इसे कल्याण या खमाज थाट के अंतर्गत भी मानते हैं, पर सामान्यतः ये बिलावल ही माना जाता है। इसकी जातीय ऑर्डर संपूर्ण है। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। वादी स्वर पंचम पा है और संवादी स्वर षडज सा कहलाता है। और गायन समय हम आपको बता ही चुके हैं कि दिन या रात का कोई भी समय है, जो हमेशा ही आप इसको गा बजा सकते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सुन रहे हैं महफिल मधुरिमा की। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और अगले 15 मिनट तक आप रहेंगे मेरे साथ और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में और भारतीय खिलाड़ियों ने आज कहां कहां पर अपना सिक्का जमाया है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का किया। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनी। विश्व कप हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से, और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड में लॉजेन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर इस समय विश्व वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने, और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक उन्होंने पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की चौथे नंबर की जोड़ी जिया यी फैन और झांग शूशियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और ये मुकाबला 16-21, 21-15 और 21-13 से जीत लिया।
1: A fantastic performance from the two Indians and hugely appreciated by a gloriously partisan crowd.
2: Teresa Jolly in tears. Yeah. She hugs Pulela Gopichand and father and daughter embrace.
1: Oh, they've guaranteed themselves a medal. They've knocked out one of the top pairs in the event and they have given the home crowd something to really enjoy.
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आइए अब सीधा जुड़ते हैं अपने संवाददाता भानु प्रताप सिंह थे और जानते हैं उनसे और क्या कुछ रहा आज। भानु को हम

0: से पहले कि हम लाइन पे ले, हम आपको और बताते हैं कि 70 मिनट तक चले मुकाबले के बाद तिरसा और गायत्री ने जिया और झांग को पहली बार हराने पर कहा कि उनका ये सफ़र अभी रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा आज एक और बैडमिंटन के कोर्ट से एक अच्छी खबर हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो अच्छी खबर नहीं है। जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चोंग की जोड़ी से सीधे गेम में हार गई। अपने संवाददाता के पास चलते हैं, भानु के पास, और जानते हैं कि आज क्या कुछ रहा स्टेडियम के अंदर। भानु, भारतीय जोड़ी ने इस जीत के साथ पदक तो पक्का कर लिया है, लेकिन अब फाइनल में उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। आज के मैच को देखते हुए क्या संभावनाएं लगती हैं?
1: दीपवीन, आज के मैच को देख के संभावनाएं बहुत ज्यादा लगती हैं। जैसा जैसा आज पीसा और गायत्री गोपीचंद ने खेला, उनका उनका गेम पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण रहा। उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज से अपना गेम खेला और बहुत ही आत्मसंयम अपना बरकरार रखा गेम के दौरान, तो कल के मैच के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कल वे पहली वरीयता प्राप्त ली शेंगशू और टांग निन से सामना करेंगी। तो जैसा कि आज उन्होंने एक चाइनीज प्लेयर को पेयर को हराया है, तो कल भी वह एक चाइनीज प्लेयर के खिलाफ खेलने वाली है, तो आज उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत बरकरार रहेगा कल के मैच के लिए।
0: भानु, पहले गेम में देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे कि भारतीय जोड़ी में थोड़ा विश्वास कम है, आपसी समझदारी भी थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि शुरू में वो लगभग 4-0 से पीछे थी पहले गेम में। हालांकि पहला गेम उन्होंने हार गई, दूसरे गेम में भी वो पीछे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। आखिर के दोनों गेम से भारतीय जोड़ी के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है?
1: जी, उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज, जैसा कि मैंने बताया, दिखाया। उन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच ली अपने गेम की तरफ। उन्होंने हार नहीं मानी एंड तक। गौर की बात है कि जंग शू शियान और जिया इफान की जो जोड़ी थी, उसमें जिया इफान दो बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। 2020 के ओलंपिक्स में उन्होंने रजत पदक जीता था, वहीं उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो उनके खिलाफ खेलना कोई बहुत ही आसान बात नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपना आत्मसंयम बरकरार रखा और बहुत ही अच्छे से उस गेम को खेला। जब वो पहला गेम हार गई थी, तब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर दिखाई थी, लेकिन उन्होंने दूसरे गेम से अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा। जहां तीसा जॉली ने अटैक मोड अपनाया था, गायत्री गोपीचंद ने नेट संभाला और ओवरऑल उनका नियंत्रण बहुत अच्छा रहा पूरे गेम के दौरान।
0: भानु, स्टेडियम में भारत की इस जीत पर दर्शकों का उत्साह कैसा था?
1: दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया अपने प्लेयर्स को। दिन पर दिन जैसा कि हम देखते जा रहे थे कि प्लेयर्स की जैसे तादाद, जो भारतीय प्लेयर्स की तादाद कम हो रही थी अलग अलग डिसिप्लिन में, लेकिन जितने प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे उसके हिसाब से बहुत ही क्राउड जो था सपोर्ट में आया था। आज दोनों मैचेस के लिए क्राउड का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, और जैसा कि मैंने बताया, गायत्री गोपीचंद और रीसा जॉली के मैच में भी उनका सपोर्ट बरकरार रहा।
0: लेकिन इस बीच भानु, एक अच्छी खबर नहीं आई, जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गई। इस पे क्या राय है? हालांकि वो दोनों ही गेम में बहुत दबाव पे नजर आए और 21-18 और 21-9 से हार गए।
1: जी, उनका पहले जो लियांग वी केंग और वांग चांग के खिलाफ उनका पहले से ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। इस मैच से पहले उनका 9-4 का रिकॉर्ड था। चार मैच ही उन्होंने उनके खिलाफ जीते थे। और आज भी जैसा कि हमने देखा कि जो चाइनीज जोड़ी थी, उन्होंने अपना फ्लैट गेम बहुत ही अच्छा रखा। सात्विक साईराज जानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्लैट गेम के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, तो वही गेम उन्होंने उनके खिलाफ खेला और उसी से उन्होंने जीत हासिल करी। और इसके सामने वो सात्विक साईराज जानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी परेशानी में नजर आई। नवीन,
0: धन्यवाद भानु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए
1: धन्यवाद।
0: आइए वापस चलते हैं अब त्रिसा और गायत्री के गेम की तरफ। जिया और झांग को पहली बार हराने पर कहा कि उनका सफर अभी रुकने वाला नहीं है।
2: I think he was from the starting only he was telling that be in the present moment and very calm because that helped us to scoring the points and that really worked today that we were not greedy to just get the points. We were just be patient and waiting for the right time to just scoring the points. I think that really worked.
0: वैसे किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने और मैच जितवाने के लिए कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यही रोल हमें आज इस मैच में देखने को मिला, जब पुलेला गोपीचंद ने इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी को धैर्य रखने का मैसेज दिया और अंत में इस जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया। मैच के बाद त्रिसा ने बताया कि उनके कोच जो थे हर पॉइंट पर उन्हें धैर्य रखने को कह रहे थे।
2: Today was also a pretty good match, I think. Yes, it was a pretty tough match. We were down, trailing, and then even in the second set, it was very tricky. But then I think we told each other to stay calm, and I think that's what we're going to do tomorrow as well. We just want to get on court and give 100%.

0: person just enjoy.
1: ये थी बैडमिंटन से खबरें जो बहुत अच्छी खबर आ रखी है और कल सबकी नजर रहेगी महिला डबल्स पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरवीन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने पूल जी के अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं बात करते हैं अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के साथ कल होने वाले विश्व कप के दूसरे दौर के मुकाबले को करो या मरो का बताया है। कल बड़ा जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा भारतीय पुरुष टीम और नीदरलैंड के बीच में। इस बीच हरमनप्रीत ने कहा कि उनकी टीम को पूरे 60 मिनट अच्छी हॉकी खेलनी होगी।
2: जो हमने मिस्टेक्स की हैं और उस पर हमने काफी बात की है मीटिंग्स में, एंड स्पेशली विदाउट बॉल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पोजीशन वाइज, उसको हमने कैसे मेंटेन करना है और कैसे अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उन गलतियों को कवर कर सकते हैं हम, तो वो हमने एनालाइज किया है वीडियोज में। एक वही एरिया है कि जहां पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले मैचेस में वो सिली मिस्टेक्स आपको पनिश कर सकती हैं। हमारा वही है फोकस के डिफेंस में अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे पता है कि हमारी टीम चांसेस क्रिएट कर सकती हैं ओपोनेंट्स के सर्कल में जाके और एटलीस्ट पीसी और गोल ऑन शॉट और गोल कर सकती।
1: इस बीच हम आपको बता दें पूल डी के पहले दौर में वेल्स और पाकिस्तान को पराजित करने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गई थी, जिससे दूसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत के पास एक भी अंक शेष नहीं बचा है। इंग्लैंड इस जीत के साथ 3 अंक लेकर पूल डी के दूसरे दौर में पहुंच गई है, जबकि पूल ए में नीदरलैंड के पास भी 3 अंक है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नीदरलैंड और अर्जेंटीना को हराना होगा। और अब बात कुश्ती की। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गई हैं। काजल लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्लोवाकिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में काजल ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ब्यौरे के साथ मुकेश।
3: काजल की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला कुश्ती में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में हिस्सा लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चीन की झिंगरू सुन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम कर लिया।
4: काजल इज गोना डू इट ट्वाइस, सो गुड, शी हैज वन द टाइटल अगेन। काजल ऑफ इंडिया इन दिस अनस्टॉपेबल 2026 सीजन विद अनदर टाइटल, हर फिफ्थ ऑफ द ईयर, एंड दिस विल बी द मोस्ट स्वीट ऑफ ऑल।
3: फाइनल में काजल के लगातार दबाव बनाने के कारण सुन शुरू से ही बैकफुट पर रहीं। काजल ने इससे पहले 2024 में 69 किलोग्राम के वर्ग में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप और 2025 में 72 किलोग्राम में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। काजल ने 2025 में 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस वर्ष अपना वेट क्लास बदला और 76 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला किया। ये भारतीय रेसलर लगातार दूसरी बार अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वो अपने देश की दूसरी ऐसी रेसलर हैं जिन्होंने इस लेवल पर 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। पूरे टूर्नामेंट में काजल ने बिना कोई पॉइंट गंवाए खिताब अपने नाम किया। 2026 में ये उनका लगातार 5वां स्वर्ण पदक है। आज का दिन सिर्फ काजल के नाम ही नहीं था बल्कि भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी रजत पदक अपने नाम किए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अगली खबर है अब जेवलिन थ्रो से। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के स्टेट ओलंपिक डे ला पोंटिस में लॉजिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा। और ब्यौरे के साथ निखिल।
5: लॉजिन डायमंड लीग बेहद रोमांचक होगी। इस इवेंट में कई ओलंपिक, वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों की जैवलिन स्पर्धा में दक्षिण एशिया के 2 सबसे बड़े स्टार, भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रोमेश थरंगा पाथिरगे एक बार फिर आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा लॉजिन डायमंड लीग 2026 में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लॉजिन में वे 4थी बार उतरेंगे। ये लीग चोपड़ा का 2026 एथलेटिक सीजन का 3रा प्रतियोगी इवेंट है। श्रीलंका के पाथिरगे ने जून में रोम में 92.62 मीटर साथ ब्रसल्स में होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं पूर्व ओलंपिक और डायमंड लीग चैंपियन नीरज चोपड़ा स्टैंडिंग में पीछे हैं। उन्हें लॉजन में आज एक बड़े करिश्माई थ्रो की जरूरत है। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैसे ही एक मजबूत फील्ड में यूरोपियन स्टार्स के साथ मुकाबला करेंगे। पिछले 4 ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले 5 जेवलिन सुपरस्टार्स 21 अगस्त को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा और पाथिरगे के अलावा ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के फालकॉट और ग्रेनाडा के पीटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस बीच भारत 22 और 23 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें हिस्सा लेंगी। इस बैठक में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख एक साथ आएंगे ताकि युवा मामलों और खेलों में सहयोग को मजबूत किया जा सके। ये बैठक युवाओं के विकास और सशक्तिकरण में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी और इसमें शिक्षा, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्याण और सतत विकास पर चर्चा होगी। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और ब्रिक्स युवा सम्मेलन से सामने आई खास सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के सहयोग से भविष्य के क्षेत्रों में पहचान की जाएगी। और खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और उनके बयान शामिल होंगे और इसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और एक पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बन गई हैं। विश्व कप हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के लॉसिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मेरी सहयोगी निशा साहू और ज्योत्सना के साथ मुझे आज का स्पोर्ट्स स्कैन समाप्त करने की दें इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने

0: इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड बौद्धिक संपदा और डिजाइन के

0: विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी

0: भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha, avishwas ka vatavaran vishwa ke liye anek nayi chunautiyan lekar ke aa raha. Lekin aise samay mein bhi duniya Bharat ko growth aur hope ke bright spot ke roop mein dekh rahi hai. Bharat ne pichle 10-12 saal mein apni 25 crore abadi ko garibi se bahar nikala hai.
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो. पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला. देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए. साथियों, पीएम

0: much.
1: Thank you. Thank you.
2: You were listening to a discussion on Startup India, Empowering Enterprises and Driving Innovation. The participants were Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Defense Analyst, and Prasoon Sharma, Entrepreneur and Public Policy Expert. Moderator was Manas Pratim Bhuyan, Journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Current Affairs.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वो बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
5: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
4: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा

के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: strengthened. Electronics manufacturing became the third largest category that will also get sustained now with all these initiatives.
1: Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The minister informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty or other warning signs to seek medical advice promptly. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Bhavtarini. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों के सस्त्रीकरण की चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्ज्वल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए आर्थिक हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पिछली सरकारों के उत्पादन से दंड मॉडल से निकलकर उत्पादन से प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मॉडल की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों का लाइसेंस राज बेरोजगारी बढ़ाने का माध्यम बना, जबकि उनकी सरकार की PLI योजना नए अवसर पैदा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है।
3: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हमेशा साझा भविष्य की भावना में विश्वास रहा है। इसी कारण भारत की G20 अध्यक्षता का मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट हुआ है कि हर देश का भविष्य दूसरे देशों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
2: भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

0: दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स आईटीसी बैठक से इतर हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन, दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: बलूच नेशनल मूवमेंट ने नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित कर पाकिस्तान वायुसेना द्वारा बलूचिस्तान प्रांत के सुराब जिले में हाल में किए गए हवाई हमलों की निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की खबर है। बलूच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ता ने एम्स्टर्डम में रैली को संबोधित करते हुए सुराब हमलों को गंभीर मानवीय त्रासदी बताया और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से सुराब में हुई बमबारी का तत्काल संज्ञान लेने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय की कटघरे में लाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका की किसी भी नई धमकी का कड़ा और निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की सेनाएं थल, जल, वायु, वायु रक्षा और साइबर क्षेत्र में पूरी तरह तैयार है। ये चेतावनी अमेरिका की ओर से ईरान पर नए और कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने की योजना के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ऐसी नीतियों से ईरान में अमेरिका के प्रति नाराजगी और शत्रुता बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का समर्थन करने वाले देशों को आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज ढाका के बंगभवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसर कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। श्री फखरुल इस्लाम आलमगीर कल जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय गठबंधन द्वारा समर्थित ओली अहमद को हराकर राष्ट्रपति चुने गए। तिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की चौथे नंबर की जोड़ी जियाई फैन और झांग शुजियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की और ये मुकाबला 16-21, 21-15, 21-13 से जीत लिया। इस जीत ने 2011 के बाद से महिला डबल्स में भारत का पहला मेडल भी पक्का कर दिया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने

0: 5 मेडल जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों का सस्त्रीकरण चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्जवल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद VWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. India and Brazil sign MOU to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Baloch group condemns Pakistani airstrikes in Balochistan, calls for international probe. Iran warns of strong response to any new threats from the United States. And in badminton, Indian duo of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand advanced to women's doubles semi-finals of BWF World Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. He said his government is not just changing regulations, it is changing entire policy of regulations.
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies or ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. In a social media post, the Department of Telecommunications said the agreement will advance digital innovation, strengthen digital infrastructure and foster cooperation in emerging technologies. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya M. Sindhya and Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, Brazil. Union Minister Sindhya said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cyber security, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. More from our correspondent. The MOU provides a framework for structured cooperation in telecommunications, digital infrastructure and emerging technologies. The agreement follows discussions between the two ministers earlier this year on strengthening India-Brazil cooperation in telecom and digital infrastructure.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम दोस्तों आप तक पहुँचती है इन प्यारे अल्फाजों के साथ कि सलाम मेरा उनको जिन्होंने याद रखा मुझे, उनका भी बहुत शुक्रिया जो भूल गए मुझे। हर जबान हर सलीके को बड़ी नरमी से अपनी दुआ सलाम में शामिल करते चली जनाब, यही जिंदगी का सलीका है और यही जिंदगी का शायद फलसफा भी। यही अंदाज आज हर श्रृंगार के आगाज का भी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हसरत जयपुरी साहब का लिखा एक गीत जो आपकी तरफ आ रहा है, इस गीत को आवाज दी है रफी साहब ने, फिल्म है बॉयफ्रेंड और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए आगाज करते हैं आज के हर श्रृंगार का कुछ इस प्यारे गीत के साथ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये प्यारा सुरमई सलाम आप तक पहुंचता है। कहते हैं प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, मेरे इस जिंदगी के सफर में काफी है तू। बस कुछ ऐसे ही हर श्रृंगार का सदाबहार अंदाज जीवन के सफर को सुरमई बनाने में काफी है। आइए अगला गीत सुनते हैं साथी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाज में इस गीत को रचा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है नौशाद जी ने। तो आइए सुनते हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

91.9 MHz पर दोस्तों आप सुन रहे हैं हर्ष सिंगार। और कहते हैं कि समय के साथ साथ जब संगीत गीत का अंदाज बदलता है तो कई बार दिलों को छू जाता है। 90 के दशक का ये अंदाज वाकई में हमारे दिलों को छूता है। समीर साहब का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया था जतिन ललित जी ने। दोस्तों वास्तव फिल्म का ये गीत बड़ा ही प्यारा तो है ही, साथ ही मेरे अंदाज से शायद आपके दिल को भी छू गया होगा। कहते हैं आंखों से लिखी दास्तानें यूं तो बड़ी गहरी होती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। वो कहते हैं ना, दुआओं में असर बाकी ना आहों में असर बाकी, है कुछ ले दे के घर बाकी तो एक चश्मे तर बाकी। ये भीगी पलकों की दास्तानें बड़ी गहरी होती हैं दोस्त, इन्हें समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। आइए सुनते हैं अखियों पर गुनगुनाई ये दास्तान, जो कि है आपकी कसम फिल्म से किशोर जी और लता जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हैं आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और बड़ा ही प्यारा ये अखियों का अंदाज जो भी आपने सुना। तो यह श्रोताओं हर सिंगार को समेटने की आपसे यहीं पर लूंगी इजाजत, क्योंकि समय और जो घड़ी हमें इशारा कर रही है ना कि आज के हर सिंगार को समेटूं यहीं, तो आपसे इसकी लेती हूं इजाजत। लेकिन आपको बता दूं कि 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 11:10 पर सुनना ना भूलें मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट। और जी हाँ, आपको बता दूं 11:40 पर गीत मेरे मन में लेकर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ूंगी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं दिल के बेहद करीब वो सदाबहार गीत जिन्हें लेकर आए हैं हम आज हर श्रृंगार में। सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है

आपको बता दूं, आरजू फिल्म से ये गीत अभी आप सुनेंगे और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने. आवाज लता जी की मखमली प्यारी आवाज. तो आइए सुनते हैं ये गीत आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,541, निफ्टी एड्स 20 पॉइंट्स। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज बाय 9.9 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द वीक एंडिंग अगस्त 14 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. And despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% की गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावर ग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%, housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange

0: was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया, इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है, जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित दौर से काम कर रहे हैं। जो दो तीन जो ट्रेंड जो है वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चयता, दूसरी कारण ये है कि जो बाजार में विश्व के बाजार में जो जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ मनी में जो जो चढ़ाव हो रहा है, जो जो दाम बढ़ रहे हैं वो है। और तीसरा जो है आपका जो क्रूड ऑयल का जो दाम जो है उसका आउटलुक, अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, पर द लेटेस्ट जो जो ट्रम्प साहब का जो ऐलान है कि वो एक इकोनॉमिक वॉर ईरान के ऊपर छेड़ेंगे, उससे क्रूड ऑयल मार्केट में एक उसका एक प्रभाव दिख रहा है। और ये तीनों चीज जो वैश्विक अनिश्चयता और जो बॉन्ड यील्ड में चढ़ाव और तीसरा आपका जो क्रूड ऑयल के दाम और यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, एक न्यू डीडीए फॉर द इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, उससे काफ़ी मार्केट में और उसी का एक थोड़ा बहुत प्रतिफलन हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। और जो कल जो मार्केट में जो हमने जो करीबन 0.8 और 0.9% वृद्धि देखी हमने सेंसेक्स में कल, उसका कारण भी ये था कि उनके पिछले 7 दिनों में काफ़ी नीचे था, वो जरा रिकवरी होकर स्टेबिलाइज किया है। पर अगर आप पूरी तरह से अगर 6 महीने की देखें, अगर वॉर से देखें, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो स्टॉक मार्केट में है वो उसी जगह अटकी हुई है जहाँ वो उस समय थी।
0: एकेबी, डू यू थिंक दैट ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ आइसोलेटिंग ईरान, द इकोनॉमिक डी डे एज ही कॉल्स इट, इज ट्रिगरिंग हाउ द ग्लोबल मार्केट्स आर बिहेविंग इंक्लूडिंग द सेंसेक्स एंड निफ्टी राइट नाउ? बिकॉज फंडामेंटली The first quarterly results for the new financial year has been quite positive on the net profit side, on the revenue side. Even margins for companies have improved. Do you think, even from the point of view of the PMI index for services and manufacturing are well above 50, even if it's below month on month, do you think that it's because of this trigger of Trump that is creating that kind of sentiment in the market where FIIs and FPIs have been net sellers, but DIIs are not quite buying into the market as they were earlier?
2: There are two things that we must bear in mind in this context. Number one is that the disconnect between the macro economy, even the sectoral economy in India, and how the stock market is behaving, that disconnect is now complete. Today, if you are looking at the macro economy, looking at the sectoral economy, you see a story of relative calm, growth. As you also pointed out, the corporate sector sales as well as profit has been very good in Q1. The economy is expected to rise not less than 7% for the full year. This is in spite of the early war. So economy is doing well, but the markets remain where they are. So the disconnect between the macro economy and the market is complete in today's context. Why is this disconnect complete? That is because that the Indian market has not gone down to the extent that it becomes cheap for the foreign investors to come in large hordes. And that is because what we have seen in the Indian market is that a large number

0: the threat of economic D-Day on Iran by the U.S. President. How concerned are we about global inflation here?
1: It is a cause for concern. If the situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. And domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war, reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that. If this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
2: और आगे बढ़ते हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपए प्रति किलोग्राम थी. एकेबी हमने अभी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है. इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी. इस पर आपके क्या विचार हैं?
1: देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है. अगले हफ्ते राखी है. राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीजन का आना होता है. मैं समझता हूँ कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है.
2: देखिए भी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, आपका पसंदीदा गीत मेरे मन मीत लेकर एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूं मैं रोहिणी। कहते हैं मन की बातें गीतों के अंदाज में बयां हों तो दिल को और भी गहराई से छू जाती हैं। आज का गीत मेरे मन मीत कुछ इसी अंदाज में सजा है और कुछ यही अंदाज बयां कर रहा है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि नजरों की बातें नजरों से कहां होती हैं, ये तो दिल से दिल की राह होती है। इन राहों पर चलते चलते 100.1 मेगाहर्ट्ज पर खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, आइए आज के मनमीत गीत मेरे मनमीत को बनाते हैं कुछ बहुत खास और चुरा लेते हैं इन गीतों के अंदाज से आपका भी दिल।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मनमीत का, इस गीत के साथ जो कि रचा बसा है आशा जी और रफी जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया था आरजी बर्मन जी ने। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रिय श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये सदाबहार गीत यूं ही आपका मन चुराने आए हैं और चुराते रहेंगे। बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जी हाँ, कुछ दीवानगियां इस अंदाज में भी बयां होती हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होता है, हर हाल में आगे बढ़ना और हर मुश्किल से टकराना होता है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जी हाँ, बेहद सदाबहार, बेहद प्यारे गीतों का अंदाज आप सुन रहे हैं। ये अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आप सुनेंगे। आशा जी और रफी जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत दिया है आटी पामन जी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: चली है चोरी।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दोस्तों गीत मेरे मन में दिल। लेकिन फिलहाल आज इसे यहीं समेटती हूं और आपको छोड़े जाती हूं एक बेहद प्यारे से गीत के साथ जो कि है रफी साहब की आवाज में। फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। तो शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक अच्छी सी नींद लीजिए। लेकिन फिलहाल सुनते जाइए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल को।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यीफेन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज निशिगंधा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा और आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करते हैं जिन पर बात करना हम भूल जाते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छा करना चाहते हैं।

खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं और साथ ही हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। पर अच्छा हम कैसे दिख सकते हैं, ये जो पैमाना है ना, ये हर इंसान अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। कुछ लोग खुद को संवार कर अच्छा दिखना चाहते हैं, कुछ अपने कर्मों को इतना अच्छा करते हैं कि उससे उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में एक ग्रेस आ जाता है जिसके कारण वो अच्छा दिखते हैं। चेहरे की चमक जो होती है ना, वो कुछ सालों की मेहमान होती है, मगर आपके बिहेवियर की, आपके व्यवहार की खूबसूरती उम्र के साथ बढ़ती है। किस नरमी से बात करना है, कैसे बात करना है, ये भी आपके व्यक्तित्व की एक खूबसूरती होती है। किसी की परेशानी समझ लेना भी एक कला है। और कहते हैं ना कि ऐसा भी देखा गया है कि हर खूबसूरत इंसान आकर्षक नहीं होता, मगर एक अच्छा व्यवहार जो है, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति आकर्षक भी होता है और वो याद भी रहता है। इसलिए जब भी खुद को देखना हो ना, तो कभी भी सिर्फ आईने में खुद को मत देखिए, यह भी देखिए कि आपके कारण कितने मन हल्के हुए, कितने लोगों के अंदर आपसे मिलने की दोबारा की चाहत जो है वो पैदा हुई, कितनी आंखों में आपने भरोसा जगाया, कितने रिश्तों को आपने प्रेम से बचाए रखा। और रात जब आपको मौका दे तो खुद से आप ये सवाल जरूर करिए, मैं सुंदर दिखती हूँ कि नहीं, ये सवाल नहीं, सुंदर बनती कितनी हूँ ये भी सवाल नहीं, ये कि मैंने कितने मन को सुंदर बना दिया है, ये सवाल खुद से करिए। चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है। अगला गीत फिल्म वक्त से, आवाज है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब एक ऐसी बात जिस समस्या से हम सभी ग्रस्त हैं। बात जब आती है संबंधों को चुनने की, दोस्त चुनने की, साथी चुनने की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि आपका एक बहुत अच्छा, एक सच्चा साथी कौन है, एक अच्छा दोस्त कौन है, तो शायद अगर आप ईमानदार उत्तर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो ईमानदार उत्तर नहीं होगा। आप सोचने लगेंगे कि सच्चे साथी की परिभाषा क्या होती है, सच्चे दोस्त की परिभाषा क्या होती है। सच्चा साथी वो नहीं होता जो हर पल आपके आसपास घूमता रहे या आपके आसपास रहे। सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो भी होता है जो दूर होकर भी आपके पास होने का एहसास दिलाए, जिसके सामने आपको किसी भी तरह का कोई अभिनय न करना पड़े। आप जो हैं बिल्कुल उस तरह से उसके सामने जाकर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो है जिसके सामने अगर आपके व्यक्तित्व का कोई सबसे कमजोर पहलू है वो बताने में किसी तरह का कोई डर ना हो, और साथ ही सफलता साझा करने में आपको कोई हिचक भी ना हो। जहां प्रेम के साथ मित्रता हो, मित्रता के साथ प्रेम हो, ऐसा रिश्ता जो है ना वो बहुत शोर शराबा नहीं करता। बस धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता दोनों के जीवन को सुंदर बनाता चला जाता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है साथ होने से भी, वो है सहज होना, जिसके साथ होकर आप सहज महसूस कर सकें, सरल महसूस कर सकें, वही रिश्ता आपका सबसे सच्चा रिश्ता होता है, सबसे सच्चा दोस्त होता है। और प्रेम में सबसे दुर्लभ बात जो होती है ना, वो आकर्षण नहीं होती है, सबसे दुर्लभ बात है भरोसे का होना। और भरोसा मिले तो साधारण से साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी खास हो जाता है। कहते हैं कि साथ ऐसा हो कि दूरी भी पास लगती रहे, साथ ऐसा हो कि दूरी भी पास लगती रहे, दिल की दुनिया में कोई ना कोई आस जगती रहे, दिल की दुनिया में कोई ना कोई आस जगती रहे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं, जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के

0: मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा का अगला गीत फिल्म बॉबी से, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। आइए सुनते हैं ये गीत।

कितनी सुंदर बात है ना कि हमें कभी भी किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के जीवन में सफलता जो है वो जल्दी मिलती है और किसी की देर से, मगर देर से मिली सफलता का अर्थ जो है वो हार नहीं है। आपको किसी और के जैसा बनने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस अपने बेहतर रूप तक पहुंच जाना है। किसी भी तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने जीवन को दूसरों के दिखते हुए जीवन के अनुसार कभी भी तौलना समझदारी नहीं कही जा सकती। आज हमने अपने कल से एक कदम अगर आगे बढ़ाया तो हम थोड़ा आगे चले और वो हमारी अपनी जीत है। तो इसलिए कहते हैं कि रात को जब भी हम सोने जाएं ना, तो सोने से पहले तीन अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को जरूर याद करें। मन को तुलना से नहीं, कृतज्ञता के साथ में सोने दीजिए। दूसरों की राह देखकर खुद को कम न आंक, दूसरों की राह देखकर खुद को कम न आंक। तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है, तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है। अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म लव स्टोरी से।

एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि गिला रखा तो दिल जगह घेरता गया, गिला रखा तो दिल में जगह घेरता गया, माफ किया तो रास्ता मेरा साफ हो गया। जनाब, ये जो माफ करने की बात होती है ना, ये अक्सर हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं कि जब भी किसी ने गलती की तो एक बात सुनाई देती है, माफ करो और आगे बढ़ो। पर ये माफ करना हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता। अगर हमने माफ करने को अपनी आदत में शामिल किया तो ये हमेशा दूसरों के लिए नहीं है, ये कभी कभी अपने मन को मुक्त करने के लिए भी माफ करना देखा जाता है। जिसने दुख दिया उसके व्यवहार को सही नहीं कह सकते। अगर आपने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका व्यवहार सही था, बस उसके कारण अपने भीतर की कड़वाहट को हमने जाने दिया। कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं और कुछ लोग बहुत सारी सीख लेकर के आते हैं। दोनों की ही भूमिका बिल्कुल अलग होती है। और साथ ही एक बात और भी यहां पर होती है कि ये जो दो लोग आते हैं जीवन में, इनके साथ एक तीसरे तरह की भी लोग आते हैं, जहां जाकर हम कहते हैं कि हर रिश्ता उम्र भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें खुद की कीमत समझाने के लिए भी हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए बीते हुए लोगों को याद करते समय अपने वर्तमान के साथ अन्याय मत करिए। अपने जीवन को जीने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, और जो इसे याद करके आगे बढ़ते हैं ना, सफलता उनके ही कदम को चूमती है। इसलिए कुछ भी करिए, खुद को कभी भूलने मत दीजिए। रात आती है हमें याद दिलाने के लिए कि हमें खुद के साथ कितना वक्त खुद के लिए बिताना है। इसलिए माफ करना आदत में जरूर हो, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन पर इस बोझ के साथ रहें कि हमने माफ करके कहीं को गलती तो नहीं कर दी। जनाब, माफ करना इसलिए कि हम अपने मन के अंदर किसी कड़वाहट को जगह नहीं दे सकते। माफ करना बोझ बनकर हमारे दिल पर कभी घर नहीं बना सकता। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है टूटे खिलौने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव

0: रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह। फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो, फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की आज शुरुआत करते हैं जूली फिल्म के इस गीत के साथ और फिर करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें।

आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे। और अगला गीत फिल्म जानवर से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, आइए सुनते हैं ये गीत।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। वक्त नदियों को उछाले उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम गुजरना है गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है सागर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने का अगला गीत फिल्म दोस्ती से आप सभी के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

ना कोई गुलाब रखे, मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, बस नाम तेरा कोई और पाक जवाब रखे। मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे। जब जब समय की धूप हमारे करीब आए, जब जब समय की धूप हमारे करीब आए, विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे, विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे। मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है आएगा आने वाला।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में हम कर रहे हैं आपके साथ बहुत सारी बातें।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हा

एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं। चांद ने सिर हिलाया, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती।

0: अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीन देवियां, आवाज है किशोर कुमार की। साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। फिलहाल छोड़े जाते हैं आपको जिस गीत के साथ। फिल्म का नाम है तीन देवियां, हम आपको बता चुके हैं, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ ज़्यादा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथीराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा

नमस्कार। और आज सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है गोलमाल।

रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी, और तन्हाई ने दोनों के बीच बैठकर अनकहे भावों की लकीरें खींच दी। कहीं कोई शब्द नहीं था, पर सब कुछ स्पष्ट था, जैसे कोई पुराना रिश्ता बिना आवाज के फिर से जी उठा हो, और समय बस किनारे बैठा देखता रह गया कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती, कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती। रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी।

बात अगर प्रेम की करें तो प्रेम कोई उच्चारण नहीं, एक दीर्घ श्वास है जो भीतर उतरकर समय को भी विराम देता है। जीवन की धूल में जब पांव थकने लगते हैं, वही प्रेम है जो थाम कर रास्ता नया देता है। यह कोई उत्सव नहीं जो सजाकर जी लिया जाए, यह तो वह ताप है जिसमें मन स्वयं को गढ़ता है, कभी आंसू की तरह, कभी अनकही हंसी की तरह। यह हर रूप में आकर हमें थोड़ा और मनुष्य करता है। जीवन की परतों में छिपा एक मौन सा स्पंदन, प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयति। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जीवन ने जो प्रश्नों की लंबी पंक्तियां लिखी, प्रेम ने उत्तर बनकर हर अक्षर को सहलाया। कभी छांव की तरह, कभी अनजानी धूप सा, उसने हर टूटन में भी एक अर्थ रचाया। यह संबंधों की परिधि में बंधता नहीं कभी, यह तो खुला आकाश है जिसमें सब समा जाता है। जहां तर्क थक कर बैठ जाते हैं रास्तों के किनारे, वहीं प्रेम चुपचाप चलकर भी मंजिल बना जाता है। जीवन की कठोर धुनों के बीच प्रेम ही वह स्वर है जो गीत रचता जाता है, जो गीत रचता जाता है।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है मासूम, आवाज है आरती मुखर्जी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी री शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृहनगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके माटला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन और महक उठती है मन की मौलश्री। सादिश प्लव 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है

3:12:03 हमराही प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना दोस्ती इतनी नजदीक आ जाती है कि कब वो प्यार में बदल जाती है हमें खुद भी पता नहीं चलता। उसका एहसास हमें तब होता है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। फिर हमें समझ में आता है कि अरे हमारे दिल को तो उसकी आदत पड़ गई है, अब उसे तलाशा कहाँ जाए। कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही अपना अंजाम लिखवा कर आते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते, और पहचान भी लेते हैं तो उसे वो जगह नहीं दे पाते जितनी जगह वो डिजर्व करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आपको पता है इश्क में ऐसा ही होता है, दुनिया की सारी रस्में टूट जाती हैं, सारी कस्में टूट जाती हैं, साथ रहता है तो बस दो लोगों का साथ रहता है, एक पूरी दुनिया होती है दो लोगों के साथ में, जैसे अभी आपका और हमारा साथ है, इस साथ में भी कहीं ना कहीं एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

अगर दिल की बात को कहना इस गाने की तरह आसान होता तो ये ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन जिसे हमें अपने दिल की बात बतानी है, जिसके लिए हमने सपने संजोए हैं, उससे ये बात कहना कितना मुश्किल होता है। जब भी ये बात कहने की बात आती है कि हम आपको चाहते हैं, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तब ऐसा लगता है कि इस संसार के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषा है, वो गायब हो गई है या ख़त्म हो गई है। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है कि इस गाने की तरह हिम्मत करके, थोड़ी सी साथ, थोड़ा सा साहस करके, हिम्मत जुटा के कह दिया जाए तो शायद ज़िंदगी की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। अगला गीत आप ही के लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

हर लफ्ज़ के तमाम मुआनी में हम भी थे, हर लफ्ज़ के तमाम मुआनी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम नहीं हैं, पुरानी में हम भी थे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 101 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 3:45 और 40 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

चोरी चोरी से? ना ना, हम तो पूरे ऐलान के साथ आपके साथ हैं, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता ही ऐसा है जहां हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत आप ही के लिए।

अभी जब ये गाना मैं सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सपने बहुत लंबे इंतज़ार के बाद पूरे होते हैं, तो उन सपनों के पूरे होने की जो खुशी होती है उसे बयां करना बहुत मुश्किल होता है। उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, चाहे वो सालों के इंतज़ार के बाद हमने अपने पसंद की कोई गाड़ी ली हो, कोई घर लिया हो, हमें अपने पसंद की कोई जॉब मिली हो, या फिर वो इंसान हमने पाया हो जिसकी हम बहुत दिनों से मुराद कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि काश ये इंसान हमें मिल जाए। और वो इंसान जब हमें मिलता है, वो प्यार हमें मिलता है, तो आसपास की जो पूरी दुनिया होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है। और ये इस दुनिया में हमारा यकीन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर आप प्यार में हैं तो ये गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

हमराही में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 4 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठक की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। अमेरिका के अलास्का में घने कोहरे के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और 6 यात्री शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने तीसरा स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, the Prime Minister said the International Monetary Fund forecast that India will remain the world's fastest growing major economy. He said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and that reforms are a commitment of his government. Mr. Modi said, India has moved away from a production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was the policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they would beg from the government for even basic needs. Talking about the seven powers representing seven key streams, which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that these seven sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus.
1: 15 August ko, maine Lal Kile se Sapta Dhara ki सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है.
2: The Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, and adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal yesterday after inaugurating a six-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sanhita at Kavakhali ground. Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat emphasized the need for more effective use of artificial intelligence in the tourism sector. Speaking to the media yesterday in Jaipur after attending the BRICS Tourism Ministers meeting, Mr. Shekhawat noted that India has seen a threefold increase in tourist numbers over the last 10 years. Meanwhile, India will host the BRICS Youth Ministers meeting today and the BRICS Sports Ministers meeting tomorrow in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair both the meetings, with Minister of State Raksha Khadse also attending. The Maharashtra government and Germany's Hesse state have signed a memorandum of understanding to strengthen cooperation in investment, innovation, employment and skill development. The agreement was signed in Mumbai by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Hesse President Boris Rhein. It covers industry, IT, skilled workforce and cross-border mobility, with opportunities in pharmaceuticals, healthcare, automobiles, engineering, AI and the digital economy. Chief Minister Fadnavis said Hesse could be Maharashtra's gateway to Germany and European markets, while Maharashtra could serve as Hesse's gateway to India and the Indo-Pacific. In Ukraine, 15 people were killed and 130 injured after Russian drones struck a shopping mall in Kryvyi Rih, authorities said. Kryvyi Rih is the hometown of President Volodymyr Zelensky. The local administration said 23 children were among the injured and warned that the death toll could rise. India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rains in East Madhya Pradesh today. Heavy rain is also expected across Assam, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till Monday. Similar conditions are likely in Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Odisha, Uttarakhand and parts of the Himalayan region today. The IMD has also forecast squally weather with winds gusting up to 60 km per hour along the North Andhra Pradesh coast and adjoining parts of the Bay of Bengal. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:11 और 7 सेकंड। अरुणिमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अरुणिमा एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने कुछ गानों के साथ, अपनी कुछ बातों के साथ। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

जिंदगी की असली सच्चाई तो यही है कि हार के बाद ही जीत मिलती है। अब जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन इन मुश्किलों में हमें बहुत हिम्मत रखने की, बहुत हौसला बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया तो शायद हम जिंदगी हार जाएंगे। लेकिन जब मुश्किल दौर हो तो अपने आप से प्यार थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने ऊपर बीत रहे असफलताओं को, संघर्ष को जानते हैं। अब वक्त से बड़ा मित और कोई भी नहीं होता, तो अपने साथ हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके संघर्ष सिर्फ आपके हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

इस गाने की सबसे खूबसूरत लाइन पता है मुझे कौन सी लगती है? वो वाली जब रानी मुखर्जी कहती है कि चांद का टीका लगा के, मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना बिना इजी नहीं. मतलब गुलजार साहब की लेखनी ही ऐसा लिख सकती है कि कंगाली के दिनों में जिंदगी को चुनौती देने की जो कोशिश है वो सच में जिंदगी को फिर से एक गहरी सोच के साथ, एक गहरे कमबैक के साथ साबित करने पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है. और जिंदगी का रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए. जब आपके दिन सही नहीं हैं या जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हो, तब भी जो जोश है वो इस गाने की तरह ही होना चाहिए. क्या आपने कभी जिंदगी के अंदर की जो तेज धड़कन है उसको महसूस किया है? अगर किया है तो फिर आपसे बड़ा विजेता तो कोई और नहीं है. अगर जिंदगी आगे बढ़ने की या अपनी मंजिल को पाने की सीटी बजा रही है तो फिर आपको आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अगला गीत आप के लिए.

वाकई जब दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर कोई भी चुनौती हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए उस छोटी सी चिड़िया का जो सुबह सुबह जल्दी बिना किसी अलार्म के उठती है, और तुलना कीजिए अपने आप से कि एक छोटी सी चिड़िया जब उठ सकती है, जो परिंदे उठ सकते हैं, तो फिर हम तो वो हैं जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए हर रोज़। हम हर रोज़ कोशिश करना भूल जाते हैं। अगर आज आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ज़िंदगी से आपको कुछ और उम्मीदें हैं जो शायद ज़िंदगी से बड़ा सोचते हैं कि उन्हें वो मिले, और आज आपका वक्त वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी कोशिश को कभी नहीं रोकना, क्योंकि ज़िंदगी स्वर्ण अक्षरों में एक ना एक दिन लिखी जरूर जाएगी, क्योंकि ईश्वर हर किसी को उसके हिस्से का आसमान देता ज़रूर है, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। अगला गीत अभी के लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:47 और 15 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ गानों के साथ। तो ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है या आगे कैसे बढ़ें, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है कि जिंदगी में ये करना है वो करना है, बस एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ाने से ये होगा कि आपको मंजिल भले ही नजर ना आए लेकिन रास्ते साफ जरूर दिखाई देने लगेंगे।

जाने के लिए है पल।

वाकई जिंदगी हंसने गाने के लिए है और इसे ऐसे ही बीतना चाहिए। अरुणिमा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 5:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल

0: विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। काजल इससे पहले 2024 में अंडर-17 विश्व चैंपियन और 2025 में अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said, India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: 15 August ko maine Lal Kile se Sapta Dhara ki Sapta Shaktiyon ki baat ki hai. Aur isliye Bharat aaj policy level par next generation reforms kar raha hai taki hamara future surakshit ho. Governance par reforms kar raha hai. Ease of living ke liye reforms kar raha hai.
1: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier the approach to regulations was prohibited unless permitted. He said the government is transforming this approach and moving towards permitted unless prohibited. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth. The Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding the demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal yesterday after inaugurating a 6-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sahita at Kavakhali ground. Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The Health and Family Welfare Ministry informed that during the meeting, Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. The Health Minister reiterated that the situation is being closely and continuously monitored. The BRICS Tourism Ministers meeting held under India's chairship concluded yesterday with the unanimous adoption of the Jaipur Declaration, which provides a framework for strengthening tourism cooperation among BRICS member countries. The declaration outlines key areas of cooperation, including the use of artificial intelligence in tourism, सस्टेन

101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 5:11 और 10 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम भोर सुहानी। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भोर सुहानी ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और जब हम खुद के नज़दीक होते हैं तो फिर ईश्वर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

0: बोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब हम मन से सच्चे हो जाते हैं तो भक्ति अपने आप सुंदरता बन जाती है। सावन का महीना है, यानी शिव का महीना है। जब सावन और शिव साथ साथ चलते हैं तो मन स्वतः अलौकिक भाव से भर जाता है।
1: बम बम भोला, बम बम भोला।

इस भजन को सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्वयं उस दिव्य शिव विवाह की झांकी के साक्षी बन गए हों हम सभी। यही तो हमारे महादेव की महिमा है। शिव भक्ति हमें सिखाती है कि प्रभु के द्वार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सुंदर या कुरूप नहीं होता। जो जैसा भी है, सच्चा भाव लेकर अगर शिव के चरणों में आ जाए तो भोलेनाथ उसे सहर्ष अपने द्वार पर जगह अवश्य देते हैं।